जब भी मन अशांत हो, कुछ पल किसी पेड़ के पास बैठ जाइए या खुले आसमान को देखिए, क्योंकि प्रकृति के पास हर उलझन का शांत जवाब होता है। पेड़ों की छांव और मिट्टी की खुशबू से जुड़ना हमारे मन को एक अलग ही सुकून देता है।

दोस्तों, पेड़, नदियाँ और आसमान कितना कुछ देते हैं हमें। हमसे कुछ मांगते नहीं, बस हमें सींचते हैं। उनके इस उपकार का सबसे अच्छा रिटर्न हमारी देखभाल और सम्मान है। प्रकृति को संरक्षित करना ही उसके प्रति असली कृतज्ञता हम निभा सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। खुली प्रकृति में, खुली वादियों में कुछ जब हम घूमते हैं इस तरह से, तो ऐसा महसूस होता है जिस प्रकार मोर बरसात के समय में नाचता है, झूमता है और गाता है। आप सुन रहे हैं भोर सुहानी अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 5:40 और 44 सेकंड।

सुबह का ताजगी भरा और खूबसूरत ये नज़ारा, और इस समय छोटा मोटा व्यायाम या कसरत करना बेहद फायदेमंद होता है सबके लिए। यानी कभी अपनी साइकिल लीजिए और एक छोटा सा चक्कर लगाकर इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए। व्यायाम का व्यायाम और सैर की सैर, यानी एक पंथ दो काज, तो ज़रूर इस खूबसूरत से लम्हे का फ़ायदा उठाइए और छोटा सा ये व्यायाम करेंगे तो देखिएगा कितनी चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में दौड़ेगी।

फिर किसी अगले मोड़ पर जरूर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे इस वादे के साथ। भोर सुहानी से फिलहाल रूपा विदा लेती है। नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगी पूजा भारद्वाज। छह बजकर चवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। अयोध्या कांड का भाग 38 आप इसमें सुन सकेंगे। छह बजकर पांच मिनट से सात बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे समाचार। सात बजकर दस मिनट पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात। सात बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। 8:45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें आपके साथ होंगी पूजा भारद्वाज। 9:10 मिनट पर कार्यक्रम होगा म्यूजिक दिल लगी, जिसमें आपके साथ होंगी कुसुम लता। 6:10 पर कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत पर आधारित।

कार्यक्रम अर्पण जिसे लेकर आएंगी पूजा भारद्वाज। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिन्दुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम

विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीज यदि मिट्टी के अंधकार से डर जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए ये मत पूछो कि ईश्वर कहाँ है, पहले ये देखो कि जीवन कहाँ नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ उसकी उपस्थिति है। एक शिशु की मुस्कान में, किसी माँ की करुणा में, एक किसान के श्रम में, एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा में, एक कलाकार की कल्पना में और एक साधक के मौन में, वही एक चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:24 अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महात्मा बुद्ध के अनुसार बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है।

परमहंस योगानंद के अनुसार जब आप ईश्वर की खोज करते हैं तो अल्पकालिक ध्यान को भी इतना तीव्र कीजिए कि आपको ऐसा प्रतीत हो मानो आपने ईश्वर के साथ कई घंटे बिताए हैं।

संत तुलसीदास के अनुसार हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने सगुण रूप की सुंदर झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जप करना, ये ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य योग संघेन आयोजिते योग कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। ततः परं सः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यस्य प्रासादं गमिष्यति, यत्र उभौ द्वैपाक्षिकोपवेशनं करिष्यतः। बुधवासरे आगतायाः आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं नेपालदेशे अद्य पर्यन्तं 80% यावत् भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः इति विदेशमन्त्रालयः अवदत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पूर्वं सम्पर्करहितैः प्रायः 50 भारतीयैः सह पुनः सम्पर्कः स्थापितः। मन्त्रालयः अवदत् यत् 75-200 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः इति कथ्यते। भारतीय मूलस्य प्रायः 28% यावत् जनाः अपि लुप्ताः सन्ति। स्थानीय प्रशासनस्य अनुसारं गतदिनेषु चीनदेशात् 98-500 यावत् भारतीयाः नागरिकाः नेपालदेशम् आगतवन्तः। अत्रान्तरे चीनदेशात् अद्यापि निर्गन्तुं 900 भारतीयाः नागरिकाः सुरक्षिताः सन्ति। बीजिंग नगरे भारतीय दूतावासः प्रत्यक्षतया अथवा स्थानीय प्रशासनस्य माध्यमेन सह तैः सह सम्पर्करतः अस्ति। मन्त्रालयः अग्रे अवदत् यत् भारत सर्वकारः जलाप्लावनेन पीडितानां शीघ्ररक्षणार्थं साहाय्यार्थं च नेपाली चीनी अधिकारिभिः सह निकट समन्वयेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। विदेश मंत्रालये 24-होरा नियंत्रण कक्ष स्थापित अस्ति, तथा च काठमांडू बीजिंग नगरयोः भारतीय दूतावासयोः सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रांतरे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् 11 टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हरक्युलिस इति अद्य काठमांडू नगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन आगामि दिनद्वयोः ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य, असम राज्यस्य, मेघालयस्य, छत्तीसगढ़स्य, गांगेय पश्चिम बंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रूपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ रुककर, कुछ ठहर कर चलने का दिन, कुछ थमकर, कुछ सोचकर चलने का दिन, कुछ अपनों से मिलने मिलाने का दिन, यानी रविवार का दिन। 7:11:10 गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार।

मौसम की बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। सूर्योदय हुआ 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:45।

हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वचंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी किसी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आज हम याद कर रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी को, वे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार और कवि थे।

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शगुन चोपड़ा के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना। शगुन, एक नई सुबह, एक नया दिन और अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का एक और बेहतरीन मौका।
1: Right. नमस्कार लिसनर्स, नमस्कार नवीन, a very good morning to all our listeners.
0: कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने की। तो आज का दिन खड़ा है तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपकी अपनी, और तो आज की सुबह एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए।
1: Sure.
0: कल जो नहीं कर पाए उसका अफसोस नहीं करेंगे, बल्कि आज जो कर सकते हैं उसे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कभी आसान नहीं होंगे, कभी थोड़े कठिन, लेकिन याद रखिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, मंजिल नहीं।
1: Well, that is true. So, listeners, this is the ultimate way to power your morning. We are bringing you a packed half an hour to jumpstart your Sunday with this very inspirational song. Power up your morning.
0: तो मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए और इस विश्वास के साथ कि आज का दिन मेरा है और इसे मैं बहुत बहुत बहुत बेहतर बनाऊंगा।

0: 1,400 people have been rescued or evacuated, including 261 foreign tourists who had lost contact. Nepal police reported 675 bodies have been recovered from 8 districts, with the highest numbers reported in Chitwan, Nawalparasi East and Nawalparasi West. Over 15,000 security personnel have been deployed, while helicopters are carrying out repeated sorties to rescue stranded people and deliver relief supplies. Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River and urged the residents living along the river to remain cautious. National Disaster Risk Reduction and Management Authority has reported an increased flood flow in the river. Rasuwa District Administration said it has heard an increase in water flow and advised people in the areas near the Bhote Koshi River in Rasuwa, Nuwakot and Dhading districts to exercise caution.
1: Aur ab agli khabar. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी।
0: The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals, they are reportedly missing, and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe, and Indian Embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government.
1: और क्रिकेट की बात करें तो भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर और भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। और अब नजर आपके शहर की। सबसे पहले रुख दिल्ली का। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लगभग 60% बिजली की जरूरत को अब कैप्टिव सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय से चल रहे 4 विदेशी नागरिकों को द्वारका जिले के उत्तम नगर इलाके से हिरासत में लिया है। वहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में कल हुई बैठक के दौरान ये घोषणा की गई।
0: फर्स्ट अपडेट फ्रॉम चेन्नई। IIT Madras Global Research Foundation, in partnership with the media-integrated startup platform IdeaBars, has launched Bharat Ascend, a national innovation mission designed to discover and scale entrepreneurial talent beyond traditional metropolitan hubs. So, aligning with the vision of Viksit Bharat at 2047, Professor V. Kamakoti, Director IIT Madras, highlighted that the platform democratizes opportunities to build a true product nation. And during its Delhi launch, Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship for Education, Jayan Chaudhary, congratulated the initiative and emphasized that empowering non-metro youth transforms local talent into national strength. Another update from Chennai. Students from Udumalai Galileo Science Club visited the CSIR Structural Engineering Research Centre, Chennai, on Friday as part of a science field visit organized in connection with the Science Festival, and this had 120 participants comprising 83 students and 37 teachers, and this was conducted by the club on occasion of National Science Day.
1: रुख करते हैं मुंबई का। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने कल महाराष्ट्र सरकार के राज्यभर में 3 स्थानों पर भूख हड़ताल कर रहे आदिवासी छात्रों की सभी मांगे मान ली है। ये घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई में हुई एक बैठक के बाद की गई। मुंबई से ही अगली खबर। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एल्गर परिषद माओवादी संबंधों के मामले में सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्वेस और वरवर राव को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए ने आरोप लगाया था कि चारों आरोपियों ने जनवरी 2026 में मुंबई प्रेस क्लब में माओवादी विचारधारा का प्रचार करने और शहरी नक्सल आंदोलन फैलाने की योजनाओं पर विचार करने के लिए आयोजित एक सभा में भाग लेकर अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था।
0: Heading now to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwar has highlighted some of the key activities carried out by the state government for the promotion of sports. On the occasion of National Sports Day, he has informed that para-athlete K.S. Shilpa, who won bronze medal at the Commonwealth Games held in Glasgow, was awarded a total of 20 lakh rupees as a special incentive. The government is developing 32 stadiums across the state at a cost of 36 crore rupees. And for the first time, the sports reservation was introduced in common entrance test for the professional courses. Such a good news, such a great initiative, and this secured 115 sportspersons the medical and engineering seats in the current year. Also, Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has inaugurated the India Family Business Summit organized in Bengaluru by FICCI and UK & Company. She said the MSMEs contribute significantly to the state GDP at 8.3% and they account for 45% of the manufacturing sector and state's total exports. Right.
1: Aur ab rukh karte hain Kolkata ka. पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ियों में यातायात की भीड़ कम करने के लिए कैलिम्पोंग से दार्जिलिंग तक एक रोपवे बनाने का फैसला किया है। 22 किलोमीटर लंबे इस वैकल्पिक परिवहन सेवा को शुरू करने का निर्णय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नबन्ना में हुई बैठक में लिया गया। पर्यटन मंत्री शंकर घोष को एक ऐसे स्थान का चयन करने का कार्य सौंपा गया है जहां एक साथ 1000 लोग योग सत्र आयोजित कर सकें।
0: हैदराबाद नाउ, Telangana Chief Minister Revanth Reddy has urged the Election Commission of India to extend the deadline for voters to file objections and complaints during the ongoing special intensive revision of electoral rolls in a letter to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Saturday. The Chief Minister said there are no elections due in Telangana soon and enough time should be given to complete the revision process properly. He asked that the current deadline of September 16th be extended by 4 weeks and the final voter list publication date of October 19th should also be revised.
1: आपके शहर की खबर के बाद अब आपके शहर के मौसम की बात हो जाए तो कितना अच्छा होगा शगुन। संडे का दिन है लेकिन देश के बड़े बड़े शहरों में मौसम ने अपनी अलग संडे स्पेशल फिल्म बना रखी है।
0: And we'll find that out.
1: Yes, तो अपनी चाय का कप थामिए और सुनिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और उसके बाद शगुन के साथ तीन और महानगर और फिर अपने आज दिन भर का प्लान बना लीजिए। तो दिल्ली वालों, आज बादल और सूरज के बीच थोड़ा पकड़म पकड़ाई का खेल चलेगा। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन असली विलेन जानते हैं कौन है? ह्यूमिडिटी, उमस। दिन भर हवा बिल्कुल थमी रहेगी और पारा जंप मारकर सीधा 36 डिग्री पहुंच जाएगा। हालांकि रात को थोड़ी ठंडक महसूस होगी, 27 डिग्री, लेकिन आज दिन भर उमस आपको थोड़ा परेशान करेगी। तो बाहर निकलने से पहले एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ डिओड्रेंट एंड एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ सनस्क्रीन दोनों बहुत जरूरी है दिल्ली वालों के लिए।
0: सेंट्रल इंपेरेटिव्स। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ थंडरस्टॉर्म accompanied with lightning and the minimum temperature will be 29 degrees Celsius and the maximum temperature in Chennai will be 35 degrees Celsius.
1: मुंबई में आज कुदरत ने सीधे रिफ्रेश का बटन दबा दिया है और जानते हैं आसमान में आज काले और घने बादलों का डेरा रहेगा ऐसा मौसम विभाग कहता है और दोपहर के बाद वक्त थोड़ी बारिश की गारंटी भी है। तापमान 31 डिग्री और 27 डिग्री के बीच झूलता रहेगा। कोलकाता की बात की जाए,
0: यशो,
1: कोलकाता के बाबू और मोशाए, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। आज आपके यहाँ भी मौसम बंगाली फिल्मों की तरह बहुत ड्रामेटिक होने वाला है। दोपहर और शाम के वक्त आसमान में जोरदार बिजली कड़कने और भारी गरज चमक के साथ तेज बारिश होती होने की संभावना है। ऐसा हम नहीं, मौसम विभाग कहता है। और शगुन, मौसम कहता है कि विभाग कहता है कि आज तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो शाम की चाय के साथ झालमुड़ी जरूर होगी वहां पर।
0: दैट इज ट्रू एंड इट्स मच द सेम इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद एज वेल, एंड द वे यू डिस्क्राइब्ड इट आवर लिसनर्स वुड हैव विजुअलाइज्ड, राइट?
1: बिल्कुल।
0: सो बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन देयर, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 20 degrees Celsius एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 29 degrees Celsius। इट्स नॉट दैट हॉट, बट या इट इज हॉट। एंड हैदराबाद नाउ it is expected to have a partly cloudy sky, again there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm, whatever happens and the minimum temperature will be around 24 degrees celsius in Hyderabad and the maximum temperature will be around 30 degrees celsius।
1: to din ki abhi shuruaat hui hai, mausam ka haal humne bata diya hai, khabrein aapke paas hain hi, to aap apne plan kar sakte hain din bhar ke liye ki aap kahan ja sakte hain aur kahan kahan delhi mein aap ja sakte hain। at the end of the program ye bhi hum aapko batayenge,
0: we will tell you that, listeners stay tuned।
1: bilkul kahan aap aaj apni sham bita sakte hain। behrhal ab padhte hain ek aur panna, aur calendar ka ye panna सिर्फ एक तारीख ही नहीं है बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी कहानियां समेटे हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इतिहास से।
0: Well, first we are taking our listeners way back in time. We are starting with the year 1659,
1: okay,
0: where Mughal Prince Dara Shikoh was executed by Aurangzeb.
1: मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, 1963 की बात करता हूँ। मॉस्को वाशिंगटन के बीच एक बना रेड फोन वाशिंगटन और मॉस्को को जोड़ने वाली हॉटलाइन पर पहला टेक्स्ट मैसेज आज ही के दिन 1963 में भेजा गया था। और जानते हैं ये मैसेज क्या था?
0: What was that?
1: The quick brown fox jumped over the lazy little dog back, and that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और उस समय रूस और अमेरिका के युद्ध की परिस्थिति बन रही थी, तो इस तरह के मैसेज का इन्वेंशन किया गया था।
0: Wow, how great! It's very interesting. In 1916, Anglo-Irish explorer Sir Ernest Shackleton rescued 22 stranded endurance expedition members from Elephant Island, Antarctica, in 1928. The Independence of India League was founded to demand complete independence from British rule.
1: भारत के इतिहास के साथ साथ आज का दिन विज्ञान की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा है। बात साल 1984 में, आज ही के दिन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सबसे मशहूर स्पेस शटल डिस्कवरी ने पहली बार आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, और इस शटल ने इंसानों को अंतरिक्ष को समझने में बहुत मदद की थी।
0: Now let's remind you that in the year 1947, the Constituent Assembly formed the drafting committee of the Indian Constitution under Dr. B.R. Ambedkar.
1: और इतिहास में आज के दिन किन घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है? 1806 में आपको लिए चलते हैं, न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार आज के दिन प्रकाशित किया गया था।
0: In 2009, नवीन, इसरो फॉर्मली एंडेड द चंद्रयान 1 मिशन। In 2013, though, India launched its first dedicated defense satellite, GSAT-7.
1: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब उन व्यक्तियों को, उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आज के दिन अपनी जगह बनाई है।
0: First, let me tell you about Ernest Rutherford, the physicist and chemist who was a pioneering researcher in both atomic and nuclear physics. He has been described as the father of nuclear physics, and in 1908 he was awarded the Nobel Prize in Chemistry, and this was for his investigations into disintegration of the elements and the chemistry of radioactive substances. So Rutherford's discoveries, they include concept of radioactive half-life, the radioactive element radon, and the differentiation and naming of alpha and beta radiation.
1: आज जन्मदिन है जैस्मिन लंबोरिया का, भारत की महिला मुक्केबाज, और उन्होंने बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। आज उनका जन्मदिन है। आज ही जयंती है साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की, हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही बहुत काम किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपथा के नाम से भी प्रकाशित हुए, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं।
0: सो लिसनर्स, नाउ वी विल टेल यू अबाउट जॉन मैकनली, द गिटारिस्ट, member of the Searchers band. This band was formed in 1959, who were a big part of the Mercy in the band from the Mercy sound, actually, in the early 1960s, the longest serving member of the group, touring in the band from 1955.

0: विरोध किया था। 1908 में मुजफ्फरपुर के अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ट पर हमला किया गया था और इस हमले में कनालय दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार ये सब पकड़े गए थे और इनके दल का एक युवक नरेन गोस्वामी अंग्रेजों का सरकारी मुखबिर बन गया था। क्रांतिकारियों ने इससे बदला लेने का निश्चय किया और अपना ये कार्य पूरा करने के बाद ही कन्हैयालाल दत्त पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई।
1: Well, we salute the brave heart. Listeners, today we are also remembering Mary Shelley. Well, English lit students, they would definitely know about her. The novelist, she wrote the gothic novel Frankenstein. And the modern Prometheus as well, she's considered an early example. This actually is considered as an early example of science fiction. So she has also been regarded as the innovator in the field of science fiction. And Mary Shelley's Frankenstein has been one of the most popular horror novels ever written. And this has remained in print since its publication in 1818, so 210 years ago today. Naveen, 210 years ago today, when she was 19 years old, Mary Shelley had the waking dream that became Frankenstein. So she spent her final years in relative seclusion, but her literary achievements and intellectual contributions, they have continued to be recognized and celebrated long after her difficult life ended. I was telling you about Mary Shelley.
0: आज का दिन खास है इसलिए क्योंकि आज है लघु उद्योग दिवस। हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योग दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है और ये हमने आपको बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में यानी पुण्यतिथि और जयंती के बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम कुछ ऐसे खास व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्हें शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
1: Well, yes, today we are also remembering J.J. Thomson, Joseph John Thomson, and the physicist. He received 1906 Nobel Prize in Physics for the recognition of the great merits of theoretical and experimental investigations on conduction of electricity by gases. In 1897, he showed that cathode rays, they were composed of previously unknown negatively charged particles, which he calculated must have bodies much smaller than the atoms. Very scientific, and a very large charge to mass ratio. The electron was the first subatomic particle to be discovered, and he is responsible for that. He is credited with finding the first evidence of isotopes as well of a stable element in 1912 as part of his exploration into the composition of the positive आयंस।
0: आज का दिन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों, खेलों या फिर साहित्यकारों के लिए नहीं जुड़ा हुआ, आज का दिन जुड़ा हुआ है उस पर्सनालिटी के साथ भी, उस व्यक्तित्व के साथ भी जिसकी कलम ने बहुत कुछ लिखा है और जिसके लिखे हुए गीत, जिसकी लिखी हुई कविताएं आज भी जहन में घूमती रहती हैं। शगुन, संगीत की दुनिया में जब भी गीतकारों की चर्चा होती है तो एक नाम आता है, शंकर लाल केसरीलाल यानी शैलेंद्र। बड़े अदब से सीने की दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। आज उनकी जयंती है। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गीत लिखे कि उसमें से कौन सा अच्छा है और किसे ना पसंद करें नहीं समझ में आता।
1: Very difficult to choose.
0: और आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे हुए गीत की सुरीली तान सुनाई देती है। शैलेंद्र का गीत सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: If you listen to the words, they tell you a lot. And Shailendra, one of the greatest and most celebrated Hindi Urdu poets, fondly called Kavi Raj.
1: Ji.
0: King of poets by filmmaker Raj Kapoor. He was renowned, actually, he's still renowned for translating deep, complex human emotions into incredibly simple, universal language, right?
1: बिल्कुल. शैलेंद्र के लिखे गीत इतने खूबसूरत होते थे, शब्द इतने सटीक होते थे कि हर इंसान उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था. अब देखिए ना, इसी गीत के साथ अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो पाएंगे कि ये गीत शायद आपके लिए ही लिखा गया है. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी. और देखिए, अगर इस गीत को पूरा पूरा सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ना कहीं आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी

जुड़ा हुआ गीत है जो बहुत कुछ कहता है। लेकिन अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैलेंद्र की कलम का, वो जिंदगी और उनके फलसफे को बयान करता है। वो कहते हैं, जीना इसी का नाम है,

0: You know what I would like to share here, that I listen to this song quite regularly when I'm feeling down or I'm looking for some inspiration, because this speaks a lot.
1: तो फिर
0: volume of emotions.
1: फिर आज के कितने आपका दिन बना दिया शगुन?
0: It has truly, and I think even our listeners, they would be loving it.
1: शगुन शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनके कलम से खुशी, गम और मोहब्बत ये सारे नगमे निकले. और शैलेंद्र ने राज कपूर के साथ मिलकर भी काम किया. 50 से 60 के दशक में उन्होंने सिनेमा में कई गीत लिखे थे. और जानते हैं, राज कपूर ने उन्हें एक मुशायरे में सुना और फिल्म के लिए उनकी नज्म खरीदने की पेशकश की और उन्होंने साफ मना कर दिया. लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्होंने फिर से राज कपूर की फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे सुंदर गीत लिखे. लेकिन यहाँ जो मैं आपको एक ट्रिविया बता रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास तीसरी कसम पर फिल्म बनाई. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वो बिल्कुल भी नहीं चली. लेकिन किस्मत देखिए, उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो फिल्म सुपरहिट भी रही और उसके गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं. और गीत है दुनिया बनाने वाले.

0: मैं और शगुन अब आपको दिल्ली की सड़कों पर लिए चलते हैं कि अगर आप अपनी दोपहर और शाम को कैसे गुजार सकते हैं वन बाय वन.
1: Well, the first one, it's happening at the Talgatora Indoor Stadium, the President's Estate Kids Concert Tour featuring Lenny Pierce. This begins at 11 a.m. and another shift is there at 4 p.m.
0: अगर आप हॉस्कास विलेज के आसपास रहेंगे दोपहर 1:15 पर या 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पे दिया मेकिंग वर्कशॉप है, आप वहाँ पे जा सकते हैं. और अगर आप पोएट्री के शौकीन और स्टोरी टेलिंग के शौकीन हैं, तो आप जा सकते हैं द सोशल हाउस, वो भी हॉस्कास में है. और वक्त रहेगा 3 बजे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका ग्रीन पार्क रहेगा.
1: एंड देयर इज एन आर्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू व्यू आर्टवर्क्स वेयर द फ्लावर्स कीप देयर काउंसिल, दिस आर्टवर्क बाय एश्वर्यन के एंड दिस विल बी देयर एट द गैलरी स्प्लैश, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, 11 a.m. to 7 p.m.
0: बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही. मुझे और शगुन को दे इजाजत. उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. नमस्कार.

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम

0: लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
4: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
5: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और

0: विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
2: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश

0: प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा सदारती महल में तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुक से वाबस्ता शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज़्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में तआवुन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्त दोनों ममालिक कानकनी, खासतौर पर कमियाब मादनियात, धातों जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज कनेक्टिविटी के नए मौके की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर आज़म की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा वर्षों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: वज़ीर आज़म जनाब मोदी उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ताशकंद के यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में उज़्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाय अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज़्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिये के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर, नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में ये प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने इल्जाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉ BR अम्बेडकर के विरसे की ताजीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिन्दुओं में फूट डालने का इल्जाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजाम ने जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
2: अब यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
0: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज 2 रोज़ा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुज़ा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें योम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल

0: का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, इंटरप्रोनियरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ वो लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में 101 करोड़ रूपये के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद 675 हो गई है। दोबारा शदीद बारिश और मजीद सैलाब के अंदेशों के दरमियान तलाश और बचाव का रवाई जारी है। तकरीबन 2400 अफराद लापता हैं, जिनमें से कम 320 गैर मुल्की शहरी हैं। 261 गैर मुल्की सयाहों समेत 4400 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: नेपाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों से 675 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद चितवन, नवलपरासी ईस्ट और नवलपरासी वेस्ट से है। 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने और राहत का सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद परवाजें कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलाश और बदतरीन तौर पर मुतासर रसूबा जिले में कल बारिश और कोहरे के सबब बचाव कार्रवाई के आरजी तौर पर रोके जाने के बाद तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटेकोशी दरिया में सैलाब के मद्देनजर ताजा अलर्ट जारी किया है और दरिया के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रसूबा जिला इंतजामिया ने कहा है कि उसे पानी के बहाव में इजाफे के तनाजुर में रसूबा, नवाकोट और ढांढिंग जिलों में लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। चीन से मुतसिल सरहद पर भी 7 अफराद हलाक हुए हैं और 550 से ज्यादा लापता हैं। मिगलिंग काठमांडू शाहराह को कल से खोल दिया गया है, जो राजधानी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली अहम सड़क है। अलबत्ता कई दीगर सड़कें अब भी बंद हैं या उनके रसाई में रखना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध को आए अचानक सैलाब के सानहे के बाद अब तक वहां 108 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों जिनका राबता मुनकते हो गया था, उनसे दोबारा राबता कायम कर लिया गया है। वजारत ने कहा कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है, जबकि 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं, जिनके पास दीगर ममालिक की शहरियत है। मकामी सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में 598 भारतीय शहरी चीन के रास्ते नेपाल में पहुंच गए हैं। इस दौरान 900 भारतीय शहरी जिन्हें चीन से रवाना होना है, बीजिंग में भारतीय सफारतखाने में महफूज हैं और मकामी सरकार के जरिए या बराह रास्त राबते में हैं। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने नेपाल के तलाश और बचाव की कार्रवाईयों में मदद के लिए आफात से निमटने के कौमी दस्ते को नेपाल भेजने की पेशकश की है। नीज भारतीय फजाइया के जरिए हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजकर फौरी इंसानी इमदाद भी फराहम की गई है। इस दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चौथी इमदादी परवाज C-130J हरक्यूलियस 11 टन इमदादी सामान के साथ कल काठमांडू के लिए रवाना किया गया है और इमदादी सामान नेपाल हुकूमत को सौंप दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने कहा कि इस परवाज के जरिए जरूरी अशिया और तकनीकी साजो सामान भेजा गया है, ताकि नेपाल में जारी तलाश बचाव और राहत रसानी की कार्रवाईयों में मदद फराहम की जा सके। इससे पहले भारत ने 3 परवाजों के जरिए 57 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजा था। भारत की 11 रुकनी तकनीकी टीम ने कल नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में पनबिजली टनल्स का मौके पर जाकर मुआयना किया, ताकि टनल्स में फंसे अफराद की तलाश और बचाव कार्रवाईयों में सहूलत फराहम की जा सके। डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और टनल इंजीनियरों पर मुश्तमिल ये टीम जुमे को काठमांडू पहुंची। नेपाल की हुकूमत ने भोटेकोशी नदी में सैलाब के ताल्लुक से ताजा अलर्ट जारी किया है और नदी के आसपास के लोगों को चौकस रहने की अपील की है। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी की तुगयानी में मजीद शिद्दत आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि भारत में

0: मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व हर इंसान का एहतराम करता है और राहे हक की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों को भी तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक इंसानियत के मौजू पर मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब भागवत ने मुसलमानों की जानिब से 2018 में दिल्ली में एक लेक्चर सीरीज के दौरान पूछे गए सवाल का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने यही जवाब दिया था। आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब भागवत ने न्यूयॉर्क में यह बयान दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की यूएई सेंट्रल बैंक ने अमारात में बैंक के मिस्र की शाखों का फौरी तौर पर खसूसी मुआयना करने का फैसला किया है। अमरीकी ट्रेजरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दरेपर्दा ईरानी बैंकिंग नेटवर्क लेन देन किए जाने के तनाजुर में यह कार्रवाई की गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश और कुछ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा के मगरबी बंगाल के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने आज बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारत आज थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ खवातीन के T20 एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंदना नायब कप्तान होंगी। T20 एशिया कप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक हुए 5 एडिशन में से 3 में भारत जीत दर्ज कर चुका है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के तहत ताशकंद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम मोदी का ये उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है। 4 रोजा गैर मुल्की दौरे के तहत वजीर आजम मोदी उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। वहीं रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत आज मरीख तक पहुंच गया है और खला में प्राइवेट स्टेशन और इंसानी मिशन की जानिब कदम बढ़ा रहा है। रोजनामा प्रताप ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल माहदे पर पहुंच गया है, जिससे वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जखायर पर अमरीका का कंट्रोल हो गया है।
0: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2400 अफराद अब भी लापता है। नेपाल ने भुटेकोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिया तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

के लिए काफी है। म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। समय हुआ है 8:46 और 16 सेकंड।

आओ इतवार मनाएं, चाय पिएं और चाय पिलाएं, अखबार को सिर्फ उलट पलट लें, सिर्फ चाय का गिलास घुमाएं, पुरानी एल्बम निकालें, बातें करें बचपन की, कॉलेज की, नाटक की, सारे सपनों की धूल झाड़ें। एक इतवार तो है, अपने से बाहर निकल अपने में खो जाएं, आओ इतवार मनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में

0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
1: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
2: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा को से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुया में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defence, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. More from our correspondent.
4: Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by Yoga Federation of Uzbekistan, and after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. The leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense, But both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of medicine, agriculture and skill development, as well as finding new avenues of connectivity, can be focus of discussion between the two leaders. Due to the Prime Minister's efforts, trade between the two countries has increased by 300% in the last 10 years. Together, the two countries are aiming to double the current $1 billion trade in

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकल दिल्ली के सफर पर अब मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों 30 अगस्त रविवार का दिन, फुर्सत भरे इतवार का दिन, टेबल से किताबें हटाकर रख दो एक पतंग, दीवाल घड़ी की जगह टांग दो लाल गुलाब, कोयलों की कूक को अखबार की तरह पढ़ो, तितलियों के रंग गर्म चाय की प्याली है, थामो इसे देखो ठंडी हो रही है, कैलेंडर में फड़फड़ाती मेरी सांसों को चूम कर रिहा करो, मैं तुम्हारा रविवार हूँ, डूब मरो मुझ में। बहुत प्यारा गीत है आपके लिए, फिल्म बड़े दिलवाला से आई।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है मैं इसका दिल लगी। साथियों, ये जो आते जाते दिन रात है ना, ये एक मौका है जिंदगी को और बेहतर जीने का। जो हम कल नहीं कर पाए उसे आज करें, है ना। और इसी के साथ ये जाते हुए दिन कोई ना कोई याद दे जाते हैं।

0: कोई ना कोई कमी दिए जाते हैं और जो इस दिन से जुड़ी होती है। वरन गुमशुदगी से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये दिवस हर साल अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2010 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जबरन गुमशुदा या गायब लोगों को याद करना और उनके तथा उनके परिवारों के अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित करना तथा मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। तो है ना, ये एक खास दिन। तो ये जो खास दिन है ना, इसे बहुत ध्यान से जीना है।
1: ए भाई

बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाहर है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

तो जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से चलना है हर चीज का ध्यान रखते हुए, खास तौर से जल यानी पानी का। एक तरफ जहां जल की अधिकता नुकसान का कारण बनती है, तो वहीं जल ही जीवन है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना।

की। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से साल 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समय पर और सटीक जल मौसम संबंधी डेटा का संग्रह और प्रबंधन करना, इसके अलावा बाढ़, सूखे और जलाशयों के संचालन के लिए बेहतर निर्णय लेने वाली प्रणालियों का विकास करना और साथ ही राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र और जल संसाधन सूचना प्रणाली के माध्यम से देश भर में डेटा की पहुंच को आसान बनाना है। तो है ना, ये एक बहुत अच्छी परियोजना। तो पानी का ध्यान रखें और ये जो जल है, पानी है, आपको पता है कि ये जीवन है और जीवन ले भी सकता है, इसलिए जरा ध्यान से। और अक्सर हम कह देते हैं ना कि पानी, ये कैसा है पानी, इसका कोई रंग रूप नहीं। और इस गीत में लता मंगेशकर और मुकेश क्या कह रहे हैं फिल्म शोर के इस गीत में कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सुनते हैं।

अपनी हो जग अपना है, किसका किस पर अधिकार प्रिय, फिर दुविधा का क्या काम यहाँ, इस पार या की उस पार प्रिय, चलना है सबको छोड़ यहाँ, अपने सुख दुख का भार प्रिय, करना है कर लो आज इसे, कल पर किसका अधिकार प्रिय। ये पंक्तियां हैं महान कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, विचारक और निबंधकार भगवती चरण वर्मा की। 30 अगस्त यानी आज ही के दिन साल 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर कस्बे में जन्मे भगवती चरण वर्मा बचपन से ही अपने संघर्ष भरे जीवन को कविताओं में उतारने लगे थे। आगे चलकर उन्होंने अनेक कविता संग्रह, नाटक, कहानी संग्रह और अनेक उपन्यास लिखे। साल 1943 में वर्मा जी को मशहूर अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने मुंबई बुलाया। फिर उन्होंने हिंदी जगत में 4 फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखे। फिल्म चित्रलेखा इनके ही उपन्यास पर आधारित थी। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण और साहित्य अकादमी सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा की निगाह से देखें तो मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियां जानकर उनको दूर करने का प्रयास करे, उपाय करे। उनका जीवन और उनका साहित्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सुनते हैं उनके पटकथा और संवाद लिखी फिल्म चित्रलेखा का ये गीत।

इसी गीत के साथ ही मैं उसकल दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 पर दिल का मेलबॉक्स से लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी, और फिलहाल कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वतन का राग, प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है शहीद बंता सिंह संघवाल। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, लखनऊ से सोनी कुमारी और जयपुर से प्रमोद सिंह चौहान। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

किसी भी राष्ट्र का इतिहास केवल युद्धों और तारीखों से नहीं बनता, वो बनता है उन लोगों से जिन्होंने अपने समय की आवाज सुनी और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महान राष्ट्रसेवी थे पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने अपने शब्दों से जागरण का बीज बोया, गांवों में स्वावलंबन का सपना जगाया, खादी में अपना आत्मसम्मान संजोया और गांधी दर्शन को अपने जीवन का पथ बनाया। साहित्य से स्वाधीनता तक, पत्रकारिता से जनसेवा तक और गांधी जी के सानिध्य से राष्ट्र निर्माण तक उनकी पूरी जीवन यात्रा भारत को बेहतर बनाने की यात्रा थी। पंडित हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 24 मार्च सन 1892 को उज्जैन के पास स्थित भमरासा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और उसके बाद आगे की शिक्षा उज्जैन में हुई। वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वाध्यायी छात्र थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों और हिंदी साहित्य से भी गहरा अनुराग था। उनकी शिक्षा में डॉक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर का विशेष योगदान था और फिर यही रास्ता उन्हें हिंदी साहित्य के उस विराट व्यक्तित्व तक ले गया जिनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहीं से हरिभाऊ उपाध्याय के जीवन ने कलम को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने यहीं से समाज निर्माण का दायित्व भी ग्रहण किया। उनकी शिक्षा जारी थी तभी उन्होंने औदुम्बर नामक मासिक पत्र के संपादन का दायित्व संभाला। इस तरह सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि पत्रकारिता और साहित्य सेवा से हुआ। इसे ही उन्होंने भारत माता की सेवा का माध्यम बनाया।

औदुम्बर पत्रिका ने ही हरिभाव उपाध्याय को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचाया। सन 1915 में वो द्विवेदी जी के संपर्क में आए और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में काम किया। सरस्वती के बाद उनका संबंध गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप से हुआ। वो प्रभा से भी जुड़े और आगे चलकर गांधी जी के हिंदी नवजीवन के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह एक पत्रकार से एक राष्ट्र सेवक की उनकी यात्रा आरंभ हुई। पंडित हरिभाव उपाध्याय के जीवन पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने स्वयं लिखा है कि गांधी जी को उन्होंने पहली बार सन 1915 में लखनऊ अधिवेशन में देखा था और उस पहली झलक ने ही उनके भीतर जैसे बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद चंपारण से लौटते हुए गांधी जी को उन्होंने कानपुर में देखा। उनकी सादगी, सहजता और तेज ने हरिभाव उपाध्याय को भीतर तक प्रभावित किया और जब इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने गांधी जी को देखा तब तक ये आकर्षण श्रद्धा में बदल चुका था। सन 1921 में जब हरिभाव उपाध्याय की भेंट मुंबई में गांधी जी से हुई तब वो एक पत्र निकालना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनके भीतर एक व्यापक संभावना देखी, हिंदी में गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने की संभावना। इस तरह पंडित हरिभाव उपाध्याय का जीवन गांधी आश्रम

की ओर मुड़ चला। उन्होंने यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन को हिंदी में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदी नवजीवन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन पर गांधी जी का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर भी हुआ। सत्य, अहिंसा और खादी के विचार उनके भीतर गहरे उतरते चले गए और वो स्वयं को अहिंसक सेवा का सिपाही मानने लगे। गांधी जी के संपर्क ने उनके भीतर ये विश्वास पैदा किया कि स्वराज केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति का नाम नहीं है, स्वराज का अर्थ है कि गांव अपने पैरों पर खड़े हों, किसान अपने श्रम का सम्मान पाए, स्त्री शिक्षा पाए, अस्पृश्यता छूटे, युवा चरित्रवान बने, खादी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने और साहित्य जनता की चेतना को जगाए। गांधी जी के निर्देश पर हरिभाव उपाध्याय ने अजमेर को अपनी कर्मभूमि चुना। हटुंडी में उन्होंने गांधीवादी कार्यों का केंद्र विकसित किया। सन 1927 में यहां गांधी आश्रम की स्थापना हुई। ये आश्रम केवल भवन नहीं था, ये विचारों की प्रयोगशाला था। यहां खादी, सेवाग्राम, सामाजिक सुधार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किए गए। महिला शिक्षा पर जोर देते हुए हरिभाव उपाध्याय ने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। बिजौलिया मेवाड़ का वो क्षेत्र था जहां किसान लंबे समय से करों और विभिन्न प्रकार के शोषण से परेशान थे। विजय सिंह पथिक ने किसानों को संगठित किया था। ये आंदोलन लंबा चला। बिजौलिया किसान आंदोलन में आगे चलकर हरिभाव उपाध्याय भी किसानों के बीच पहुंचे। जमनालाल बजाज के साथ उन्होंने ऊपरमाल क्षेत्र के किसानों के प्रश्नों को समझा और समाधान का प्रयास किया। उनका रास्ता सत्य, अहिंसा, संवाद और न्याय का रास्ता था। ये गांधी जी का रास्ता था।

पंडित हरिभाव उपाध्याय ने सरस्वती, प्रताप, प्रभा, हिंदी नवजीवन और त्याग भूमि जैसे पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य तो किया ही, उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य था सस्ता साहित्य मंडल। जमुना लाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, हरिभाव उपाध्याय और उनके अन्य सहयोगियों ने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय साहित्य को सामान्य जनता तक सस्ते मूल्य में पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। सन 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, परिणाम स्वरूप वो गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गिरफ्तार हुए। इसी तरह इंदौर मजदूर आंदोलन और राजस्थान के विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उनका एक और बड़ा योगदान था साहित्य को समाज की शक्ति बनाना। पंडित हरिभाव उपाध्याय मूलतः साहित्यकार थे। राजनीति उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है राष्ट्र सेवा, लेकिन साहित्य उनकी आत्मा में था। उनकी भाषा में अनावश्यक आडंबर नहीं था, उनकी भाषा सरल और प्रांजल थी, जिसमें विचारों की स्पष्टता थी, साथ ही जीवन के अनुभवों से निकली हुई संवेदना भी थी। उनकी रचनाओं में गांधीवाद केवल सिद्धांत के रूप में नहीं आता, वो जीवन की साधना बनकर आता है। साधना के पथ पर इस पुस्तक में अहिंसा के अनुभव हैं। गांधीवादी जीवन का स्पर्श करती उनकी किताब है बापू के आश्रम में। सर्वोदय की बुनियाद इस किताब में समाज के सर्वांगीण विकास की चिंता है और उनकी कृति स्वतंत्रता की ओर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करती है। भागवत धर्म, मनन, पुण्य स्मरण, दूर्वा दल, प्रियदर्शी अशोक, हमारा कर्तव्य और युगधर्म जैसी कृतियों में उनके विचारों की विविध दिशाएं दिखाई देती हैं। लेखन के साथ साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिसमें गांधी जी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद भी शामिल है। पंडित हरिभाव उपाध्याय ने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हटुंडी में स्थापित गांधी आश्रम के अंतर्गत उन्होंने जिस महिला शिक्षा सदन की नींव रखी थी, वो नारी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ लड़कियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें खादी, कताई, बुनाई, गृह विज्ञान, हस्तशिल्प, संगीत, प्राथमिक चिकित्सा और गांधीवादी जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ से निकली महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम, शराबबंदी अभियानों और अन्य समाज सुधार आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1952 में वो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और प्रशासन को गांधीवादी दृष्टि से जनसेवा का माध्यम बनाया। 1956 में अजमेर राज्य राजस्थान में विलीन हो गया। इसके बाद भी उन्होंने शिक्षा, पंचायत, खादी एवं ग्रामोद्योग, सामुदायिक विकास और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्य किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वो साहित्य सृजन करते रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो लेख लिखते रहे। सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 25 अगस्त सन 1972

पेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि

0: हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप टी20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defence, digital technology, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. More from our correspondent.
2: Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by Yoga Federation of Uzbekistan, and after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. The leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense. But both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of medicine, agriculture and skill development, as well as finding new avenues of connectivity, can be focus of discussion between the two leaders. Due to the Prime Minister's efforts, trade between the two countries has increased by 300% in the last 10 years. Together, the two countries are aiming to double the current $1 billion trade in the coming years. In this regard, some important agreements may be signed today. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
1: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani

0: Hindi will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Nepal's flash flood death toll has risen to 675 as search and rescue operations continue amid renewed rainfall and fears of further flooding. Nearly 2,400 people remain missing, including at least 320 foreign nationals. More than 4,400 people have been rescued or evacuated, including 261 foreign tourists who had lost contact. Nepal police reported that 675 bodies have been recovered from 8 districts, with the highest numbers reported in Chitwan, Nawalparasi East and Nawalparasi West. Meanwhile, Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River and urged residents living along the river to remain cautious. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority has reported an increased flood flow in the river. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. Defence Minister Rajnath Singh will address the industry conclave in Lucknow today on the third and last day of his three-day visit to the city. The conclave is being organised under the PM Setu Yojana, where discussions will be held on topics related to skill development, entrepreneurship and vocational education. Before attending the conclave, Mr. Singh will listen to the Prime Minister's Mann Ki Baat programme. He will also lay the foundation stone for 12 development projects worth Rs. 101 crore in the Lucknow cantonment area in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 88th edition of Fit India Sundays on Cycle in New Delhi. The event was a special National Sports Day edition of the initiative organized in collaboration with BRICS at the Jawaharlal Nehru Stadium. Talking to media, Dr. Mandaviya said cycling has become popular among citizens. In women's cricket, India will begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match will start at 8:30 p.m. Indian time. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal are expected to witness heavy to very heavy rainfall today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश रोकने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब

0: दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहाँ शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार प्रसारित करते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मोगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटेकोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल पहुंचा चुका है। इस बीच भारत के 11 सदस्यीय तकनीकी दल ने कल नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
4: चिकित्सा कर्मियों और सुरंग इंजीनियरों का यह दल शुक्रवार को काठमांडू पहुंचा था। कल वे नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे, जहां उन्होंने एक पनबिजली परियोजना से जुड़ी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में सहायता की। चिलिमे और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पूरा करने के बाद भारतीय दल ने सुरंग क्षेत्र के आसपास बचाव कार्य शुरू किया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस कर्मियों का यह 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा दल कल रात से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। नेपाल के सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। विश्व दर्पण के लिए मीनाक्षी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ये कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच बैंक मिस्र की UAE शाखाओं ने करीब $1.80 करोड़ के ऐसे लेन देन किए जो ईरानी गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी 103 कंपनियों से संबंधित थे। UAE केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक की शाखाएं देश के कानूनों और नियमों के अधीन हैं। बैंक ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बैंक मिस्र ने कहा है

0: कि अमरीकी कार्रवाई केवल यूएई स्थित उसकी शाखा तक सीमित है। इसका असर मिस्र और अन्य देशों में बैंक के कामकाज पर नहीं होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान विभाग ने कहा है कि अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के साथ काम कर रहे भारतीय शांति सैनिक वहां विस्थापित हुए लोगों की सहायता करना जारी रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि UNISSA के साथ भारतीय शांति सैनिक अबेई में विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभा रहे हैं। इस मिशन की मदद में जरूरी बुनियादी सेवाएं, शिक्षा से जुड़ी पहल और समुदाय के साथ जुड़ाव शामिल है। अबेई इलाका सूडान और दक्षिण सूडान के बीच स्थित है और इसकी देखरेख UNISFA करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बताया कि भारत ने ही सबसे पहले लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं वाली एक यूनिट तैनात की थी, जिससे हजारों लाइबेरियन महिलाएं अपनी राष्ट्रीय पुलिस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुईं। विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने लाओस में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बातचीत की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने राजधानी वियतियाने में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व विद्यार्थियों से भी बातचीत की। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेल बॉक्स। आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। चलिए जल्दी से नोट कीजिए हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, वैसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन जो हमारे साथी नहीं जानते उनके लिए बताए देती हूँ। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिर से बताऊँ, मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। जल्दी से भेज दीजिए इस पर अपने मैसेजेस, अपनी पसंद, मैं शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल पहला गीत जिनके पसंद का है वो है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर गायकवाड़। इनके पसंद पर फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत आप सभी के लिए।

0: तो अब जल्दी जल्दी से आप सभी के नाम शामिल करने की कोशिश करती हूँ। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये संदेश आया है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप का ये संदेश। अगला संदेश शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, सुनील जैन, विपिन गुप्ता, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, सौम्या और उनके मम्मी पापा का। धांधला जिला झाबुआ एमपी से विठल, शोभा, यश, श्वेता, आरती, दिव्या और कल्याणी का भी संदेश हम तक पहुंचा है। गांव फरासी हिसार से राजकुमार धुंधी, प्रमोद कुमार धुंधी और पुष्पेंद्र कुमार धुंधी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जिला यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनु राज बेनारा का भी संदेश हम तक पहुंचा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक भी हमें संदेश भेजते हैं। पद्मा टाकी नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमें संदेश भेजते हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश भी हमें संदेश भेजते हैं। और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का भी संदेश हम तक पहुंचा है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, आमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का भी संदेश हम तक पहुंचा है। सप्रेम नमस्ते लिखते हैं, नमस्ते आपको भी। मुंबई से अरुण बड़जात्या, इनका संदेश मैं शामिल कर चुकी हूँ। कोमल प्रसाद शर्मा, उत्कर्ष कौशिक, योगेश जैन, कस्बा रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा से हमें संदेश ये भेजते हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार भी हमें ये संदेश भेजते हैं। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, गुरवंश सिंह जौड़ा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, भाऊ मराठा, पूजा, रेखा रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज, वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण भाऊ खंड से हमें संदेश भेजते हैं। और ये अगला संदेश ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, इनका भी संदेश पहुंचा है। बसमत मेरठ, बसमत रोड, परभणी, महाराष्ट्र से रणजीत कारीगांवकर, कंचन कारीगांवकर, सृष्टि कारीगांवकर, समरजीत कारीगांव भी हमें संदेश भेजते हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, इनका संदेश पहले भी शामिल कर चुकी हूँ। आप बार बार संदेश भेजते हैं जिसे सभी के शामिल करने में मुश्किल होती है, तो इसका ध्यान रखें। कुमार हेड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीम, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम भी हमें संदेश भेजते हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय भी हमें संदेश भेजते हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी हमें संदेश भेजते हैं। कस्बा अग्रवाल, मंडी टटीरी, बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान भी हमें संदेश भेजते हैं। और ये संदेश है रतलाम यमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का। पारसमढ़ी रेडियो श्रोता संघ क्लब भी है, इन्होंने संदेश भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल संदेश भेजते हैं। और अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं तान्या जी की पसंद पर। तान्या जी का कल बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे तान्या, आपकी पसंद का गीत फिल्म दिल्ली का ठग से ये रहा आपके लिए।
1: ये रातें ये मौसम

आपके संदेश आ रहे हैं, आए जाते हैं, कोशिश कर रही हूं कि सभी के नाम शामिल कर लिए जाएं। ये संदेश है आसिफ अली खान का, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान भी साथ में हैं। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमर श्रीमती रंजूबाई धाकड़ और इनके परिवार के सभी सदस्य हमें संदेश भेजते हैं। सलीम अख्तर हुडा अलीगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं। गंजडुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान भी हमें संदेश भेजते हैं। भवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन, नेहा राजू, जगदीश देवांगन का भी संदेश हम तक पहुंचा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद बजाज सहित साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का भी संदेश हम तक पहुंचा है। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा भी हमें संदेश भेजते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नुखेलाल वर्मा भी हमें संदेश भेजते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाडकर राही, श्रीमती सरिता गवाडकर, प्रिंस एकांश गवाडकर, अर्जुन गवाडकर, डुगू भी हमें संदेश भेजते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीब और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य भी हमें संदेश भेजते हैं। चंडीगढ़ सिटी से

सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी हमें संदेश भेजते हैं। और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी संदेश भेजते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का भी संदेश हम तक पहुंचा है। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्ल्यू डब्ल्यू भी हमें संदेश भेजते हैं। और ये संदेश किनका है? ये संदेश भेजने वाले हैं शाहजी नगर, दिगलूर जिला, नादेन महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। और इनकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म पेंटर बाबू का ये गीत।

0: जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून का संदेश हम तक पहुंचा है। और उत्तराखंड से साबिर जहां, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से ये संदेश है। साथ में है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, परवेज आलम का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ग्राम बलमी सिरसिया जिला कहां से है ये हम बाद में पढ़ेंगे। और अगला संदेश है प्रकाश सनोठिया, रोहिणी दिल्ली से हमें संदेश भेजते हैं। नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, आसफ असरफ अली, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और राम तेरी गंगा मैली का जो गीत है फिल्म का सुनना चाहते हैं, मुकेश जैन, अनन्या, ममता, पूनम, रितिका, सुमन, इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और रेणु गोयल, रोहिणी दिल्ली से हमें संदेश भेजती हैं। सतीश पाल वर्धान हमें संदेश भेजते हैं, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और अगला ये संदेश है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का भी संदेश हम तक पहुंचा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो भी हमें संदेश भेजते हैं। मकाम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से भी हमें ये संदेश पहुंचा है। श्री सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजी जाधव देशमुख, जगुताई राजी जाधव, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सईद, सर्वद हर्षिता सानवी का संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल शांति, पिंगा वाला चौक, गोराया, जलंधर से हमें संदेश भेजते हैं। और ये संदेश है रौनक रजक, नीलम रजक, समीर रजक, संतोष कुमार रजक, बर्गी डैम कॉलोनी जबलपुर से। और साथियों, अब इसी नाम के साथ ही आप मुझे यानी कुसुम के इजाजत दीजिए। दिल का मेल बॉक्स अब आपके यहीं बंद करते हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना।

0: 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी बुढ़िया के नाम
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
10: नमस्ते सर नमस्ते
9: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
10: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट

0: कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे, उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके।

0: वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा

फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी
उनके साथ जुड़ने

लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैसालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैसालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैसालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैसालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है,
तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही
फिलैंथ्रोफी के लिए भी

0: जाने जाते थे, उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः। देशवासिनां नवोन्मेषपूर्णविचाराणां च चर्चां कुर्मः।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है दोस्तों कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है चलती का नाम गाड़ी और मैं हूं आपके साथ ज्योति भारती। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म के बारे में कैसे बनी ये फिल्म और क्या है इसकी कहानी।
1: बाजू

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ में आपके साथ ज्योति भारती। और आज की जो फिल्म है वो है चलदी का नाम गाड़ी। दोस्तों, जैसी ये फिल्म है और जैसे इसमें कलाकार हैं, आज के दौर में ऐसी फिल्में बनना और ऐसे कलाकारों को ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कल्ट फिल्म, ये कल्ट सिनेमा में इसको गिना जाता है। और इस फिल्म की अगर बात करें तो 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई और तीन भाई इसके अंदर है। मुझे ये लगता कि आज के दौर में तीन सगे भाइयों को लेकर एक फिल्म बना लेना और उसका कल्ट सिनेमा में आ जाना एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार के अभिनेता, तीनों अभिनेता हैं और इनके अभिनीत से सजी ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई। साथ में है मधुबाला, वन एंड ओनली मधुबाला। और सत्येन बोस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, मजरू सुल्तानपुरी ने सारे गीत लिखे और SD बर्मन साहब का संगीत इस फिल्म में है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है, तीन भाई हैं और गाड़ी चला रहे हैं, एक कंपनी बनाई हुई उनकी कार है जिसको वो चलाते हैं और तीनों लड़कियों से बहुत डरते हैं, उसके पीछे एक कहानी है। वैसे आपने आज के दौर में एक फिल्म देखी होगी हलचल, कुछ कुछ ऐसी फिल्म जो है कॉपी की गई है। मैं समझती हूँ कि चलती का नाम गाड़ी से कॉपी बहुत सारी फिल्में हुई हैं। और तीनों भाई जो हैं वो एक दूसरे को बहुत सी चीज़ें छिपाते भी हैं और बताते भी हैं। तो ऐसे में जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत फास्ट ट्रैक में फिल्म चलती है, तेज़ी से गाड़ी का जाना, तेज़ी से आना, तो वो कॉमेडी को और बेहतर बनाने का एक तरीका है। लेकिन आपको पता है, सत्येन बोस इस फिल्म को बहुत बाद में वो एंट्री हुई इनकी डायरेक्शन को लेके। किशोर कुमार साहब इसमें पहले किसी और को लेने वाले थे। जी हाँ, सत्येन बोस ने तो बाद में इसको डायरेक्ट किया, लेकिन इससे पहले कमाल मजूमदार इसको डायरेक्ट करने वाले थे। और लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया कि वो तीन भाइयों को

साथ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और किशोर कुमार जो लेजेंडरी एक्टर हैं जिनको हम में से बहुत लोगों ने बहुत सीरियस रोल्स में देखा है, और कॉमेडी की टाइमिंग किशोर से भी ज़्यादा जो अशोक कुमार साहब की कॉमेडी की टाइमिंग बहुत गजब की है। उनकी एक फिल्म थी खूबसूरत रेखा जी के साथ में, उसमें आप उनकी कॉमेडी देखेंगे तो आप कह उठेंगे कि वाकई में उनकी कॉमेडी को उनकी टाइमिंग को मैच कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। तो कमाल मजूमदार जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन उन्होंने किया मना, और फिर उसके बाद किशोर कुमार गए सत्यन बोस के पास और सत्यन बोस ने कहा ठीक है मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर देता हूँ, आप तीनों भाइयों को मैं डायरेक्ट करता हूँ, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और चूंकि फिल्म में एकदम सीधी सपाट है और कॉमेडी के साथ साथ फिल्म की एक स्टोरी है, एक लाइनअप है जिसको हम पर्दे पर दिखा सकते हैं। तो फिल्म शुरू हुई और उसके बाद आती है मधुबाला जी की एंट्री जिनका नाम है फिल्म में रेनू। वैसे इन तीनों भाइयों का भी अलग अलग नाम है, अगर मैं इन तीनों भाइयों का नाम बताऊं तो अशोक कुमार साहब का नाम है ब्रजमोहन और अनूप कुमार साहब का नाम है जग्गू और किशोर कुमार साहब का नाम है मनमोहन यानी कि मन्नू। तो ये तीन भाई हैं और तीनों भाई एक गैरेज में है, इनका अपना गैरेज है और उसको चलाते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो ऐसे में एक रात में जो है मधुबाला जी की यानी रेनू की गाड़ी खराब हो जाती है और रेनू पहुँच जाती है इनके गैरेज के पास। उस टाइम ड्यूटी पर होते हैं किशोर साहब, तो किशोर साहब यानी मन्नू जी सो रहे होते हैं और वो नॉक करती हैं और नॉक करने के बाद वो कहती हैं कि बाहर तो तुमने बोर्ड लगाया है कि 24 घंटे गैरेज जो है वो ओपन है लेकिन तुमने बंद किया हुआ है। तो ऐसे में किशोर साहब कहते हैं कि अभी गैरेज बंद है, अभी मैं कोई गाड़ी आपकी ठीक नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मधुबाला जी कहती है कि उनको ज़रूरत है। तब वो उनकी गाड़ी ठीक करते हैं और गाड़ी ठीक करने के बाद वो उन्हें पैसे देना जो है वो भूल जाती हैं और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और जब बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसे में मधुबाला जी जो हैं वो थोड़ा भीग जाती हैं और ये एक क्लासिक गाना हमारे सामने आता है जिसको आज की जनरेशन भी बहुत ही शिद्दत से गुनगुनाती है और जब बारिश होती है और ये गाना ना बजे ऐसा नहीं हो सकता।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

रसिका एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, और ये जो गीत आपको सुनवाया मधुबाला और किशोर कुमार पर फिल्माया गया ये गीत, आज भी उतना ही पॉपुलर है। और दोस्तों, मधुबाला जो है वो किशोर कुमार साहब की पत्नी भी रही, और इस गीत को जब फिल्माया गया तो दोनों बहुत, उस टाइम दोनों को पता नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से उन दोनों ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से फिल्म के अंदर इस गीत को फिल्माया गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और मधुबाला जो है वो अपना गाड़ी ठीक करा के निकल जाती हैं, लेकिन पैसे देना वो भूल जाती हैं। बाद में किशोर साहब को याद आता है कि उनका तो 5 रुपया 12 आना जो था वो बनता है गाड़ी ठीक करने का, और वो लेके निकल गई हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो पर्स जो है अपना भूल जाती हैं, और उस पर्स में मिलता है एक टिकट, जिसमें जहाँ पे वो कहीं पे एक डांस परफॉर्मेंस देखने जा रही होती है, तो उस टिकट के ज़रिए वो वहाँ पहुँचते हैं और उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, उनका वेट करते हैं। फिर मधुबाला उनको दिखती हैं और वो एक ख्वाब देखने लगते हैं वहाँ पर। लेकिन 5 रुपया 12 आना जो गाना जब फिल्माया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों, और इसका गाना ये बहुत बड़ा हिट है। एक्चुअली क्या हुआ कि किशोर साहब बहुत फ़नी इंसान थे, वो हर छोटी छोटी चीज़ों को सिचुएशन पर लेके वो कोई धुन कोई गाना वो बना लिया करते थे। तो दरअसल अशोक कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से 5 रुपये 12 आने का एक उधार था, तो किशोर साहब उसको मस्ती में गाने लगे। और 2000 मतलब उस टाइम की कैंटीन में जब उन्होंने इतना, 5 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, तो इतना बड़ा उधार जब वहाँ रह गया कैंटीन के अंदर, तो वो उसको गुनगुना गुनगुना कर बताते थे और गाते थे। और यही सिचुएशन उन्होंने फिल्म के अंदर रखी, और कुछ इस तरह से एक गीत सामने आया।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलती का नाम गाड़ी फिल्म की हम कर रहे हैं बात। दोस्तों, किशोर साहब चाहते थे कि ये फिल्म हो जाए फ्लॉप। जी हाँ, जो कल्ट बन गई, इतना ज़बरदस्त कॉमेडी की टाइमिंग बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फिल्म में तीन भाई एक साथ हैं और तीनों ही ज़बरदस्त कॉमेडी कर रहे हैं, उस फिल्म को किशोर साहब क्यों चाहते थे कि वह फ्लॉप हो जाए। मधुबाला भी उस फिल्म में, जिनसे आप कॉमेडी की उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत ट्रेजेडी क्वीन है, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं। मधुबाला भी, उनकी टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त रही इस फिल्म के अंदर। एक्चुअली में किशोर साहब को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। किशोर साहब इस फिल्म दुआ कर रहे थे कि ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाए, ना चले, लेकिन इसका हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और 1958 यानी 1958 के उस दौर में दूसरी हाईएस्ट ग्रॉस, मतलब कमाने वाली, सबसे ज़्यादा कमाने वाली ये फिल्म बनी। दूसरे नंबर पर ये रही। और हुआ ये कि उस वक्त किशोर साहब चाहते थे कि इनकम टैक्स उनको भरना ना पड़े, और इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो कमाई थोड़ी कम होनी चाहिए, अगर कमाई ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, और टैक्स भरना पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे में किशोर साहब ने बहुत कोशिश की कि फिल्म नहीं चले, लेकिन जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपका साथ देता है, तो फिर छप्पर फाड़ कर कमाई होती है, और वही हुआ। और छप्पर फाड़ कर कमाई हुई और किशोर साहब की ये फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, जब ये गीत जब चल रहा था तो फिल्म की स्टोरी भी आगे बढ़ती है, और उसके बाद किशोर साहब को लगने लगता है कि शायद वो मधुबाला जी को पसंद करने लगे हैं। और ऐसे में अनूप साहब, यानी कि जो जिनका नाम जगमोहन है फिल्म के अंदर, वो जाते हैं मधुबाला जी के घर, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है उनके कज़न से, यानी कि किसकी कज़न, मधुबाला जी की कज़न से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो गाड़ी ठीक नहीं कर पाते और 10 ग्लास पानी पी जाते हैं डर के मारे, क्योंकि वो तीनों भाई हैं जो महिलाओं से बचते हैं, लेकिन किशोर साहब थोड़े से अलग हैं, वो महिलाओं से बात कर लेते हैं। तो ऐसे में वापस से जो हैं हमारे किशोर साहब, उनको गाड़ी ठीक करने के लिए जाना होता है, उनकी फिर से गैरेज में मुलाकात हो जाती है वहाँ जाकर मधुबाला जी से। और इसके बाद वो दोनों थोड़ा बहुत एक मस्ती मजाक चलता है, और ऐसे में उनकी जो कज़न है मधुबाला जी की, उनको अनूप कुमार साहब पसंद आ जाते हैं। तो अब मधुबाला जी को भी ये बात पता चल जाती है कि अच्छा, इनका भी इन, मतलब किशोर साहब के भाई के साथ कुछ अच्छा अच्छा मतलब माहौल बन रहा है। तो ऐसे में वो भी अपनी दिल की बात कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती हैं। तो धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर एक प्यार और प्रेम भरा माहौल तैयार होता है। तो ऐसे में जो अनूप हैं और किशोर हैं, दोनों को एक दूसरे को देखकर हंसी भी आती है, और किशोर अपने दिल की बात कहना भी चाहते हैं। लेकिन उस दौरान में जब एक बात होती है कि जब किशोर साहब मधुबाला जी को 5 रुपया 12 आना लेने गए होते हैं, उसी टाइम पे उनके घर में उनकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ से बाहर निकलते वक्त वो एक लाश देख लेते हैं, यानी कि किसी की मौत, कोई किसी को मार के और रोड पे फेंक जाता है। तो वो भागते हैं, उसको देख के डर के भागते हैं, लेकिन जो मधुबाला जी के जो पिताजी होते हैं, वो उनको लगता है कि ये शायद इन्हीं का ही किया हुआ है। तो ऐसे में SN बनर्जी ने जो है मधुबाला जी के पिता का रोल किया है, और जो KN सिंह है वो है राजा हरदयाल सिंह, जो इस फिल्म में विलन बने हैं। और साजन जी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, उनके चेहरे का जो एक आप देखेंगे फ्रेम, वो एकदम विलन के कैरेक्टर में बहुत ज़बरदस्त है। उनकी बहुत सारी फिल्में रही हैं, अप्रैल फूल, जॉनी मेरा नाम, 20 साल बाद, और इन सब फिल्मों में ज़्यादातर उन्होंने विलन का किरदार निभाया है। और ये एक फिल्म एक्टर रहे, स्टेज एक्टर रहे, लिरिसिस्ट रहे, अपने चेहरे की हाव भाव से, बनावट से वो ये जाहिर कर देते थे कि ये कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा गया है। तो साजन जी का किरदार बहुत अच्छा है, और वो मधुबाला जी से इस फिल्म में शादी कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी जब आगे बढ़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि उनकी शादी हो पाती है या नहीं, लेकिन ऐसे में आप देखेंगे कि साजन जी जिनका नाम इस फिल्म के अंदर प्रकाश चंद है, वो राजा हरदयाल सिंह यानी केएन सिंह के साथ है। और राजा हरदयाल सिंह जो है बहुत ही तेज और शातिर आदमी है, एक्चुअली में कत्ल उन्होंने ही किया होता है। और फिल्म की स्टोरी जब बढ़ती है तो किशोर कुमार मधुबाला जी से बार बार मिलने लगते हैं, और जब मिलने लगते हैं तो एक और गीत सामने आता है।
2: हम थे वो थी हम थे।

हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

खींचा आहा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा।

दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, यानी गाड़ी आगे बढ़ती है और अब मधुबाला और किशोर कुमार मिल रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं। तो ऐसे में मधुबाला के जो पिताजी हैं वो मधु की शादी करने की बात करते हैं और लड़का जो है वो उनको देखने आ रहा है। फिर मधुबाला की जो कज़न है, यानी कि जिनकी हमने बात की थी अभी, वो उनको थोड़ा परेशान करती हैं, छेड़ती हैं, जैसा कि अक्सर बहनें एक दूसरे को तंग करती हैं। तो ऐसे में जो मधुबाला हैं वो किशोर कुमार से मिलने जाती हैं, उनके घर यानी उनके गैरेज में मिलने जाती हैं। वो घर पहुँच जाती हैं, वहाँ पर अशोक कुमार भी हैं और अनूप कुमार भी हैं। अच्छा, अनूप कुमार के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा निकली है तो बता ही देते हैं। अनूप कुमार साहब किशोर साहब और अशोक कुमार साहब के भाई हैं और जितने पॉपुलर अशोक साहब और किशोर साहब रहे उतने अनूप कुमार साहब नहीं रहे, लेकिन फिल्मों में उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और यॉडलिंग की जो हम बात करते हैं, यानी कि तेज़ी से गाना गाना, ये अनूप कुमार साहब ने एक्चुअली में सीखा था, लेकिन किशोर साहब ने उसको पकड़ लिया और यॉडलिंग की वजह से ही किशोर कुमार साहब जो हैं वो बाकी सभी गायक में सबसे अलग गिने जाते हैं। तो किस्मत है दोस्तों, तीनों भाई और तीनों में से दो भाई बहुत पॉपुलर, लेकिन अनूप साहब उतनी

0: पॉपुलैरिटी उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की, जैसे प्रेम पुजारी में वो दिखाई दिए, चलती का नाम गाड़ी में आपने उनको देखा है, इसके अलावा आप अमर प्रेम में उनको देखेंगे, मजबूर, राखी, हथकड़ी, निर्माण, चोरी मेरा काम, दो अनजाने, मौत की सजा, बहुत सारी फिल्में, बहू बेटी, रात और दिन, इस तरह की बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। लेकिन जो पॉपुलैरिटी किशोर साहब को एज अ गायक, एज अ एक्टर, और अशोक कुमार साहब को एज एक्टर मिली, वो अनूप साहब को नहीं मिल पाई। लेकिन खैर, इस फिल्म में उनकी जो कलाकारी है वो देखने लायक है, जैसे कि मन्नू तेरा तो हुआ मेरा क्या होगा, ये अनूप साहब की आवाज़ है। और इसमें आप देखेंगी तो फिल्म जो है इसी तरह से आगे बढ़ रही है। अब मन्नू को तो मिल गई है, अब जग्गू भी ढूंढ रहा है कि मुझे भी, मेरी भी हो जाए। अब ऐसे में अशोक साहब क्यों अकेले रह जाए? तो जब मधुबाला की एंट्री होती है तो उनको घर में मिलती है एक फोटो, और वो फोटो देखते ही उस फोटो होती है एक लड़की की, क्योंकि तीनों लड़की से भाग रहे हैं और अशोक साहब खुद मना करते हैं कि किसी लड़की के चंगुल में नहीं फंसना है। लड़कियां जो होती हैं वो धोखा देती हैं और किसी बड़े आदमी के साथ शादी कर लेती हैं, जैसा कि अशोक साहब की पुरानी पास जिंदगी में ऐसा हुआ था, जिसका वो जिक्र बहुत कम करते हैं। तो मधुबाला उस फोटो को देखती हैं और पूछने लगती हैं, और सब बौखला जाते हैं कि लड़की की फोटो अशोक साहब के रूम में कर क्या रही है। तो ऐसे में अशोक साहब उस तस्वीर को लेकर निकल जाते हैं, और फिर मधुबाला और जो किशोर कुमार हैं वो बाहर की वादियों में निकलते हैं बात करने के लिए। और फिर आता है ये खूबसूरत गीत, जिसको आज भी लोग उतने ही तन्मयता के साथ गुनगुनाते हैं और सुनते हैं।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे, गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: हाँ, ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लूं।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ, पकड़ लाओ
1: मुर्गी।
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

अब मधुबाला जो हैं वो किशोर साहब को बता देती हैं कि उनकी शादी फिक्स होने वाली है, तो किशोर साहब कुछ उस पर जवाब नहीं देते और वहाँ से मधुबाला रूट कर चली जाती हैं और उसके बाद उनकी होती है शादी फिक्स। और वहाँ पे हेलेन जो है उनके ऊपर फिल्माया गया ये गीत, बहुत ही खूबसूरत है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में।

हेलन और कुकू पर फिल्माया गया ये गीत बहुत ही पॉपुलर रहा दोस्तों 1958 के उस दौर में। और कहानी आगे बढ़ती है, विलन के एन सिंह और प्रकाश चंद जो हैं वो मधुबाला की दौलत हड़पना चाहते हैं, और अब एंट्री होती है इसमें वीना जी, उस जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिनका नाम इस फिल्म में है कामिनी। कामिनी की शादी के एन सिंह से हुई है और उसका लिंक जो मिलता है वो मिलता है अशोक कुमार की उस फोटो से। अशोक कुमार उन्हीं से प्यार करते थे और उनकी शादी के एन सिंह से हो जाती है, और के एन सिंह जो कि राजा हरदयाल हैं। और ये जो किशोर कुमार वाला चक्कर है जो मधुबाला जी और किशोर कुमार का कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये बात पता चल जाती है प्रकाश चंद यानी के साजन जी को। अब वो जेलस हो जाते हैं और फिर फिल्माया जाता है ये गीत।

0: दोस्तों फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है और हैप्पी एंडिंग की तरफ है और विलन जो हैं अब एक्टिव हो जाते हैं। उनको जब पता चलता है कि जो मधुबाला हैं वो किशोर कुमार की तरफ जा रही हैं और उनकी दौलत जो है वो किशोर कुमार ले भागेंगे, तो ऐसे में वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और जो राजा हरदयाल सिंह हैं वो रेनू के पिताजी को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उनकी बेटी की शादी अपने आप मतलब साजन जी से करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में एंट्री हो जाती है फिर किशोर कुमार साहब और अनूप कुमार और अशोक कुमार की। अशोक कुमार बॉक्सिंग चैंपियन है, वहां पे फिर वही लड़ाई झगड़ा मार पीट और फिर हीरो उसमें जीत जाते हैं और विलन जो है वो हार जाते हैं और हो जाती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। अशोक कुमार को अपनी कामिनी मिल जाती है और शीला मिल जाती है जगमोहन को और मन्नू को मिल जाती है उसकी रेणु और कहानी जो है यही खत्म हो जाती है और फिर बजता है वही गीत जिसको हमने शुरू में सुना था। ये फिल्म दोस्तों बहुत कल्ट सिनेमा, बहुत पॉपुलर रही। इस फिल्म को आज भी जब देखते हैं तो मन जो है वो खुश हो जाता है। तो आज की फिल्म चलती का नाम गाड़ी और इस गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: प्यारे पम पम पम बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम।
0: अब मेरी मुलाकात आपसे होगी 1:10 पर। कार्यक्रम रहेगा दिल ढूंढता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि

अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज हमारी स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 1:11 और ये समय है कार्यक्रम दिल ढूंढता है, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने और बहुत ही बेहतरीन गीत। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, मोहम्मद रफ़ी के साथ संगत की है और हसरत जयपुरी ने गीत लिखे हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आईसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना फिल्म गुमराह से। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखे हैं और संगीत है रवि का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर की कली से। ओपी नैयर का संगीत है और SH बिहारी ने गीत लिखे हैं और ये गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों, कार्यक्रम दिल ढूंढता है में अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

दोस्तों, कार्यक्रम दिल ढूंढता है में मुझे अब इजाज़त दीजिए। अब आपको मैं इस गीत के हवाले करती हूँ। ये फिल्म है राजकुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। मैं ज्योति भारती अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात इन्हीं राहों में, इन्हीं रास्तों पर। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: वीर गाथा समुद्भासाम् वंदे भारत मातरम्। अर्थात भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और साधु संतों की तपस्या से पवित्र इस भूमि को, जो वीरों की गौरवशाली गाथाओं से सदा सुशोभित है, ऐसी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूं।
1: मित्राणि, संप्रति अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। अद्य अस्मदीय सहयोगिना जतिन शर्मणा प्रस्तूयते संस्कृतमातुः स्तवनम्।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सेट को उजागर किया। जनाब मोदी ने नौजवानों, मौसीकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए जिंगल्स, नारे और प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में ये मुहिम जोर पकड़ रही है। नेपाल में अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। तकरीबन 2,500 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 11 टन इमदादी सामान के साथ बजरिए तैयारा चौथी खेप भेजी है। उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ दो तरफा बातचीत की है। सदारती महल में होने वाली इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लिया। इनमें तजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते शामिल हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक योग प्रोग्राम में शिरकत की जिसका एहतमाम उज़्बेकिस्तान की योग फेडरेशन ने किया था। इसके बाद जनाब मोदी सदारती महल पहुंचे जहां उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम पूरे मुल्क में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के मकसद से शुरू की गई ये मुहिम कोई सतही प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग, खासतौर पर नौजवान, बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुनशियात की लानत महज फर्द वाहिद को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरे कुंबे और मुआशरे को इसके मुज़मरात का सामना करना पड़ता है। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए बाअसर नारा तैयार करें, जबकि नौजवान मौसीकार ऐसे नगमे मुरतब करें जो मुनशियात से पाक जिंदगी गुजारने के पैगाम की तशहीर करें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट

0: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क की बेटियों के ख्वाबों की उड़ान जमीन से लेकर बाहरी खला तक पहुंच रही है। वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया भर से उन हजारों बेटियों को एक साथ ला रहा है जो इस तरह के ख्वाब रखती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा पहल को मिशन शक्ति सेट का नाम दिया गया है और इसके जरिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों को इख्तरा के शोबे में सैटेलाइट तकनीक सीखने का मौका मिल रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे त्यौहार और तकरीबात सिर्फ रवायात को बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि इनसे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने का मौका भी मिलता है। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क में जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे कई और बड़े त्यौहार मनाए जाएंगे। कुछ ही माह में दीपावली भी आने वाली है और इसके लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो त्यौहारों के इस सीजन में वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो मरकूज करें।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वस्ती नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2,500 अफराद अब भी लापता हैं। इमदादी कारकुन इस सानहे के आज पांचवें दिन लापता होने वाले अफराद को तलाश करने और वहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के बाद से अब तक 108 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। भारत से 11 टन इमदादी सामान लेकर चौथी प्रवास काठमांडू में उतरी और ये इमदादी सामान नेपाल सरकार के हवाले कर दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्रवाईयों में मुआवनत के लिए जरूरी रसद और तकनीकी साजो सामान के साथ ये परवाज वहां पहुंची है। शुमाली उड़ीसा में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। लगातार बारिश होने के तनाजुर में बालासोर में स्वर्ण रेखा दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। शुमाल मगरबी खरीज बंगाल और इससे मुत्तसिल मगरबी बंगाल शुमाली उड़ीसा के साहली इलाकों पर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर बारिश का जोर बढ़ गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज और कल उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें प्रोग्राम में हिस्सा लिया जो खेलों के कौमी दिन से मुंसलिक एक खसूसी प्रोग्राम भी था। ब्रिक्स के इश्तराक से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग लोगों में काफी मकबूल हो गई है। इसकी अहमियत को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक उम्दा वर्जिश है और फिजाई आलूदगी से पाक माहौल कायम करने, नीस ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने का एक मौसर हल भी है। आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मस्कूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फायदा हो रहा है। वजीर आजम ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सेट को उजागर किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र

0: में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले

0: भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की।

0: अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुनते हैं नाटक रामानुजम। लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: इसके बाद में मैंने
1: तो कोरम पूरा है।
2: यस सर।
1: सिंडिकेट की अर्जेंट मीटिंग एक असाधारण मसले पर विचार करने के लिए बुलाई गई है।
3: सर, एजेंडे से कुछ अनुमान तो हुआ, लेकिन जरा विस्तार से बताइए।
1: श्रीनिवास रामानुजन के नाम और काम के बारे में हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं। मैथमेटिक्स रिसर्च बोर्ड के सामने भी ये काम पेश हुआ था। बोर्ड ने सिफारिश की है कि रामानुजन को रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, वे कैम्ब्रिज में जाकर अपना शोध पूरा कर सकें। बात यह है कि उम्मीदवार की शिक्षा नियमों के अनुसार नहीं है,
4: तब तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती।
5: अरे मामला इतना सरल होता तो इस बैठक की जरूरत ही नहीं थी। अरे श्रीनिवास के पर्चे मैंने पढ़े हैं और उनका काम भी देखा है। अब मेरे विचार में ये छात्रवृत्ति देकर हम अपने पर ही उपकार करेंगे।
4: ऐसा तो फिर नियमों का मतलब?
5: अरे नियमों में उलझना ठीक नहीं है। प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर ग्रिफिथ और प्रोफेसर हार्डी तक ने उनके काम की तारीफ की है।
3: मिस्टर चेयरमैन, हम नियमों से हटकर तो कुछ नहीं कर सकते ना।
4: क्यों नहीं कर सकते?
1: क्यों नहीं?
3: इसलिए कि हम पर सीधा पक्षपात का आरोप लगेगा।
5: कुलपति महोदय, हम गणित बोर्ड की सिफारिश पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें पक्षपात कैसा?
1: मेरी राय में भी नियमों के चक्कर में रामानुजन के टैलेंट को बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए।
3: सर, प्रतिभा को कौन रोक सकता है, कौन बांध सकता है? वो तो यहाँ भी डेवलप हो सकती है ना।
4: नहीं नहीं, फिर ठीक है, कल फिर किसी और की सिफारिश होगी, परसों किसी और की, तब हम क्या करेंगे?
1: विचार तो तब भी करना पड़ेगा।
4: मेरी राय में आने वाले खतरे को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।
5: गणित के क्षेत्र में रामानुजन की योग्यता आज
4: नहीं नहीं, मैं उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा हूँ।
3: सर, योग्यता का प्रश्न तो है ही नहीं, प्रश्न ये है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का MA पास होना जरूरी है और वो नहीं है।
1: ठीक है, नियम तो यही कहता है, पर
3: बस जब नियम यही कहता है तो विषय समाप्त।
5: अरे सिंडिकेट के सदस्यों का ध्यान मैं कुछ और बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, अगर आप लोग परमिशन दें तो।
1: कहिए।
5: यही कि रामानुजन की सिफारिश मौसम विभाग के डायरेक्टर ने भी की है और रॉयल सोसाइटी के फेलो दा गिलबर्ट ने भी की है।
3: सर, सिफारिश की बात तो हो चुकी ना।
5: मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूँ।
3: और सर, मैं भी।
5: आप थोड़ी देर चुप रहेंगे,
3: हमारा समय खराब ना करें।
5: इतनी गंभीर बात है और आपका समय खराब हो रहा है, कैसी बेटों की बात है।
3: सर, अध्यक्ष महोदय, ये मेरा अपमान कर रहे हैं।
1: नहीं, यहाँ किसी का कोई अपमान नहीं हो रहा है।
5: हाँ तो मैं कह रहा था, प्रोफेसर हार्डी ने भी रामानुजन के काम को रोचक और महत्वपूर्ण कहा है, और यह बताने की जरूरत नहीं कि गणित की दुनिया में आज प्रोफेसर हार्डी की क्या जगह है।
3: तो फिर नियम आखिर है किस लिए?
4: अब देखिए, लेकिन किसी की प्रतिभा अगर MA की डिग्री से कहीं ज्यादा हुई तो?
3: नियमों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अब बैठक खत्म कीजिए और हमें जाने दीजिए।
1: जस्टिस सुंदरम, आप क्या कहते हैं?
6: कुलपति जी, नियम तो है और वो अपनी जगह, पर इस झमेले में हम गणित का, रामानुजन का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, ये बात आप सब ध्यान रखिए।
3: पर सर, नियम तो नियम है।
5: तो क्यों ना नियम को बदला जाए?
6: जो नियम यूनिवर्सिटी के एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं उन्हें अनुचित समझा जाना चाहिए।
3: सर, तो क्यों ना नियमों को बदला जाए?
6: आप ठीक कह रहे हैं, वो भी एक रास्ता है, पर लंबा, और हमें फैसला आज ही लेना है।
1: जस्टिस सुंदरम की राय कानूनी तौर पर सही लगती है और मानवीय भी। आप अपना हट छोड़ दें और इसे स्वीकार कर लें।
3: ठीक है।
1: तो सिंडिकेट ये तय करती है कि रामानुजन को कैम्ब्रिज जाकर अपना अनुसंधान जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, वे हर 3 महीने बाद अपने काम

0: की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजते रहें।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू।
2: अम्मा
3: नहीं नहीं,
2: अम्मा सुनो तो,
3: नहीं नहीं नहीं
2: अम्मा,
3: नहीं
2: अम्मा आप मान भी जाओ ना, अपना कृष्ण स्वामी भी श्रीनिवास के साथ जाने को तैयार है।
3: बहुत कठिनाई है, नहीं नहीं, नहीं।
4: अम्मा अम्मा, कितनी मुश्किल से मिलती है स्कॉलरशिप। श्रीनिवास तू बोलता क्यों नहीं है?
5: क्या बोलूं, बड़ी अम्मा ने तो नामगिरी की रट लगा रखी है, नाराज हो जाएंगी वो।
4: अब ऐसा ऐसा क्या,
3: ऐसे जो करना है वही करे, अपने देश में भी तो बहुत कुछ है करने के लिए।
2: अरे नामगिरी को हम मना लेंगे।
3: वो कैसे?
2: अरे उसकी आराधना करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे।
4: देखो अम्मा, अब तो प्रोफेसर हार्डी ने भी खत लिखा है, कैम्ब्रिज से भी एक स्कॉलरशिप मिल रही है। अम्मा हार्डी बहुत अच्छे आदमी है।
3: तू कब मिला उससे?
4: नहीं मिला तो क्या, जानता हूँ, अच्छे इंसान है, तेरी कसम।
3: मैं मान भी लूं, पर बड़ी अम्मा नहीं मानेंगी, ये नहीं हो सकता।
4: अब बड़ी अम्मा, अरे कहाँ है, कहाँ बड़ी अम्मा?
3: नामगिरी मंदिर।
4: अब क्या करें?
2: अरे कहती क्या है बड़ी अम्मा?
3: यही सात समुंदर पार जाना, ये पाप है। वहाँ खाने को मिलेगा भी क्या? माँ संडे बाला नामगिरी रक्षा करे, तो सुन रहा है ना?
2: आता हूँ।
4: अरे अरे कहाँ चला?
2: अरे कहा ना, आता हूँ, आ रहा हूँ।
4: रामानुजन तू बोल, क्या करना है?
5: कृष्णा पहले तो डर था, लेकिन प्रोफेसर हार्डी के खत से डर नहीं रहा, पर बड़ी अम्मा को कौन समझाए।
4: बस हम लोगों की दिक्कत यही है, छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, पीछे देखते हैं और पीछे ही रहते हैं।
3: बड़ी बड़ी बातें छोड़, क्या खाएगा ये बोल।
4: अम्मा कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना मुझे, 250 पौंड की स्कॉलरशिप, काश काश अम्मा मुझे मिली होती। अम्मा अम्मा तू ही समझाना बड़ी अम्मा को।
3: पर श्रीनिवास का क्या भरोसा?
5: अम्मा ये क्या कह रही हो तुम?
6: हाँ माँ जी बिल्कुल, और मांस मछली तो बिल्कुल नहीं, और पूजा पाठ भी करना है।
4: सही कह रही है उर्मिला।
5: हाँ माँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
3: तो खाएगा क्या?
5: अपनी रसोई खुद बनाऊंगा मैं।
3: और जो वहाँ इतनी सर्दी होती है?
5: अब कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। देखो अम्मा कुछ दिनों बाद कृष्णा स्वामी और चेंगल भी पढ़ने के लिए वहीं आने वाले हैं।
3: वो तो सब ठीक है, पर तेरी बड़ी अम्मा को कैसे मनाऊं?
5: अरे मान गई बड़ी अम्मा, मान गई।
4: क्या क्या कह रहे चेंगल तू?
5: कैसे मान गई बड़ी अम्मा?
2: अरे मैंने जाकर पांव पकड़ लिए, बड़ी अम्मा ने पता है क्या कहा?
5: हाँ, क्या कहा?
2: उन्होंने कहा रात नामगिरी देवी उनके सपने में आई थी और उसने आज्ञा दे दी।
5: अच्छा?
2: इसलिए बड़ी अम्मा आज सुबह जल्दी ही मंदिर चली गई, और फिर जब मैंने ये बताया कि जल्दी ही मैं और स्वामी भी आने वाले हैं, तो बस हाँ कर दी।
4: अरे वाह चेंगल वाह।
3: अम्मा हैं कहाँ?
2: अरे आ रही हैं, जानकी भाभी भी साथ में हैं, मैं तो भागा भागा आया। अम्मा अब तू भी दे आशीर्वाद।
4: अम्मा दे दे आशीर्वाद।
3: मेरा आशीर्वाद तुम सबके लिए श्रीनिवास, अपनी रसोई खुद बनाना।
2: अम्मा हाँ हाँ यही होगा, बड़ी अम्मा ने भी सब समझा दिया है।
3: जानकी साथ जाएगी ना?
2: अभी नहीं, श्रीनिवास चल हो जा तैयार। चल चल चल आ जा, चल चल चल।

0: जानकी, जब से यहाँ आए हैं चुप बैठी हो।
1: तुम सात समंदर पार जा रहे हो ये सोचकर मुझे डर लग रहा है।
0: यहां से देखो, एक समुंदर, वो दूर दूसरा समुंदर, तीसरा, चौथा और वो पार। अरे वहीं जाकर तो कुछ कर सकूंगा ना मैं।
1: यहाँ भी तो तुम वही कर रहे हो, हर वक्त नंबर्स नंबर्स। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें नंबर्स पसंद है ना?
0: नंबर्स पसंद है और तुम भी पसंद हो।
1: भी, देखा देखा तुमने भी बोला।
0: जानकी तुम बाल की खाल निकालना बहुत अच्छी तरह जानती हो। खुद सोचो, कहाँ बोर्ड की एक छोटी सी क्लर्की, न धन न मान न संतोष, इधर क्लर्की भी मुश्किल से मिली है और उधर प्रोफेसर हार्डी जब कह रहे हैं

0: तो उसका कुछ मतलब है ना।
1: पर फिर भी
0: जानकी, इधर वो सुविधा नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं, जो समझना चाहते हैं उनके कोई सुनता नहीं। हम लोग कुछ अजब हैं, खुद को नहीं पहचानते। जब लंदन की मोहर लग जाती है ना, तब सब मानने लगते हैं। समझ रही हो जानकी? अब मेरा वक्त सामने खड़ा है कुछ साबित करने का। जानकी,
1: तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे अकेले में डर लगता है।
0: डर लगता है किससे?
1: यही कि तुम वहां जाकर कहीं कहीं बदल तो ना जाओगे।
0: हाँ भाई, इस धोती की जगह सूट टाई, यही ना।
1: ये सब नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही।
0: तो
1: वहां और भी तो बहुत कुछ।
0: भरोसा नहीं है मुझ पर?
1: भरोसा है तुम पर।
0: वहां जाकर अवसर मिलते ही तुझे बुला लूंगा, सच।
1: अच्छा, मुझे चिट्ठी लिखोगे ना?
0: हाँ भाई, रोज लिखूंगा, ठीक। अब चलें।
1: नामगिरी रक्षा करें, चलिए।

0: अरे कृष्णा चेंगल तुम दोनों पूरा एक साल लगा दिया भाई तुम दोनों ने।
1: साल से कुछ कम हमने तय किया था, जाएंगे तो एक साथ।
2: हाँ
1: तेरा क्या हाल है?
0: बस काम ही काम। अच्छा ये बताओ अम्मा कैसी हैं?
1: अरे अरे बैठने तो दे।
2: आओ बैठो।
1: अम्मा अच्छी है।
0: और जानकी?
2: जानकी जानकी उदास रहती है।
0: मजाक छोड़ चंगल।
2: ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये देख भाभी ने तेरे लिए खास चीज भेजी है।
0: क्या है?
1: और अम्मा ने भी।
0: अरे वाह बड़े दिनों बाद घर की बनी खाने की चीज मिली। दो दो दो दो जल्दी दो मुझे।
3: अच्छा अरे अरे आराम से अच्छा ये बता यहाँ क्या खाता है?
2: बता भाई।
0: हाँ बताऊ खाने की बड़ी परेशानी है।
1: हाँ तो भाभी जी को बुला लेना।
0: तब तो हो चुका काम।
1: है
0: यहाँ तो बस काम काम और सिर्फ काम।
2: अच्छा ये बता प्रोफेसर हार्डी मिलते हैं?
0: हाँ रोज मिलते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है। प्रोफेसर बेरी प्रोफेसर लिटिलवुड सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ बड़ी अम्मा कैसी हैं?
2: अरे अम्मा ठीक हैं। ये खत भिजवाया तेरे लिए। ये
0: ले तू मुझे।
2: चल अब तुझे खुशी की बात बताता हूँ।
0: क्या?
2: मद्रास यूनिवर्सिटी ने 250 पौंड और दिए।
0: हाँ चेंगल जानता हूँ इसीलिए सोचता हूँ प्योर मैथमेटिक्स में अभी काम करने का वक्त आया है।
3: अरे वो तो तुम जोरदार कर रहे हो।
1: तेरी सारी खबर मिल जाती है हमें।
0: अच्छा ये बात है। तब बताता हूँ तुम्हें मेरे दिमाग में आजकल बस अंक नाचते रहते हैं। संख्याएं बनती हैं कटती हैं फिर खड़ी हो जाती हैं। कई कई रूप। बस एक काम पूरा हो जाए तब सोचूंगा क्या करना है। कॉफी बनाओ तुम लोगों के लिए।
2: हाँ हाँ बनाओ बनाओ बनाओ।
0: एक मिनट कोई आया है बाहर। अरे सर आप। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आइए आइए सर।
4: गुड इवनिंग स्वामी।
0: इनसे मिलिए ये मेरे दोस्त कृष्ण स्वामी।
3: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
0: और सर ये हैं चेंगल बरायन।
5: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग।
0: और आप हैं प्रोफेसर हार्डी।
6: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज सिट डाउन।
6: थैंक यू सर।
3: सर वी हैव ऑल्सो ज्वाइन कैम्ब्रिज सर।
4: Oh, that's very good. Excellent.
3: हमारा सौभाग्य सर कि आपसे मुलाकात हो गई। श्रीनिवास हमारे बचपन का दोस्त है।
4: Oh, very intelligent. Genius. Genius है आपका दोस्त।
2: हम सब भी हैरान होते थे।
4: Well, आपका इंटरेस्ट किस में है?
2: विषय तो हमारा भी गणित ही है सर। कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनिवास सा हम भी कुछ कर सकें।
4: Why not? Good, good. आज जानते हैं क्या हुआ?
2: क्या सर?
4: प्रोफेसर बेरी इलिप्टिक इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। उसी का कोई सवाल जिसे बने बनाए फॉर्मूले से हल करने में लगे हुए थे।
3: फिर सर?
4: ये मुझे प्रोफेसर बेरी ने ही बताया कि इसी बीच आपका ये दोस्त श्रीनिवास खड़ा हो गया।
3: ओ
4: बोला सर मैंने

0: हल हल कर लिया है।
1: सच में?
0: प्रोफेसर बेरी ने देखा हैरान। जवाब बिल्कुल सही था। मैं वही पूछने चला आया, क्यों रामानुजम तुमने ये सवाल हल कैसे किया?
1: अब वो तो नहीं मालूम सर।
0: मतलब व्हाट यू मीन?
1: बस सर एक फ्लैश सी हुई और हल सामने था।
0: फ्लैश? पर कोई तरीका तो होगा ना?
1: तरीका तो पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ सर ढूंढने की।
0: ढूंढने की?
1: जी।
0: What do you mean by that?
1: तरीका सर, तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता।
0: इसीलिए मैं इसे एक एनिग्मा कहता हूँ।
2: हम तो बचपन से इसे ऐसे ही देख रहे हैं।
1: जी,
2: ये ऐसे ही काम करता है, बात करते करते खो जाएगा। और हमें याद है एक दिन ये पूरी रात समुद्र किनारे घूमता रहा अपने नंबरों के साथ, और एक बार तो चारपाई के नीचे घुसकर काम करता रहा।
0: Oh, well, श्रीनिवास
1: सर,
0: नो कॉफी टुडे?
1: सॉरी सर, अभी बनाता हूँ सर।
0: आपका दोस्त कमाल का आदमी है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तो प्रोफेसर लिटलवुड के साथ काम कर रहा है। सुना हालात खराब होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉर?
1: सर, आर कंट्री बुद्धा कंट्री, नो वॉर ओनली पीस, शांति।
0: एंड यू फ्रेंड चिंगल?
2: सुब्रमण्यम भारती सर, ग्रेट पोएट, एंड वी हैव ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, पीस ओनली।
1: सर, वी वर टॉकिंग अबाउट श्रीनिवास।
0: ओह यस, आई अंडरस्टूड। वो प्रोफेसर लिटलवुड अब तो वह वार फ्रंट पे है, पर हमने बताया है कि रामानुजम को किसी और छात्र की तरह से पढ़ाना ठीक नहीं। यू नो व्हाई?
1: बताइए ना सर।
0: यू नो, कुछ बातें जो मैथमेटिक्स में साबित हो चुकी हैं, बट योर दिस फ्रेंड रामानुजन, ही इज प्रूविंग देम इन अ डिफरेंट वे। इसके पास कोई थर्ड आई है जो उसे कुदरत ने दी है, आई थिंक।
2: वेरी राइट सर,
0: ही इज रियली अ सीयर ऑफ मैथमेटिक्स।
2: यू मीन साधु?
1: नो, ही मींस दृष्टा।
0: What's that? क्या कहा?
1: दृष्टा सर,
0: क्या मतलब?
1: A person who could see beyond perception.
0: Oh, that's very very right.
2: और रामानुजन आ गया।
1: कॉफी सर,
2: लीजिए
1: सर, कॉफी लीजिए।
0: Oh, thank you very much for the
2: coffee. हाँ भी लीजिए कॉफी।
0: Thank you very much for the coffee. वेरी फाइन कॉफी श्रीनिवास।
1: थैंक यू सर। अरे अरे बैठ ना, बैठ जा, तेरी ही चर्चा चल रही है।
2: मेरी चर्चा?
1: हाँ, तेरी। सर कुछ और बताइए ना इसके बारे में।
2: नो नो नो सर, नो नो नो।
0: रामानुजम प्लेज विद नंबर्स। इसका मानना है कि हर नंबर यानी हर अंक या हर संख्या की अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ ताकत है सम पावर में।
2: यू मीन न्यूमरोलॉजी सर? ये बात तो बचपन से ही कहता है।
0: नो, नॉट अ न्यूमरोलॉजी। रामानुजन के कहने के मुताबिक हर अंक के कुछ गुण होते हैं, जैसे जो संख्या 9 से कटती है उस संख्या का जोड़ भी 9 के अंक से कट जाता है, 27 या 36 या 45। ये संख्याएं 9 से कटती हैं तो इनका जोड़ भी कटता है।
1: अरे वाह।
2: पर सर जीवन में इसका कोई फायदा है?
0: बहुत लोग यही सोचते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं, बट आई फील आने वाले कल में यही हमारे जीवन और विज्ञान में बिल्कुल नए रास्ते खोलेगा। माय कॉफी इज फिनिश्ड, अब चलना चाहिए, पूरा ब्लैकआउट होने का समय भी होने वाला है। ओके गाइस, गुड नाइट टू यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
2: गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट,
0: गॉड ब्लेस।
1: थैंक यू सर। अरे वाह, प्रोफेसर हार्डी तो बड़े ही दिलचस्प आदमी है।
2: सही कह रहा है कृष्ण स्वामी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। रामानुजन अब तू भी कुछ बोल।
1: अच्छा वो कुंभकोणम के क्या हाल है?
2: वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलती तो उदास हो जाते हैं, और जब पता चलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो सब परेशान हो जाते हैं।
1: अच्छा।
2: अम्मा कहती है वापिस बुला लो।
1: अच्छा वो कुमार मंगलम, सीतारमन और वो वेंकटेश्वरन, वो सब कैसे हैं?
2: अरे सब मजे में हैं, समंदर किनारे जाते हैं, तेरी बड़ी याद आती है, अरे कितनी गप्पे लगाते थे।
3: और वो जो एक ट्राम पर चढ़ते हुए तेरी टोपी उड़ गई थी।
1: हाँ यार, अम्मा ने कितना डांटा था, वो टोपी फिर नहीं बन सकी। कैसा वक्त था वो भी, कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।
3: तब भी तूने कितना काम कर लिया देखा।
1: काम तो अभी करना है दोस्त, जंग की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये बारूदी धुआं ये मुझे मुझे बहुत परेशान करता है।
4: रामानुजन, कुछ मैजिक स्क्वायर भी बनाए क्या?
1: हाँ चेंगल, इधर मैंने संख्याओं के विभाजन पर कुछ काम किया है।
3: हाँ, इस बारे में तुम्हारा एक पर्चा भी देखा था अब किसी मैगजीन में, क्या था भला उसमें?
1: यही कि हम एक संख्या को कई तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार, चार को हम पांच तरह से लिख सकते हैं। हाँ, जैसे 4+0, 3+1, 2+2, 2+1+1 एंड 1+1+1+1
4: है।
1: इसी तरह से एक्सेसिव एंड डिफेक्टिव नंबर है, 6 एंड 28 जैसे परफेक्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्राइम नंबर्स यानी मूल अंकों का पता लगाया है, वो हैं 3, 5, 7, 11।
4: यानी
1: ये वो नंबर हैं जो इंडिविजिबल यानी जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। इसके अलावा टेंजेंट फंक्शन, गामा फंक्शन और थीटा फंक्शन पर भी कुछ काम किया है मैंने।
3: रामानुजन भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे?
4: थोड़ा बहुत नाम हम भी कमा लें।
3: अब आ ही गए हैं तो।
1: हाँ यार, ऐसे तो बहुत से एरिया हैं। अच्छा, एरिया से मुझे याद आया कि बेतरतीब जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए मैंने डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया है,
4: चाहे वो टुकड़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो।
1: हाँ।
3: अरे ये सायरन कैसा है?
1: टोटल ब्लैकआउट का टाइम हो गया।
3: बात तो कर सकते हैं ना।
1: बड़ा
3: खतरनाक वक्त है। अरे बम यही ना गिर जाए।
1: अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है।
3: रामानुजन, तुम अपनी बात कहते रहो, ये तो बचपन से ही डरपोक है।
4: अच्छा अच्छा, जहाज पर चढ़ने से तुम डर रहे थे या मैं?
3: वो अलग बात है।
4: समुद्री लहरों से तुम घबरा रहे थे या मैं?
3: अच्छा बस बस बस बस बस।
4: अरे ये बू कैसी आ रही है?
3: हाँ,
1: बारूद की बू है ये, पूरी हवा में। ये बारूदी धुआं ये मेरी जान लेने का।
3: क्या हुआ? पहले भी ऐसा होता है क्या?
4: बिस्तर पर लेटाओ।
3: डॉक्टर बुलाएं?
4: अरे अस्पताल ले चलें।
3: हाँ,
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, पानी पानी दे तुम। हाँ, सिर्फ हाँ,
4: ये लो पानी। ये दवा तुम्हारी है?
1: वो वहां रखिए दवा।
3: हाँ, मैं लेके आया।
1: ये मैं सो रहा हूँ।
3: चेंगल चेंगल, क्या हुआ?
4: कृष्ण स्वामी, बुरी खबर
3: है।
0: चेंगल, व्हाट डिड डॉक्टर से?
4: तपेदिक, ट्यूबर क्लासेस सर।
0: ओह नो, एट दिस एज?
3: चेंगल, अब
4: डॉक्टर ने कहा है कि इसे भारत वापस ले जाना ठीक रहेगा। एक तो जंग, सारे वातावरण में बारूद ही बारूद की बू।
3: हाँ।
4: और कृष्ण स्वामी, तुम तो जानते हो श्रीनिवास को कई चीजों से परहेज भी है।
3: हाँ, वो तो है।
0: नो नो नो, लेट मी टॉक टू द डॉक्टर।
4: उसे कुछ तो बताना होगा सर, और वापस जाना बहुत जरूरी है।
3: जी सर जी।
5: ये सब
1: लगता है चलने का वक्त आ गया।
5: नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। ये रोड नहीं छोड़ना था, वहाँ अपना घर है।
1: मद्रास में भी राव बहादुर का अपना ही घर था, फिर वहाँ की आबो हवा भी रास नहीं आ रही थी। मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो जाओगे।
5: बार बार ऐसा कहकर मुझे परेशान करना चाहते हो ना।
1: परेशान? जानकी, मैंने तुम्हें कब परेशान नहीं किया?
5: एक बात पूछूं?
1: बोलो।
5: लंदन से मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते थे?
1: मैं जवाब नहीं देता था? तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया मैंने, और जब तुमने ही चिट्ठी लिखना बंद कर दिया तो क्या करता?
5: कितनी चिट्ठियां लिखी थी मैंने तुम्हें, पर जब तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखना बंद कर दिया।
1: जानकी, मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया, तुम्हारी याद के सिवा मेरे पास और था ही क्या वहाँ?
5: झूठ, तुम तो हमेशा अपने नंबरों में ही उलझे रहते हो।
1: हाँ, रहता था, लेकिन हाथ में रात को सोता

0: ये चिट्ठी थी, तुमने खुद दी थी?
1: हाँ, मैंने खुद दी थी उसे। नहीं नहीं मुझे याद आया, मैंने वो चिट्ठी लिखकर अम्मा को दी थी। ओ, अब समझ गई सारी बात।
0: अम्मा? ऐसा क्यों किया अम्मा ने? लेकिन अम्मा ऐसा क्यों करेगी, समझ में नहीं आ रहा।
1: समझ में तो आता है, लेकिन चलो छोड़ो ये सब। सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारी सेहत में सुधार हो जाए और तुम जल्दी से ठीक होकर फिर से अपने काम में तेजी से जुट जाओ। अपना काम प्योर मैथमेटिक्स, नंबर से जुड़े रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनो, प्रोफेसर हार्डी से तुम्हारी बात होती है?
0: हाँ, उन्हें मैंने अपने मार्क थीटा फलन के आविष्कार के बारे में खत लिखा था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला।
1: मार्क थीटा?
0: हाँ, प्रोफेसर रोसस ने फॉल्स थीटा फलनों का कुछ अध्ययन अपने निबंध में किया है, लेकिन मेरी खोज में ये गणित में बड़ी खूबसूरती से लागू किया जाता है।
1: मेरे पास नहीं है इतनी समझ, प्रोफेसर हार्डी को भेजो ना।
0: भेजा है ना, साथ में कुछ उदाहरण भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी राय नहीं मिली, बहुत बिजी है वो।
1: आराम से चलो, सूरज भी छिपने जा रहा है, हवाओं में नमी बढ़ जाएगी। चलो अंदर चलो।
0: एक मिनट सहारा दो मुझे।
1: आराम से चलो
0: चलो।
2: श्रीनिवास का भारत लौटना भी आखिरकार निरर्थक रहा। भारत में उसका इलाज शुरू हुआ मद्रास में,
3: मद्रास से कुंभकोणम,
2: समुद्री हवाएं,
3: पहाड़ी मौसम,
2: बेहतर दवाएं,
3: दोस्तों की दुआएं और जान की भाभी की अथक सेवा,
2: अम्मा की पूजा,
3: नामगिरी का मंत्र जाप,
2: फिर भी हालत नहीं सुधरी।
3: श्रीनिवास ठीक नहीं हो सका और वो कुंभकोणम में पैदा हुआ भारत का विलक्षण अंक दृष्टा 26 अप्रैल
2: 1920 को छोटी सी 32 वर्ष की आयु में अपनी अक्षय कीर्ति छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो जिसने बचपन में सवाल किए थे, पहला सवाल, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर संख्या आएगी,
3: और फिर जीवन भर सवाल ही करता रहा, ढूंढता रहा उनके जवाब, संख्याओं का वो जादूगर चला गया।
2: वो अंकों का खिलाड़ी नहीं रहा।
3: अब हमारे पास समुद्री हवाएं हैं, पहाड़ों का मौसम है, अंकों का संसार, और हम खाली हाथ उठाए खड़े हैं
2: आसमान की ओर, जहां सिर्फ शून्य है, शून्य का विस्तार, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं रामानुजन के गणित का इस्तेमाल, प्योर मैथमेटिक्स,
3: शुद्ध गणित,
2: परमाणु शक्ति,
4: शून्य, शून्य का विस्तार, और हम आज भी खोज रहे हैं रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक रामानुजम, लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल। भाग लेने वाले कलाकार थे साबिर हुसैन, राजेश बख्शी, राजीव शर्मा, किशोर सहजानी, ब्रजमोहन यादव, जयदीप सिंह, उर्मिला चंदोलिया, सविता शर्मा और नौरीन शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। ताशकंद में आज राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता भी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों को भी औपचारिक रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं को दिशा देने के लिए विदेश मंत्री स्तर पर एक समन्वय परिषद का गठन करेंगे।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: श्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंगों को लेकर आया है। श्री मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री से बात की जिन्होंने एक अद्भुत वेबसाइट www.bharatrajya.com शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। पीठासीन सभापति के रूप में सरदार हुकुम सिंह ने सदन के संचालन में कई अच्छी परंपराएं स्थापित की। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल की उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज काठमांडू पहुंचा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं धरती फिल्म से ड्यूएट, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तो अब हम आ गए हैं फिर से आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के रेडियो किड्स प्रोग्राम में। मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त क्लास 9 से। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
1: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
2: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
3: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
4: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
5: मैं सवरीन कक्षा 8वीं से।
3: आज हम आप सबके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे विद्यालय की म्यूजिक टीम आपको कई कमाल संगीत भी सुनाएंगे। हमारे भारत देश का मतलब है भा से भाव, रा से राग, ता से ताल, यह सबका संगम है हमारा भारत।
1: अच्छा सवरीन, तुम भी तो एक कहानी लाई थी, क्या तुम हमें सुनाना पसंद करोगी?
5: हाँ, अभी सुनाती हूँ। आज की मेरी कहानी है उस भारत की, जहाँ भाषाएं अनेक हैं, पर दिलों की धड़कन एक है। ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या बनाई है? एक ऐसा देश जहाँ किसी की पहचान उसकी भाषा से नहीं, उसके दिल से होती है। जहाँ कोई पूछता नहीं तुम कौन हो, बस मुस्कुरा कर कहता है आओ साथ चले। ऐसी ही एक ट्रेन दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर बदलता भारत था और डिब्बे अंदर बसता हुआ भारत। उसे डिब्बे में बैठा था अरुण। वह चुपचाप अपने आसपास देख रहा था। किसी के सिर पर पगड़ी थी, कोई टोपी पहने था, कोई धोती कुर्ते में था, तो कोई अपने राज्य के पारंपरिक परिधान में। बातें भी अलग थी, कहीं पंजाबी की मिठास थी, कहीं गुजराती का लय, कहीं बंगाली की मिठास, तो कहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं की मधुर ध्वनि। अरुण के मन में सवाल उठा, इतने अलग लोग, अलग पहनावा, अलग खान पान, फिर भी दिल से इतने अपने क्यों लग रहे हैं? तभी एक पंजाबी परिवार ने अपना लंच बॉक्स खोला और कहा, आओ जी खाना खाइए। शब्द शायद समझ नहीं आए, लेकिन मुस्कान समझ आ गई। एक यात्री ने ढोकला निकाला, दूसरे ने इडली बढ़ाई, किसी ने पूरी सब्जी बांटी, तो किसी ने अपनी खास मिठाई। जो डिब्बा अलग अलग लोगों से भरा था, वह एक परिवार जैसा लगने लगा। भाषाएं अलग थी पर अपनापन एक था। खाने अलग थे पर बांटने की खुशी एक थी। पहनावे अलग थे पर मुस्कान एक थी। अरुण बस देखता रहा, फिर उसकी नजर बाहर गई। कहीं हरे भरे खेत तो कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं बहती नदियां तो कहीं दूर तक फैली धरती। अचानक अरुण मुस्कुराया, उसे समझ आ गया, जो बाहर दिखाई दे रहा है वही तो इस डिब्बे के अंदर भी है। भारत की धरती अलग अलग रंगों से सजी है और भारत के लोग अलग अलग संस्कृतियों में, लेकिन सब मिलकर भारत है। अरुण ने चारों ओर देखा, अलग धर्म, अलग राज्य, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, फिर भी एक दूसरे के लिए वही मुस्कान, वही सम्मान, वही अपनापन। उसने मन ही मन कहा, भारत की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम सब एक जैसे हैं, भारत की खूबसूरती तो इस बात में है कि हम इतने अलग होकर भी एक हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और अरुण की सोच भी। उस दिन उसने जाना, भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन जब ये सारे फूल साथ होते हैं तभी तो गुलदस्ता खूबसूरत बनता है। और शायद यही भारत की असली पहचान है। अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक परंपराएं, अनेक पहचान, लेकिन दिल एक और देश एक, मेरा भारत। यही है हमारे देश की खूबसूरती, विविधता में एकता। धन्यवाद।
0: इसको सुनकर तो मेरा दिल मानो बहुत ही खुश हो गया है। इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग?
6: हाँ हाँ, जरूर जरूर।

0: तन्मय, तुमने भी तो एक कहानी तैयार की थी।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं अभी सुनाता हूँ। तो बिना किसी विलंब के प्रस्तुत है मेरी कविता स्वच्छता की पुकार। मत फेंको कूड़ा राहों में, मत गंदा करो ये आंगन, धरती माँ की आंखों में क्यों भरते हो तुम सावन। ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, इसमें भी जीवन पलता है। जिस धरती पर हम चलते हैं उसका भी तो दिल होता है। एक माँ अपने बच्चों को साफ सुथरा घर देती है, फिर क्यों हम उस धरती माँ को गंदगी का दुख देते हैं। नदी हमारी बहन है जैसी, पेड़ हमारे साथी हैं, हवा हमारे सांसे हैं, इनसे ही कुछ हाल ही है। एक छोटा सा कूड़ा उठाना शायद काम लगे छोटा, लेकिन इसी छोटे कदम से बदल सकता है कल का रास्ता। आज अगर हम जाग जाएं तो कल मुस्काएगा, स्वच्छ गली और निर्मल आंगन से हर चेहरा खिल जाएगा। आओ मिलकर शपथ लें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने घर से अपनी गली से स्वच्छता को अपनाएंगे। सिर्फ दूसरों के कहने से बदलाव नहीं आएगा, जब हर कोई अपना फर्ज निभाए तभी देश मुस्काएगा। मेरी धरती मेरा आंगन, मेरी अपनी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत का स्वप्न लेकर करें आज से तैयारी। एक कदम मेरा, एक कदम तुम्हारा।

0: एक कदम मेरा एक कदम तुम्हारा, मिलकर बन जाए रहा, स्वच्छ रहे हम स्वस्थ रहे हम, यही हमारी सच्चिता। आओ धरती माँ से कह दे, अब तेरा मान रखेंगे, तेरी गोद को स्वच्छ रखकर तेरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।
1: अनन्या दीदी, आप भी हमें कोई कविता सुनाइए ना।
2: जरूर जरूर, मैं आज आपके समक्ष अपनी सब रचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है छोटा कदम बड़े बदलाव। छोटा सा कदम जब विश्वास से उठता है, तो इतिहास के पन्नों में नया अध्याय रचता है। जैसे गांधी जी ने चरखा चलाकर यही सिखाया, अपने हाथों से स्वदेशी का दीप जलाया। एक कदम था उनका, एक कदम था उनका खुद वस्त्र बनाना, पर उससे जुड़ा था देश को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे एक चरखे की आवाज ने यही था संदेश सुनाया, कि बदलाव दूसरों से नहीं स्वयं में है पाया। आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, कि आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। एक पेड़ लगाएं, एक बूंद जल बचाएं, एक जरूरतमंद की मदद को हाथ बढ़ाएं, कूड़ा ना फैलाएं, स्वच्छता को अपनाएं, प्लास्टिक छोड़ प्रकृति से रिश्ता बनाएं। जब छोटी सी आदत सबकी बन जाएगी, तो यही धरती एक सुंदर कल की तस्वीर बनाएगी। ना कोई कदम छोटा है, ना कोई प्रयास व्यर्थ, हर कोशिश में छिपा है बदलाव का अर्थ। आज का छोटा कदम कल की पहचान बनेगा, हमारा वर्तमान ही कल का उज्जवल भविष्य गढ़ेगा। तो चलो शुरुआत अभी और यहीं से करें, बदलाव की राह पर पहला कदम धरें, क्योंकि बड़े बदलाव की यही तो निशानी है। बड़े बदलाव की यही तो निशानी है, छोटे कदमों से ही रचती बड़ी निशानियां हैं।
1: मन कर रहा है अनन्या दीदी, एक गजल भी हो जाए।
2: हाँ जरूर।
1: तो हमारे साथ रक्षित भैया है ना, उनसे अच्छी गजल कौन सुना सकता है, तो चलो सुनते हैं।
3: मेरा नाम रक्षित शर्मा है और आज मैं एक गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

0: आज मैं अक्षत आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से भी होती है। मेरी कहानी का नाम है छोटा कदम बड़ा बदलाव। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसे अपने शहर से बहुत प्यार था, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी। उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क था। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग टहलते थे और लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्क की हालत खराब होती जा रही थी। जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था। एक दिन आरव स्कूल से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पार्क में खेलते खेलते केले का छिलका वहीं जमीन पर फेंक कर चला गया। आरव ने उसे आवाज लगाई, अरे रुको, कूड़ा जमीन पर क्यों फेंका? बच्चे ने पीछे मुड़कर कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक छिलका ही तो है। आरव कुछ नहीं बोला। वह छिलका उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल आया। तभी उसके दोस्त विवान ने पूछा, तुमने क्यों उठाया? सफाई कर्मचारी आएंगे और साफ कर देंगे। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अगर हम ही गंदगी फैलाएंगे और सफाई की जिम्मेदारी किसी और की समझेंगे तो हमारा पार्क कभी साफ नहीं हो पाएगा। विवान ने कहा, लेकिन हम दो बच्चे क्या बदल सकते हैं? आरव ने कहा, शायद हम पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन अपने आसपास की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अगले दिन आरव और विवान ने पार्क में पड़े कुछ कागज और प्लास्टिक उठाए। पहले उन्हें देखकर लोग हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम दोनों से पूरा पार्क थोड़ी साफ हो जाएगा। आरव ने जवाब दिया, अंकल, पूरा पार्क आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई शुरुआत न करे तो कभी साफ नहीं होगा। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई। अगले दिन वह आदमी भी अपने साथ एक थैली लेकर आया और बच्चों के साथ कूड़ा उठाने लगा। अब 3 लोग थे, फिर 5 लोग हुए, फिर 10। धीरे धीरे पार्क में रहने वाले लोगों ने तय किया कि हर रविवार वे मिलकर पार्क की सफाई करेंगे। कुछ दिनों बाद पार्क का रूप ही बदल गया। जहाँ पहले कूड़ा दिखाई देता, वहाँ अब साफ रस्ते थे। जहाँ प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती थीं, वहाँ पौधे लगाए गए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब लोग पार्क में कूड़ा फेंकने से पहले 2 बार सोचते थे। एक दिन वही छोटा बच्चा जिसने केले का छिलका फेंका था आरव के पास गया। उसने कहा, भैया, उस दिन मैंने ये सोचकर छिलका फेंक दिया कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अब समझ आया कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी गंदगी की शुरुआत बन सकती है और एक छोटा सा अच्छा काम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। आरव ने कहा, बस यही तो बात है, बदलाव हमेशा बड़े काम से शुरू नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा कदम भी काफी होता है। कुछ समय बाद शहर के लोगों ने उस पार्क का नाम रख दिया छोटे कदम बड़ा बदलाव पार्क, क्योंकि उस पार्क की कहानी सिर्फ सफाई की कहानी नहीं थी, वह कहानी थी जिम्मेदारी की। वह कहानी थी कि हमें यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का छोटा सा कदम दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है और दूसरे का कदम तीसरे को, पर यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उस दिन आरव पार्क के एक कोने में बैठा था। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो किसी जगह को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच ही तो है, हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने आसपास को भी साफ रख सकते हैं। हम कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डाल सकते हैं। हम दूसरों को इंतजार करने के बजाय ही खुद शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा कदम किसी एक जगह को बदल सकता है। एक अच्छी आदत एक परिवार को बदल सकती है और लाखों लोगों के छोटे छोटे प्रयास पूरे देश को बदल सकते हैं। इसलिए हमें यह नहीं पूछना चाहिए बदलाव कौन लाएगा, हमें कहना चाहिए बदलाव की शुरुआत मैं करूंगा। और यही है छोटे कदम बड़ा बदलाव। धन्यवाद।
1: भारत विभिन्न कला, संस्कृति और तीज त्योहारों का देश है।
2: और हाँ, तीज त्योहारों से याद आया, 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, जब बाल गोपाल जी का जन्म और उनकी बाल लीलाएं देखकर मन खुश हो जाता है। और कान्हा की बाल लीलाओं को अपने भजन में समेट कर ला रही हैं हमारे विद्यालय की बहुत सुरीली छात्र स्मृति झा। तो आइए जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भजन सुनते हैं।
3: मेरा नाम स्मृति झा है और मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
4: मेरा नाम रक्षित है और आज मैं हारमोनियम पे संगत करने जा रहा हूँ।
5: मेरा नाम अभिषेक है, मैं ढोलक पे संगत देने जा रहा हूँ।
6: मेरा नाम यश राजपूत है, मैं तबले पे संगत करने जा रहा हूँ।
7: मेरा नाम यश जैन है, मैं मंजीरे पे संगत देने जा रहा हूँ।

0: वाह दीदी, गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया।
1: हाँ तो यही तो था इतना अच्छा गाना।
0: तो दोस्तों अब चलते हैं घर, क्योंकि हमें जन्माष्टमी की तैयारी भी तो करनी है। बाय।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे रेडियो किड्स प्रोग्राम। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। ताशकंद में आज राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता भी

0: किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ समन्वय परिषद का गठन करेंगे।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: श्री मोदी को ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिये दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि वे ये सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या कम करने में भी मददगार है। उन्होंने युवाओं से रोजाना कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए देने की अपील की। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Lalima Aneja Dang. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step forward in ties between the two countries. Both sides also signed memorandum of understandings in various sectors. These include mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. The agreements were signed following delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and

बिल्कुल, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस फ्रीक्वेंसी पर आप तक पहुंच रहा है फिल्म हरियाली और रास्ता से ये रोमांटिक ड्यूएट लता मंगेशकर और मुकेश

0: bases at its corporate office in Noida. The post carries a consolidated annual compensation of approximately 24 lakhs to 30 lakhs with a maximum age of 55 years as on 1st August 2026. Relaxable up to 60 years by the governing board of ICSIIIP. Detailed qualifications, experience and application requirements are available on the official website. The last date for online applications is 5th September. Applications are to be submitted only through electronic mode. Kindly go on to the website for details, that is at www.icsiip.in. I repeat the website, kindly go on to www.icsiip.in. The Krishna Water Disputes Tribunal, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has invited applications for one post of assessor in pay level 15 as per the 7th CPC on deputation, including short-term contract or re-employment basis. Eligible candidates may be from central or state governments, union territories, PSUs, autonomous bodies, semi-government or statutory organizations. For deputation, applications in the prescribed performer along with last 5 years, CR dossiers, integrity certificate and vigilance clearance are to be forwarded through the concerned organization. Candidates seeking re-employment may apply directly. Applications must reach the registrar within 45 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. The detailed eligibility criteria and application format is available on the Ministry of Jal Shakti website, that is at www.jalshakti-dover.gov.in. I repeat the website, kindly go on to www.jalshakti-dover.gov.in. National Rural Infrastructure Development Agency, under the Ministry of Rural Development, Government of India, has invited applications for one post of Traffic and Transport Planning Engineer on contract basis. The post carries a consolidated remuneration of 60,000 rupees per month. Candidates are required to submit their applications only through email at nrida-vacancies@pmgsy.nic.in in the prescribed format. The last date for receipt of applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. Detailed eligibility criteria, application format and updates are available on the official NRIDA website. Kindly visit www.rural.gov.in or you could go on to www.nrida.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। रक्षा उत्पादन विभाग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ddpmod.gov.in। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या इस प्रकार है, अनुसूचित जनजाति 7, अनुसूचित जनजाति 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 11 और ईडब्ल्यूएस वर्ग 4 पद। ये आवेदन कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग तथा गणित एवं कंप्यूटिंग विभागों में आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2026। हार्ड कॉपी संस्थान के पते पर प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 25 सितंबर 2026। इच्छुक उम्मीदवार योग्यताओं, अनुभव, सामान्य विवरण, आवेदन पत्र तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर जिसका

0: पता है www.IIIT वडोदरा.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगी, ग्राहक सहायता और विक्रय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती योजना के अंतर्गत उम्मीदवार केवल एक बार ही परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, यानी उस भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझने की योग्यता से युक्त होना चाहिए। चयनित स्थानीय भाषा के ज्ञान के लिए परीक्षा का आयोजन चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाएगा। ये ऑनलाइन मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, लेकिन बैंक में शामिल होने से पहले आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रस्तावित नहीं होगी। जो उम्मीदवार इस बात के प्रमाण के साथ 10वीं या 12वीं कक्षा की अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें भाषा की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि एक ही राज्य में स्थित दो सर्किलों के बीच इंटर सर्कल स्थानांतरण की अनुमति होगी, अर्थात केवल उत्तर प्रदेश राज्य में दिल्ली सर्कल और लखनऊ सर्कल तथा केवल महाराष्ट्र राज्य में मुंबई मेट्रो सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल की अनुमति होगी। जिन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं, वे तथा उनमें वांछित भाषा का विवरण इस प्रकार है: गुजरात गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु अथवा उर्दू, कर्नाटक कन्नड़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिंदी, उड़ीसा उड़िया, चंडीगढ़ यूटी हिंदी अथवा पंजाबी, जम्मू एवं कश्मीर यूटी उर्दू अथवा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी अथवा हिंदी, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु अथवा उर्दू, राजस्थान हिंदी, पश्चिम बंगाल बंगाली अथवा नेपाली, उत्तर प्रदेश हिंदी और उर्दू, महाराष्ट्र मराठी, दिल्ली हिंदी, असम असमिया बंगाली अथवा बोडो, त्रिपुरा बंगाली एवं कोकबोरोक, बिहार हिंदी अथवा उर्दू तथा झारखंड हिंदी और संथाली। स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय उम्मीदवार को एक भाषा का विकल्प चुनना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट sbi.co.in। संपूर्ण विवरणों के लिए बैंक की ये वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, जिस पर पूरा विज्ञापन उपलब्ध है: sbi.bank.in/web/careers/current-openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की

0: परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लालिमा अनीचा डांग। हेलो लालिमा।
1: हेलो वैष्णवी एंड नमस्कार टू ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर ट्यून्ड इन। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द अदर साइड ऑफ द माइक्रोफोन। यस, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 FM. Yes, I'm Lalima. My co-host is Vaishnavi. And for you all, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much, much more. And all this packed tightly over the next 30 minutes, right? So we begin right away with the news headlines. And here we go. India and Uzbekistan decide to elevate bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. Both sides sign memorandum of understandings in various sectors, including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent.
0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला।
1: प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट्स मिशन शक्ति सैट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर 12,000 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम 108 कंट्रीज टू लर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड परस्यू इनोवेशन।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है।
1: Well, death toll from flash floods in Nepal rises to 734. Nearly 2,500 people are still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal.
0: ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी।
1: एंड डिफेंडिंग चैंपियंस जर्मनी टू टेक ऑन स्पेन इन द मेंस एफआईएच वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2026 फाइनल एट वेवर बेल्जियम दिस इवनिंग। And now, friends, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And we will be talking about Mann Ki Baat program. Yes, that's the Prime Minister's way to have a dialogue with the nation. Yes, we get to know what is going on in his mind. And very often he reflects the problems faced by the country, not just problem, but also he comes up with extremely good examples of real examples of people who are doing great work. And that's kind of icing on the cake in the program. Well, from street side business to satellite technology, India's daughters are breaking barriers and rewriting the story of empowerment. India's women are not just becoming financially independent, friends, they are also emerging as powerful drivers of nation's growth. And Vaishnavi, let's not forget, it was this very Prime Minister who believes in Matri Shakti or the women empowerment. He said, let's not talk about women's empowerment. We should talk about women-led development. And he has walked the talk by showing that our Honorable Finance Minister is a lady who was earlier the first lady defense minister as well. Isn't it?
0: जी बिल्कुल। और अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली महिला उद्यमियों से लेकर आसमान छूने तक का सपना देखने वाली युवा लड़कियों तक भारत की महिलाएं आज देश की प्रगति की एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही हैं।

0: Well, friends, Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program today highlighted the changing phase of women empowerment, pointing out that nearly 46% of PM Swanidhi beneficiaries are women. He also said that around 35 lakh women across the country are expanding their businesses by connecting with this scheme.
1: लालिमा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद की बबीता शर्मा और बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा का भी जिक्र किया जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जब किसी महिला का कारोबार आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार का भविष्य भी बेहतर होता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।

0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: And you know, Vaishnavi, this government started the Mudra loans, which is micro loans, you know, to people who want, it's not the big loans. And it's interesting to note that a lot many women borrowers or the loan takers are women actually who are taking Mudra loans. Exactly. And they're doing extremely well because I think, let me be a little biased, we don't have any man around, that women are a little more sincere and their loan repayment, record is far better than men. At least a few years ago, it was like that. I'm sure it's still on like that now. Well, moving back to Prime Minister's Mann Ki Baat, he said that through Mission Shakti Sat, thousands of girl students from across the globe are getting an opportunity to learn satellite technology and explore the world of space and innovation.
2: श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर से ऐसी हजारों बेटियों को एक साथ ला रहा है जो ऐसे सपने देख रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: मुझे याद आ रहा है वैष्णवी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सो इट वाज सरप्राइजिंगली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज वाज टू सी टू विमेन आर्मी ऑफिसर्स हु वर एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस सो कॉन्फिडेंटली एंड विद सो मच मेटल। एंड इट्स रियली नाइस टू आल्सो टू नो दैट इट्स नॉट जस्ट एट दैट लेवल, आल्सो एट द ग्रास रूट्स लेवल द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू इंश्योर विमेन एम्पावरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल्सो हैव नाउ लखपति दीदीज वेयर लैक्स ऑफ वेमेन have been trained in working out drones in drone management, and they're earning lakhs of money all through the year. So whether it's entrepreneurship on the ground or dreams taking flight into space, well, the message, friends, is clear, and that is, when India's women rise, India rises with them.

0: लालिमा, ये तो महिला सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या सफाई की एक छोटी सी पहल पूरे समुदाय में बड़ा बदलाव ला सकती है? अगर हम देखें तो भारत में इसका जवाब साफ तौर पर हाँ में है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा कदम कोई ले तो फिर पूरा कारवां आपके साथ आ जाता है। तो ऐसे बहुत से हमने एग्जांपल्स देखे हैं, पीपल हु बीन टच्ड बाय द डर्ट अराउंड बट दे हैव टेकन इनिशिएटिव एंड कम फॉरवर्ड। देयर वाज दिस वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आर्ट ऑफ लिविंग अ फ्यू इयर्स अगो, क्लीन दिल्ली ड्राइव, जब कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, दे केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प द गवर्नमेंट, दे जॉइन हैंड्स विद द दिल्ली गवर्नमेंट एंड दे क्लीन द यू नो द घाट्स देमसेल्व्स, द वॉलंटियर्स। सो वी हैव हैड एग्जांपल्स where people have taken that was just happening, like, choti si pehel, one step which was a big leap which turned out to be later. And yes, friends, as Vaishnavi just mentioned, let's talk about what the Prime Minister talked about in Mann Ki Baat program. From river ghats in Uttar Pradesh to the eco-sensitive landscapes of Odisha and the challenging terrain of the Amarnath Yatra, people across the country are now showing that cleanliness is not just a government campaign, it is a collective responsibility.
0: बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम खुद ही जिम्मेदार अपने आप को

0: ही महसूस करेंगे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो
1: हाँ
0: हमेशा अपने साथ एक ही चीज मेंशन करेंगे कि कैरी बैग लेके चलिए।
1: हाँ
0: लोग
1: बिल्कुल
0: अक्सर प्लास्टिक की बॉटल्स या और उस जगह को बहुत गंदा कर देते हैं, तो उसका हमें जरूर ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
0: और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन प्रेरणादायक लोगों का जिक्र किया जो स्वच्छता के संकल्प को हकीकत में बदल रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया, जिन्होंने लोगों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए प्रेरित किया।
2: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: Wow, how inspiring.
0: बिल्कुल। और लीना, अगर हम देखें तो त्योहारों का मौसम बस आने ही वाला है और भारत रंगों, परंपराओं और आपसी मेलजोल के साथ मनाने के लिए तैयार हो रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, जश्न मनाने को तैयार हो रहा है। यस वैष्णवी एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम जन्माष्टमी, गणपति पूजा एंड विश्वकर्मा पूजा टू द मच अवेटेड दिवाली, द सेलिब्रेशंस आर ऑल सेट टू ब्रिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टुगेदर। बट दिस फेस्टिव स्पिरिट कैन ऑल्सो बिकम अ सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग बिगर, एंड दैट इज ऑफ इंडियाज own talent, own craftsmanship and beautiful handmade products.
0: लालिमा, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हर समय वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते ही हैं,
1: हाँ,
0: और
1: हाँ,
0: वो सच में कितने अच्छा इनिशिएटिव है। इस बार भी उन्होंने उसी बात का जिक्र किया और लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह किया है और याद दिलाया है कि इसका मतलब सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है।
1: एग्जैक्टली, एंड आई कैन से प्राउडली फ्रेंड्स दैट व्हेन आई हैव टू गिफ्ट ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू कॉन्टैक्ट माई लोकल आर्टिजन्स, हैंडक्राफ्ट पीपल, हैंडक्राफ्टमैन, या फिर यू नो जो वीवर्स होते हैं उनसे मैं कुछ लेती हूँ, जो लोकल होते हैं जहां पे भी आप रहते हो। और अब तो इतने, पहले हम एक कॉटेज इम्पोरियम देखते थे वैष्णवी, अब तो इतनी जगह आपको बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, आपको दिल्ली हाट मिलता है दिल्ली में, 3 दिल्ली हाट तो दिल्ली में ही है, और बहुत सारे ऐसे इम्पोरियम है, एक ट्राइब्स एक है गवर्नमेंट की खोली हुई, जहां पर आपको देश भर के लोकल क्राफ्ट्समैन की बनी हुई चीजें, दे आर वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड समटाइम्स यू नो आई ऑलवेज से वैष्णवी, यू कैन कॉल इट अ जोक और व्हाटएवर, दैट इफ यू गो टू a branded shop, the same shirt, same design is available at 10 at the same branded shop all over the country, all over the world. But when you go to buy something from something which has been made by a craftsman, it's that one unique of it's one of a kind piece.
0: Bilkul.
1: So you possess something which has been made with lots of love, with lots of talent, and it's unique by itself. And so friends, I think I strongly advocate and endorse what the Prime Minister says, that now that the festival season is coming, please choose local, vocal for local, that is local products as gifts.
2: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, जब त्योहारों की रोशनी चारों ओर जगमगाने लगे और उत्सव का माहौल छा जाए, आइए इस बार भारत का उत्सव मनाएं भारतीय हाथों की मेहनत, भारतीय कारीगरी और भारतीय उत्पादों के साथ।

0: Well, it's the Western world. Ask the Western world, the developed Western world, ask them how important and how they value our craftsmanship. वहाँ कोई handicrafts बहुत कम है, तो उन्हें हमारी craftsmanship की बहुत बहुत कदर है. हम थोड़ी सी कदर कभी कभी कम करते हैं क्योंकि हमारे आस पास बहुत है.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: थिंक ऑफ कैरल.

0: The procession featured palliodams, traditional snake boards, accompanied by vanjipattu and muthukudas. Vanjipattu is a traditional song sung by the oarsmen, while muthukudas are colorful traditional umbrellas. The boats moved in group along the Pamba River, creating a colorful and festive spectacle. Tableaus showcasing traditional Kerala art forms also form part of the procession. A helicopter display was another attraction. The competitive boat race is now underway with 51 palliodams taking part, 35 from the first batch and 16 from the second batch. Special prizes will be presented for the best singing and rowing performances as well as for the best traditional attire and presentation. The famous Valla Sadhya, the traditional feast, mainly prepared for the oarsmen of the palliodams, are also underway at Aranmula. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब केरला से चलते हैं गुजरात की ओर. गुजरात का सरहदी जिला बनासकांठा ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हालांकि इस बार वजह दूध नहीं बल्कि देश में पहली बार शुरू की गई ग्रामीण भारत टैक्सी सेवा है. आइए सुनते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट.
2: बनासकांठा जिले के धानेरा तालुका के विंछीवाड़ी में हाल ही में बनास डेयरी, सुजुकी मोटर्स एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के संयुक्त उपक्रम से बनास बायो CNG मॉडल प्लांट का लोकार्पण किया गया. यह कार्यक्रम इसलिए विशेष था क्योंकि इसी दौरान बनास की धरती से देश में पहली बार ग्रामीण स्तर पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत भी की गई. इस अवसर पर 9 भारत टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. चालक स्वयं वाहन का मालिक बने इस सहकारी मॉडल के साथ देश में पहली बार ग्रामीण स्तर पर शुरू की गई इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा. इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने गुजरात सरकार द्वारा पशुपालक महिलाओं के लिए 20 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त योजना एवं बजट में CNG पंपों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की. कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने सुजुकी के सहयोग से भारत टैक्सी जैसी पहल को ऐतिहासिक बताया. इसके साथ ही उन्होंने गोबर से गौरव के माध्यम से देश को सर्कुलर इकोनॉमी का सफल मॉडल देने वाली बनास डेयरी की प्रशंसा की. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से प्रवेश अड़ियेचा.
3: So now we know that when you talk about cooperatives, it's not just limited to self-help groups. It's also now expanded to Bharat taxis. So even if you're in Delhi or metros, some places, I think, apart from Delhi, if you want to hire taxi, hire means if you want to take kuch hum international apps ko download karte hain, Bharat taxi ko download kijiye aur apne desh ki indigenous taxi app ko use kijiye and apna desh, be proud of it. From Gujarat, moving on to Odisha, it comes September, it's beautiful weather, and think of festivals. State of Odisha is organizing Odisha Parab in different parts of the country. Let's hear.
4: To take the essence of Odisha beyond its borders and connect with audiences across the country, the initiative has reached cities including Guwahati, Ahmedabad, Bengaluru and most recently Varanasi, creating opportunities for people in different parts of the country to discover Odisha's rich heritage and cultural traditions. From ancient temples and Buddhist heritage sites to pristine beaches, wildlife sanctuaries and ecotourism destinations, Odisha Parab brings the state's diverse tourism experiences to the doorstep of new audiences. The celebrations also bring alive Odisha's living traditions through handicrafts, handlooms, cuisine, music, dance and other performing arts, while providing artists and artisans an opportunity to connect with wider audiences. For the Odia community living away from home, the celebrations offer a connection to familiar traditions and memories. For others, they open a window to discover a culture shaped by centuries of history, rich craftsmanship and a deep bond with nature. With plans to take Odisha Parab to more cities, the state's rich culture and heritage will continue to reach new audiences across the country. For Parikrama, this is Nirmalya Vera for Akashvani Katak.
3: Well, it's a bit

0: British for the assassination of Narendranath Goswami, who had turned an approver for the British in the jail hospital of Alipur Central Jail on the 31st of August 1908, and he was executed in November the same year.
1: Hum diwanon ki kya hasti hai? है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में जीवन को अपनी शर्तों पर जीने और हर पड़ाव को सहजता से स्वीकार करने का भाव दिखाई देता है। इन पंक्तियों के रचनाकार थे हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक जिनकी कलम ने प्रेम, नैतिकता, समाज और मनुष्य के अंतर्द्वंद को बेहद गहराई से समझा। भगवती चरण वर्मा 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से की, लेकिन आगे चलकर हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे चर्चित उपन्यास चित्रलेखा है। उनकी महत्वपूर्ण कृति भोले बिसरे चित्र के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अब जिन सवालों और मानवीय भावनाओं को भगवती चरण वर्मा ने अपनी रचनाओं में शब्द दिए, उन्हीं पर उनकी आवाज में सुनिए कुछ विचार प्रसार भारती आर्काइव से।
2: मैं तो कविता फिर कहानी लेखक बना, और बड़े ताज्जुब बात है कि हिंदी में कहानी लेखकों में जो प्रमुख नाम है वो विशंभरनाथ कौशिक का।
1: हिंदी साहित्य में हास्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को देखने का एक माध्यम बनाने वाले लेखकों में जीपी श्रीवास्तव यानी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नाम खास है। ऐसे समय में जब हिंदी साहित्य में गंभीर विषयों को बोलबाला था, गंगा बाबू ने हास्य और व्यंग्य को अपनी पहचान बनाया। उनकी रचनाओं में लंबी दाढ़ी, दिल जले की आह और लतखोरी लाल जैसी कृतियां चर्चित रहीं।
0: Today we celebrate the birthday of Jasmine Lamboria. She was born on this day, 2001. She's an Indian boxer, as we all know. She's a Naib Subedar in the Indian Army, represented India in women's 57 kilogram event at 2024 Summer Olympics, won gold medals at 2025 World Boxing Championship and at 2025 World Boxing Cup in the 57 kilogram category. And we also talk about Shailendra today. As you all know, he's a Hindi Urdu poet, lyricist and film producer. He was born on this day in 1923, regarded as one of the greatest and most celebrated lyricists of the Indian film industry. His association with Raj Kapoor, singer Mukesh and composer Deo Shankar Jaikishan is well known, and he wrote four successful Hindi film songs in 1950s, also wrote songs in Bhojpuri language. Let's listen to a medley of his songs written by him.

0: और श्रोताओं, आप समय हो चला है आपसे इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की।
1: तो मुझे लालिमा अनेजा डैंग और वैष्णवी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेफ के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे

0: भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थायी प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गया है। इससे पहले भारत 57 टन अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में शामिल हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। वहीं बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब बचाना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला खिताब मेजी दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। समय हो गया है कार्यक्रम हौसले का। हौसले कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में। ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित देश की पहली महिला पैरालंपिक विजेता दीपा मलिक और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पैरालंपिक कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह से महेंद्र सिंह लालस की बातचीत।
1: हमारे साथ है पैरा ओलंपिक की मेडल विनर, ध्यानचंद पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपा मलिक और साथ में है सत्यपाल सिंह जी। आप पैरा ओलंपिक कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी है और सबसे कम उम्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है, पद्मश्री हैं। दीपा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पैरा खेल, इनको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस देश में नहीं थी, लेकिन यूं मान के चलिए पिछले 5-10 सालों से पैरा खेलों और खासतौर पर पैरा खिलाड़ियों के प्रति देश और समाज में एक नई अवेयरनेस आई है।
2: बिल्कुल सही बात है। जिन खेलों के स्वयं हम अक्सर अपने पैरा खेलों में ये कहते हैं कि हमारे खेलों के तो ब्रांड एम्बेसडर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसकी पीठ उन्होंने थपथपाई नहीं, चाहे ट्वीट के माध्यम से

0: सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे उनकी मन की बात के माध्यम से या पर्सनली उनसे मिलना खिलाड़ियों से जब भी वो मेडल जीत के आए, जब प्रधानमंत्री स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि अब अपंग को दिव्यांग कहा जाएगा और खेलों के माध्यम से उसका सशक्तिकरण किया जाएगा, तो खेल खेल नहीं है, उससे एक सामाजिक सोच भी बदलती है। बहुत सारे टैबूज रहते हैं डिसेबिलिटी को लेके, और उन सब से निकलकर जब वो एक इंडिया का ट्रैक सूट, जिसकी मैं स्वयं मैं एक उदाहरण हूँ, इंडिया आपकी पीठ पे लिख दिया जाता है और आपको खिलाड़ी का एक दर्जा दिया जाता है, तो उससे आपके पूरे गांव का ही सोच बदल जाती है। तो बहुत बदलाव आया है, अब तो पॉलिसीज इंक्लूसिव हो गई हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आदरणीय मोदी जी ने पैरेलली जो चलाया है, तो ये सब बहुत बड़े स्रोत हैं अवेयरनेस के, और उसका असर खिलाड़ियों की प्रोग्रेस में और उनके मेडल्स में भी नजर आ रहा है।
1: सत्यपाल जी, आप द्रोणाचार्य हैं, आप प्रशिक्षक हैं, लेकिन आपने पैरा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का ही क्यों सोचा?
2: सर, मैं जब ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा पढ़ने का शौक था, तो मैं बहुत पढ़ता था, स्पोर्ट्स के बारे में मेरा लगन था, मेरा पैशन था, मेरा हॉबी था। तो फिर मैंने कुछ पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि पैरा ओलंपिक आप जब आप वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स को पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि नंबर वन जो स्पोर्ट्स है वो है ओलंपिक्स, नंबर टू फीफा वर्ल्ड कप, नंबर थ्री पे पैरा ओलंपिक्स आता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में पैरा ओलंपिक्स के लिए कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने एक दिन मेन मोटो पढ़ा कि ओलंपिक का मेन मोटो क्या है, तो उसमें मैंने पढ़ा कि ओलंपिक मेन मोटो है हेल्दी वर्ल्ड एंड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक किया कि हेल्थ और फ्रेंड की जो ज्यादा जरूरत है डिसेबल लोगों को ज्यादा है। तो यही सोच मुझे इस पैरा स्पोर्ट्स में लेके आई और मैं तब से पैरा स्पोर्ट्स को कोचिंग कराना।
1: लेकिन इसमें चैलेंजेस ज्यादा होते होंगे, उनसे कैसे निपटते हैं? आपको लगता है कि आपका चैलेंज बतौर कोच बढ़ जाता है?
2: जी, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति को, शरीर को तो बदलना ही है, सबसे पहले उसकी सोच को बदलना है। एक दिव्यांग को उसके घर से निकाल के स्टेडियम तक लेके आना और उस समाज को फेस करने का जो काम कोच करता है, वो 50% कोचिंग वहीं पूरी हो जाती है। बहुत बड़ा टास्क होता है। हम कैसे कैसे चैलेंजेस लेके, आप सोच के देखिए, दीपा मैडम को ले लीजिए, जब वो घर से निकलती है तो हर कदम पे एक मीटर भी चलना तो भी चैलेंज है, लेकिन उसको फेस करना है, उसको ओवरकम करके वो घर से निकलती है, गाड़ी में बैठती है, फिर स्टेडियम आती है, स्टेडियम में ट्रेनिंग करती है, वापस जाती है। ये तो चैलेंज की तो पैरा स्पोर्ट्स में कोई बात ही नहीं करना, हम पैरा स्पोर्ट्स में ये बात ही नहीं करते, हम तो पैरा स्पोर्ट्स में मेडल जीतने की बात करते हैं, तभी हम आज यहाँ आए।
1: दीपा जी, मेडल जीतना एक चीज है, आपको कॉम्पीट करना है, लेकिन यहाँ दोहरा संघर्ष है। पहला संघर्ष आपका अपनी देह से है, यानी आपको अपनी देह की सीमाएं लांघना है, उसके बाद फिर दूसरे खिलाड़ियों से भी संघर्ष करना है। तो बताएं कि ये दोहरा संघर्ष कितना कठिन होता है?
0: ठीक
1: है,
0: कठिन तो अगर आप कोई भी कार्य हाथ में लेंगे तो होगा ही। कठिनाई हर एक डिसेबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग है, बहुत सीवियरली डिसेबल्ड एथलीट्स भी हैं, तो वो तो कठिनाई है ही। आप जैसे मेरे शरीर में मलमूत्र की शक्ति नहीं है, तो पानी कब पीना है, बाथरूम कैसे जाना है, स्टूल कहाँ पास करेंगे, कितनी लंबी फ्लाइट होगी, क्योंकि खाली खेल से नहीं है। आप जब हार्ड जिम कर रहे होते हैं और आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो भी आपके स्टमक पे प्रेशर आता है, स्टूल लीक होता है डायपर्स में, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट हमने बदलाव देखा है, अब हॉस्टल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फंडिंग प्रोग्राम्स बन के आ रहे हैं, अवेयरनेस है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आपका नजर एक मेडल पे और एक उद्देश्य पे आ जाती है और आपको एक ऐसा कोच मिल जाता है जो आपको वो दृश्य आपके विजुअलाइजेशन में डाल देते हैं। मुझे याद है जब मैं 2012 से पहले ट्रेनिंग करती थी, तो मुझे बार बार उस वक्त जो मेरे कोच थे उन्होंने एक ही बात की, बस एक मेडल चाहिए पैरालंपिक का, जिंदगी बदल जाएगी। और उस बात में तथ्य था कि पैरालंपिक का एक मेडल ले लेना वाकई मेरी जिंदगी बदल गई। तो जब आप ठान लेते हैं, आपका उद्देश्य बन जाता है कि मुझे अपने भारत का तिरंगा ऊपर जाते हुए देखना है, या मेरे माध्यम से 140 करोड़ भारतीय अब ताली बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, या एक प्रधानमंत्री मेरे देश के मेरी पीठ थपथपाएंगे, तो वो फिर आपको हिम्मत देता है। मोटिवेशन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और एक अच्छा कोच अगर आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं तो ये दोहरे संघर्ष आसान हो जाते हैं।
1: दीपा जी, देर से ही सही हमारे यहाँ खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हुए और दो संस्करण इसके हो चुके हैं, बताएं कि क्या इन खेलों ने भी खासतौर पर दिव्यांग खिलाड़ी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में कुछ मदद की है?
0: बहुत मदद करी है। हालांकि अभी भी मेरा एक खिलाड़ी होने के नाते मत यह है कि और भी खेल जोड़े जाएं।

0: ज्यादा से ज्यादा खेल खिलाए जाएं, बिकॉज जितना खेल हम खेलेंगे उतने हमारे मेडल ज्यादा आएंगे, उतनी हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। लेकिन जो एक बेहतरीन शुरुआत हुई, भाग्यशाली रही कि जब मैं प्रेसिडेंट थी पैरालंपिक कमेटी की तो पहला संस्करण हुआ, अब दूसरा उससे भी बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ हुआ। अब खेलो इंडिया के जब नेशनल्स होते हैं उसके साथ जब पैरा गेम्स होते हैं तो लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द इकोसिस्टम, उसमें मीडिया भी आती है, उसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, उसके अंदर इवेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट भी आता है। तो खाली खिलाड़ी ही नहीं एक पटल को पाता है जहां वो मेडल जीते, बल्कि पूरे देश में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इकोसिस्टम पूरा उन खेलों के बारे में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन टेलीकास्ट हो, और इस बार मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, चाहे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, चाहे हमारी मीडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, लार्जर देन लाइफ। इतना खूबसूरत ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी, इतना खूबसूरत खेलों का प्रांगण, बहुत खूबसूरत। एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत खुशी हुई अंदर से।
1: दीपा जी, आप भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष रही और उसी दौरान ये पहले पैरा खेल हुए, राष्ट्रीय खेल हुए, खेलो इंडिया। बताएं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए पहले खेल के आयोजन में, और उसके बाद उन खेलों से आप कितनी संतुष्ट रही?
0: पहली बार हमको एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ा कि मेन स्पोर्ट्स कौन से लेंगे जो ज्यादा पॉपुलर हो, साथ में क्योंकि जो पैरा खेल जब हम खेलते हैं तो उसमें रूल्स अलग होते हैं, असिस्टिव एड्स अलग होती हैं, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ अलग होता है, तो उसकी जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, काम करना और इन खेलों का ऑर्गेनाइजेशन करना, प्लानिंग करना, टाइम टेबल्स बनाना, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा कि जब इतने सारे व्हीलचेयर यूजर खिलाड़ी एकत्रित होते हैं तो उनके लिए लो फ्लोर बसेस अरेंज करना, उनके लिए ऐसे स्टे अरेंजमेंट या ऐसे होटल रूम्स आइडेंटिफाई करना जहां पे वो लोग आराम से एक व्हीलचेयर पे होते हुए अपना दिनचर्या और अपना रहना सहना आराम से कर सके, जिसपे अभी भी मुझे लगता है स्कोप है और बेटर होने का।
1: सत्यपाल जी, दो खेल हुए, पहले खेल के आयोजन और उसके बाद बहुत सारी चीजें दूसरे खेलों में जुड़ी भी, कुछ चीजें नई हुई, अच्छी हुई। बताएं कि पहले खेलों से लेकर दूसरे खेलों तक के इस सफर में क्या क्या चीजें आपको लगती है ज्यादा अच्छी हुई, जिनका परिणाम जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा?
2: सबसे पहली चीज जो है, पैरा खेलों में जब भी हम दिव्यांग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है एक्सेसिबिलिटी का। हमें जो व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स हैं, जो व्हील चेयर या ब्लाइंड, टॉयलेट्स अलग तरह के चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से एथलीट्स आने वाले हैं। 400 के आसपास आपको व्हील चेयर बाउंड एथलीट आएंगे। 400 व्हील चेयर बाउंड एथलीट के लिए 400 व्हील चेयर एक्सेसिबल रूम चाहिए। वो अरेंज करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि किसी भी एक होटल में चला जाए, चाहे 5-स्टार होटल में चला जाए, 1-2 रूम ही आपको व्हील चेयर एक्सेसिबल मिलेंगे। लेकिन सेमी एक्सेसिबल रूम बनाने के लिए हमने कुछ काम किए। और दूसरी चीज आती है कि स्टेडियम को व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाना, हमारे FOP जो प्ले ऑफ फील्ड है उसको एक्सेसिबल बनाना, देन उसी स्टेडियम में जितने भी बाथरूम है उनको एक्सेसिबल बनाना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है पैरा स्पोर्ट्स को कराने के लिए। दूसरा टास्क होता है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो हमारे, क्योंकि हमारी कैटेगरी बहुत ज्यादा है, सबके टेक्निकल रूल्स अलग अलग हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट करना, वो टेक्निकल ऑफिसर अरेंज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैंने यहाँ देखा है फर्स्ट से और सेकंड खेलो इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव इसमें आया है क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो खेलो इंडिया के लोग थे, उनको समझ में आया फर्स्ट गेम से कि कैसे एक्सेसिबल रूम अरेंज करने हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी हमें बस या ट्रेवल्स हमने अरेंज करना है, या जो हम बहुत सारे एथलीट्स थे जो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे, उनकी ट्रेन में चेयर नहीं आ सकती थी, तो हमारे कुछ खेलो इंडिया ने स्पेशल उनको अरेंज करके उनको फ्लाइट टिकट दी है। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे बदलाव इसमें आए हैं, और ये बहुत लार्ज स्केल पे हुए। जैसे हमें अभी डाइनिंग हॉल है वो भी एक्सेसिबल बनाना है, और जैसे हमारे ब्लाइंड एथलीट्स के लिए ब्रेल में आपको लिखना है, या जो व्हील चेयर है उसके लिए एक्सेसिबिलिटी करना है, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। पहले खेलो इंडिया में सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को मालूम नहीं था कि किस कैटेगरी को हम गाइडनर देना है, किस कैटेगरी को गाइडनर नहीं देना है, किस व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स को एस्कोर्ट की जरूरत है, किसको नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने दिन रात काम किया, सबने साथ कोऑर्डिनेशन मिला के काम किया, तो मैं समझता हूँ जो फर्स्ट है और जो सेकंड वाले पैरा खेलो इंडिया गेम हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है उनमें, और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और भी बड़ा बदलाव आया। पाएगा।
1: दीपा जी, थोड़ी सी इंजरीज की बात करें, सामान्य तौर पर कोई भी खेल उसमें इंजरीज होती हैं, और यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ी वो खेल रहा है तो उसके गिरने के लगने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो एक तो इंजरीज

0: से बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो उन इंजरीज से जूझना, उन इंजरीज से बचना, ये कितना मुश्किल होता है?
1: ये भी बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे में चर्चा करी, क्योंकि जैसा कि अभी कोच साहब ने भी कहा कि कोच का 10 कदम आगे चलना जरूरी है कि एक मसल की कितनी लिमिटेशन है या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कितना फंक्शनल है, उस मसल पे ज्यादा जोर ना देते हुए उसकी सपोर्टिंग मसल्स में अगर थोड़ी भी हरकत है तो उसको ऑल्टरनेटिव मसल ग्रुप को स्ट्रांग करना, या उसकी स्टाइल के अंदर चेंज लेकर आना, या झटके से क्या उसकी स्पास्टिसिटी बढ़ रही है उस पे नजर रखना, जैसे थ्रो फ्रेम्स हैं, असिस्टिव एड्स हैं, उनको बार बार ट्वीक करना कि कौन से एंगल पे शरीर को कैटापल्ट इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक अगेन एवरी डे दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर। हर बॉडी की एक्टिविटी अलग है, हर बॉडी की चैलेंज अलग है, मसल ग्रुपिंग अलग है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अब की तकनीकी नॉलेज जो स्पोर्ट्स साइंस वो अब धीरे धीरे पैरा खेलों में भी आ गई है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सरकार की एक ऐसी नीति रही जो कस्टमाइज करती है, और क्योंकि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में एबल बॉडी और दिव्यांग खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी उभर कर आता है, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स अब हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल तकनीक भी अब सारी इंडिया में भी अब अवेलेबल हो रही है, जिसका बहुत बड़ा एक शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी को तो मैं हमेशा हर मंच से देती हूँ। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस जब से पैरा में ऐड हुआ है तो ये इंजरी मैनेजमेंट, नॉट जस्ट इंजरी मैनेजमेंट, इनफैक्ट एंटी डोपिंग, मतलब कोई कंसेशन नहीं है। अगर आप पैरा एथलीट हैं तो आपको कोई शॉर्टकट या कंसेशन नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी उतनी मेहनत से करनी पड़ेगी, आपको अपने एंटी डोपिंग के जो भी सारे रूल्स हैं उसके तहत भी आप आएंगे, डिसिप्लिन भी आपका प्रॉपर चाहिए। मुझे लगता है स्पोर्ट्स साइंस जब से इंट्रोड्यूस हो गई है और अब हमारे कोचेस भी स्पोर्ट्स साइंस को अडॉप्ट करने लगे हैं, बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी स्किलफुल एंड वेरी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, सो यू हैव टू हैव ऑल दीज मैनेजमेंट्स अलॉन्ग विथ योर ट्रेनिंग।
0: सत्यपाल जी, जाते जाते संक्षेप में, जो ये दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए इसके बारे में अपनी राय बताएं।
2: मेरी राय यही है, और मैं इसमें कंपटीशन मैनेजर भी था, कि ये अभी तक पैरा स्पोर्ट्स का होने वाला सबसे बड़ा इवेंट था, और इसका जो असर है मैं समझता हूँ आने वाले पैरा स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा असर होगा, और आने वाले हमारे जैसे कि नेहरू स्टेडियम में हम पैरा एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप करने जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर आएगा इसका।
0: दीपा जी, यही प्रश्न आपसे पूछूंगा।
1: मैं करंटली एशियन पैरालंपिक कमेटी की बोर्ड मेंबर हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब रीजन, साउथ रीजन, अलग अलग देशों की नुमाइंदगी मेरे लिए एक बहुत गर्व का पल है, क्योंकि जिस प्रकार इसका अवेयरनेस हुई है, सोशल मीडिया पे इसके अपडेट्स आए हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, बच्चों के जो इंटरव्यूज आए हैं एथलीट्स के, इट हैज गॉन वे बियॉन्ड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय रहेगा कि मेरा देश अब खेलों का जश्न मना रहा है, और उस जश्न को देखकर पूरे संसार की आंखें चौंधिया रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्तर ऊपर हुआ है पैरा खेलों का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से, बस मेरी एक विनती रहेगी कि और खेलों को जोड़ा जाए, और जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनका भी बीच बीच में रूबरू कराया जाए जो नए खिलाड़ी हैं उनके साथ, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जब वो अपने पुराने खिलाड़ियों से रूबरू मिलेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। ओवरऑल कुडोज टू खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड द होल अरेंजमेंट्स, बहुत खूबसूरत।
0: दीपा मलिक जी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आपका हृदय से आभार।

हौसले कार्यक्रम में अभी आपने सुना खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में। ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित देश की पहली महिला पैरालंपिक विजेता दीपा मलिक और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पैरालंपिक कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह से महेंद्र सिंह लालस की बातचीत।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारे कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं।

तो सबसे पहले हम पूर्वोत्तर डायरी का मुख्य पृष्ठ खोलते हैं और आज के पृष्ठ में आपके लिए है अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और कला के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए।

अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहां की प्रमुख जनजातियों में न्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजातीय लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और उनके धार्मिक विश्वास भी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इस राज्य के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताओं में डोनी पोलो और आन नामक मान्यताएं शामिल हैं। डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा से जुड़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अवतानी और न्याशी जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर जनजाति का अपना विशिष्ट नृत्य है, जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और पिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्पकला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं, जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं, जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है।

अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा न्योकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और

0: प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है।
1: हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमने बीते दिनों आपको बहुत सी ऐसी कहानियां सुनवाई जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उद्यमिता के नए अध्याय लिख रही हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम, ऐसी ही एक कार्यशाला अभी हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हुई है, जो स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने और किस तरह से महिलाएं उद्यमिता से क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को पैदा कर सकती हैं, इस सिलसिले में ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर ये रिपोर्ट भेजी है।

0: एक हुनर नए अवसर पैदा कर सकता है, एक अवसर आय का साधन बन सकता है और अपनी आय एक महिला को आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने हुनर, रचनात्मकता और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से बेहतर आजीविका और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के इन प्रयासों को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोमती जिले के माताबाड़ी ब्लॉक में विभिन्न पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एक मंच पर एकत्र हुई। उन्होंने अपने समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया और समूह की ओर से किए जा रहे अलग अलग कार्यों के बारे में जानकारी दी। उत्पाद बनाने से लेकर उनकी बिक्री और बाजार तक पहुंच बनाने के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यशाला ने प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने अनुभव साझा करने और अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशने का मौका दिया। TRML के जिला समन्वयक ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
1: PRI बॉडी के साथ हमारा CLF के अंडर जो पंचायत है, उन पंचायत में क्या क्या अभी तक काम हुआ है वो सब डिटेल LRP दीदी के द्वारा, मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन दीदी लोगों के द्वारा सबके सामने उपस्थापन किया है। तो इस वर्कशॉप में ब्लॉक का BDO, पंचायत समिति का चेयरपर्सन, सभी पंचायतों का प्रधान, अंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सभी मौजूद था। तो हमारा ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है।
0: कार्यशाला में शामिल कई महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह नए हुनर सीखने और आय के अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। कार्यशाला में महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन पर लोगों की राय जानने का अवसर मिला। इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिली कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम ने अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, नए विचार साझा करने और अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी दिया।
2: हमारा मेन काम यही है, गांव का हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर एक महिला के पास अपना खुद का बिजनेस हो, ताकि गांव में कोई गरीब ना रहे। कुछ दिन पहले हमारे CLF में ERI बॉडी के साथ एक वर्कशॉप किया है। इसमें LRP मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन द्वारा हर पंचायत का अंडर क्या क्या विकास हुआ था वो सबके सामने पेश किया गया।
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत अक्सर एक छोटी से अवसर से होती है। एक हुनर, एक उत्पाद, एक स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, ऐसी कार्यशालाएं महिलाओं को एक साथ लाकर और उनके हुनर को प्रशिक्षण, सरकारी सहायता और बाजार से जोड़कर नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है।

कार्यशाला में ये संदेश भी सामने आया कि सही सहयोग और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद उनकी स्थायी आजीविका का साधन बन सकते हैं। कार्यशाला में महिलाओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ने के उनके संकल्प को दर्शाती है। इन महिलाओं के लिए कार्यशाला में प्रदर्शित हर उत्पाद सिर्फ बिक्री की एक वस्तु नहीं है, ये उनके हुनर, मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की उनकी कोशिश का प्रतीक है। माता बाड़ी में आयोजित ये कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल को बढ़ावा देकर महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें नए अवसरों से जोड़कर ऐसी पहले छोटे स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को स्थायी आजीविका में बदलने में मदद कर सकती है, क्योंकि जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं मिलता, इससे परिवार मजबूत होते हैं और पूरे समुदाय का विकास होता है। सशक्त महिलाएं, मजबूत परिवार और आत्मनिर्भर समुदाय। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी अगरतला, श्याम सुंदर दत्ता के साथ गोमती जिले से वैष्णवी।

0: श्रोताओं, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक खास रिपोर्ट सुनते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। पवित्र यात्रा होने के साथ साथ ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा भी होती है, क्योंकि पर्वतों की दुर्गम चोटियों से यात्रा होकर गुजरती है और तिब्बत में मानसरोवर झील तक ये यात्रा होती है। और इस यात्रा का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव का जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में, वो बहुत पवित्र स्थान है और इसी के दर्शन के लिए यात्री इस यात्रा को करते हैं। और साथ ही अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्मों में भी इस यात्रा की पवित्रता की मान्यता है। और इस यात्रा में यात्री अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो आइए हम एक विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में आपको सुनवाते हैं।
1: सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने रविवार को गांतोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के नथुला मार्ग से सफल समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों के प्रयासों की सराहना की गई। मीडिया से बातचीत में एसटीडीसी के चेयरमैन लुकेंद्र रसाईली ने सभी श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने पर बधाई दी और यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी पूरी टीम की सराहना की। रसाईली ने कहा कि श्रद्धालुओं से मिले फीडबैक और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
2: एज अ चेयरमैन बहुत खुश हैं क्योंकि इतना सक्सेसफुल हुआ, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि जितना भी यात्री हमने सब 10 बैच को ही हमने फेलिसिट करने के लिए इधर आए थे। सिर्फ फेलिसिट नहीं था, लेकिन हमको फीडबैक भी चाहिए थे कि सो दैट वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर के लिए, और बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा बात क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक इतना इम्पोर्टेंट यात्रा है, क्योंकि जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है, 140 बिलियन में देयर आर हिंदूज और द बुद्धिस्ट और दे आर द सिक्स, दे ऑल वांट टू गो टू कैलाश फॉर टू वर्शिप शिव जी। तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म में क्या होता है कि सिक्किम का टूरिज्म में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जितना भी यात्री आ रहा है इधर से जा रहा है नथुला से, उन लोग को बहुत मीडिया में पब्लिसिटी भी हुआ है और भव्य रूप में हम लोग इनॉग्रेशन किया और आज भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग को कल्बिनेट हो गया है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हिसाब से वो सिक्किम को इतना बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत पब्लिसिटी कर रहा है कि सिक्किम विजिट के लिए ऑर्गेनिक स्टेट है, पीपल ऑफ सिक्किम अच्छा है।
1: उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाएगा। एसटीडीसी के प्रिंसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरमी यूशल ने बताया कि इस वर्ष कुल 10 बैच में 464 श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा 12 जून से शुरू हुई थी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आभार व्यक्त किया।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 द 10th बैच द लास्ट बैच हैज अराइव्ड इन गैंगटॉक टुडे फ्रॉम चाइना बाय नथुला एंड दिस यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम 15th जून 2026 एंड कंक्लूडेड टुडे एंड

भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर जनजातियाँ बहुतायत में हैं और इन जनजातियों की बहुलता ही यहाँ की संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और पूर्वोत्तर भारत के ये 8 राज्य विभिन्न जनजातियों का जो संगम प्रस्तुत करते हैं वही इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम विशेष रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में कौन कौन सी खास जनजातियाँ बसती हैं, वहाँ की इन जनजातियों की क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं और उनका रहन सहन कैसा है और किस तरह से इन जनजातियों का भारतीय संस्कृति में महत्व है। साथ ही हम इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए और इनकी विविधतापूर्ण संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम में ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं, जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपातानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपातानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियाँ अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं।

असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से

ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की हैं।

मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैटी, नागा और कुकी। मैटी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है।

मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, रालते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं।

नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है।

पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा उद्योग और वन संसाधन

पेंशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।

तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन

0: डॉलर पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step towards in ties between the two countries. Both sides also signed several memoranda of understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors. These include mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. India and Uzbekistan also agreed to set an ambitious target of $5 billion in bilateral trade by 2030. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his opening remarks, Prime Minister Modi said the elevation of ties is expected to provide a renewed framework for expanding cooperation between New Delhi and Tashkent across various sectors.
0: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: Prime Minister Modi said the two countries are also working on a framework for the long-term supply of uranium. Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan following the talks, Prime Minister Modi said both countries have zero tolerance for terrorism, extremism and separatism.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के एक नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, खेती में किसान की मेहनत के साथ मौसम का साथ मिलना भी जरूरी है, लेकिन सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीड़े और बीमारियां जैसी परिस्थितियां कभी भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी स्थिति में फसल का नुकसान केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर किसान की आय और अगली फसल की तैयारी पर भी पड़ता है। ऐसे जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन से किसान इसके तहत बीमा करा सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही योजना की अब तक की प्रगति और उपलब्धियों तथा इसे और बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी समझेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका मूल उद्देश्य फसल खराब होने की स्थिति में किसान को आर्थिक सहायता देना और उसकी आय को स्थिर बनाए रखने में सहायता करना है। इस योजना को राज्यों, बीमा कंपनियों, बैंकों और दूसरी संबंधित संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं क्या हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक प्रमुख विशेषता इसका कम प्रीमियम है। खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान को अधिकतम 2% प्रीमियम देना होता है। रबी की खाद्यान्न और तिलहन की फसलों के लिए यह 1.5% है। वहीं सालाना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम प्रीमियम 5% है। बाकी प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाता है। योजना में फसल को अलग अलग चरणों में होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने का प्रावधान है। खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, जल भराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरने, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक और दूसरे गैर रोकथाम योग्य कारणों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। कई बार मौसम की खराब स्थिति के कारण किसान फसल की बुआई नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यदि संबंधित क्षेत्र में अधिकांश बीमित किसान फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बीमा राशि के अधिकतम 25% तक दावा मिल सकता है। फसल कटने के बाद कुछ जोखिमों का प्रावधान है। खेत में काट कर सुखाने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात और बेमौसम बारिश जैसी निर्धारित परिस्थितियों में कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा मिलती है। अब सवाल है कि योजना का लाभ कौन ले सकता है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान जिनका उस फसल में बीमा योग्य हित है योजना के तहत पात्र हो सकते हैं। इसमें किसान के साथ किराएदार किसान और बटाईदार किसान भी शामिल हैं, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हो। किसान के पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज या राज्य के नियमों के अनुसार मान्य भूमि अधिकार या खेती से जुड़ा प्रमाण होना चाहिए। इसके साथ ही किसान को तय सीमा के भीतर बीमा के लिए आवेदन करना होता है और संबंधित फसल का प्रीमियम भी समय पर जमा होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है वे कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC और संबंधित बैंक या दूसरी अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है। हालांकि योजना में कुछ सीमाएं भी हैं। गैर अधिसूचित क्षेत्रों की फसलें आमतौर पर इसके दायरे में नहीं आती। इसी तरह निर्धारित फसल अवधि के बाहर होने वाले नुकसान और जानबूझकर की गई लापरवाही या रोकथाम योग्य कारणों से हुए नुकसान को सामान्य तौर पर कवर नहीं किया जाता है।
1: श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसमें किसान को कितना प्रीमियम देना होता है, किन परिस्थितियों में फसल को बीमा सुरक्षा मिलती है और किसान किस तरह इसमें शामिल हो सकता है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और इसे मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी और बीमा कवरेज लगातार बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में योजना के तहत 92 करोड़ से अधिक किसान आवेदन बीमित किए गए हैं और 26 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों पर दावों का भुगतान किया जा चुका है। इन दावों की कुल राशि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। योजना का लाभ किराएदार और बटाईदार किसानों तक भी पहुँच रहा है। वर्ष 2018 से अब तक ऐसे 1 करोड़ 44 लाख से अधिक किसान योजना में शामिल हो चुके हैं। राज्यों की भागीदारी में भी बदलाव देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश ने खरीफ 2022 में योजना में वापसी की, झारखंड खरीफ 2024 से फिर योजना में शामिल हुआ और पश्चिम बंगाल ने खरीफ 2026 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर अपनाया है। बिहार ने भी रबी 2026-27 से योजना लागू करने का फैसला किया है। दूसरी ओर कुछ राज्यों में योजना लागू करने के तरीके में बदलाव के कारण किसानों के नामांकन में उतार चढ़ाव भी आया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में खरीफ 2025 के दौरान किसान नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एक साझा डिजिटल मंच के रूप में काम करता है। इसके जरिए किसान नामांकन, बीमा से जुड़ी जानकारी, दावों की गणना और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है। जमीन के रिकॉर्ड को इस पोर्टल से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इससे यह जांचने में मदद मिलती है कि किसान की कितनी जमीन और कौन सा क्षेत्र बीमा के तहत शामिल है। कई राज्यों में लगभग 85% बीमित क्षेत्र का सत्यापन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के जरिए किया जा रहा है। डिजी क्लेम के जरिए दावों की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया को किसान के स्तर तक ट्रैक करने में मदद करता है। वर्ष 2022 से शुरू इस व्यवस्था के जरिए अब तक 55,000 करोड़ रुपए से अधिक दावों की गणना और भुगतान किया जा चुका है। तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाते हुए यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी यस टेक शुरू किया गया है। इसमें उपग्रह और दूसरी तकनीकों की मदद से फसल की उपज का अनुमान लगाया जाता है। इससे फसल नुकसान का आकलन

0: अधिक सटीक बनाने में मदद मिलती है। इसी तरह वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम के जरिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम से जुड़ा आंकड़ा जुटाया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। यह जानकारी फसल बीमा के साथ साथ मौसम की निगरानी और आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी है। क्रॉपिक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू की गई AI आधारित डिजिटल पहल है। इसके जरिए फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेकर फसल की स्थिति की निगरानी की जाती है। भविष्य में इसका इस्तेमाल फसल नुकसान और उपज का आकलन करने में भी किया जाना है। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इसका टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 है। जनवरी 2024 में शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत अब तक 26,12,000 से अधिक किसानों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और समाधान की दर 99.66% रही है। इसके अलावा गैर ऋणी किसानों के घर तक बीमा सुविधा पहुंचाने के लिए AIDE और स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान दर्ज करने के लिए क्रॉप लॉस असेसमेंट ऐप यानी क्लैप जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ सरकार रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी लागू कर रही है। इसमें वास्तविक फसल नुकसान के बजाय मौसम से जुड़े आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा तय किया जाता है। यह योजना खास तौर पर फल, सब्जियों और बागवानी जैसी फसलों के लिए उपयोगी है। इन पहलों का उद्देश्य सीधा है, किसान का नामांकन आसान हो, फसल का आकलन अधिक सही तरीके से हो, दावों का भुगतान समय पर हो और शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा सके। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बड़ी संख्या में किसानों और खेती के क्षेत्र को बीमा सुरक्षा से जोड़ा है। कम प्रीमियम के कारण किसान के लिए बीमा लेना अपेक्षाकृत आसान बनाया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे जोखिमों से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक उद्देश्य है फसल के जोखिम को कम करना, किसान की आय को सहारा देना और नुकसान के बाद भी खेती की निरंतरता बनाए रखना। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।

0: परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तरद्विसहस्रवर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकन्दनगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियो येवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः। श्रीमोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्ने हि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी सन्तोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमन्त्री न्यवेदयत यत् मादकद्रव्य व्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते, अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादकविरोधि जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादकद्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है, मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमन्त्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46%मिताः महिलाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्रस्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए।

0: और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट् इत्यस्ति, येन 80 देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेष क्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बई नगरस्थेन कृष्ण शेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
0: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन्स और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
1: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायाम् अद्य भारतीय महिलादलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $5 billion बाय 2030। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 30,000 crore

0: Into Indian equities in August so far, and in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला. 2030 तक $5 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह पुरानी तेजी टूटी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodhji, I see our first caller has already connected with us from Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
1: हाँ, मार्केट पंडा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: मैं SIP के द्वारा ATM से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ 8 years से, और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ STP के माध्यम से 12 किस्तों में, 12 महीनों में मैं इसे कर लगाना चाहता हूँ. और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ, और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 years के लिए.
2: जी, तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप जैसे एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड का आप चुनाव करने में इच्छुक हैं. थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको इन फंड से भी मिल सकता है, और उसके अलावा अगर आप 15% अपना पैसा एक डिफाइंड फोकस्ड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में अगर लगाते हैं, और बचा हुआ पैसा अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इन टाइप की कैटेगरीज में लगाते हैं, तो देखिए मोटा मोटा एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा रहेगा, आपका 15% डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप आपके इन फंड्स से मिलेगा, और फ्लेक्सी कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनमें भी आप लगाएंगे, इनसे भी आपका कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपोनेंट बनेगा. तो करीब 45-50% शायद आपका पैसा इन छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेशित रहेगा, बचा हुआ लार्ज कैप में. तो आई थिंक एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए.
0: All right, after that advice, let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan, and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors, including mining, economic and financial dialogue, and tourism, among others.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
0: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI apps of India to scan national QR, UZQR, for making merchant payments in Uzbekistan. Ashutosh, before we go any further,

0: Further with the more news in our program today. We've heard some positive headlines today. We've spoken about this comprehensive strategic partnership. We spoke about the FIIs infusing funds. So how do you view this in the landscape of mutual fund investment for a common investor?
1: So the broad undercurrent that we should look at is that the more opportunities Indian businesses have to expand their businesses, increase their exports to different countries, bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not, remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea, to broad-base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is positivity and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
2: Sarabjit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai aur जब चर्चा इसी पर है तो मुझे अभी कुछ समय पहले की बातें भी याद आने लगी, जब हम बात कर रहे थे कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें, और कई श्रोता इस पर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, और समय समय पर जब मौका मिलता है, जब खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं. आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाजार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाजारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
1: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूंगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है. अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है. कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो. कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है. लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें. मेरे हिसाब से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाजारों में लगाएं. लेकिन अभी वो एवेन्यूज म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं. थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है आरबीआई की लिमिट्स की वजह से. अभी आप बहुत ज्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए. तो आप जो बाकी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं.
2: जी, बाकी एवेन्यूज में क्या क्या है?
1: बाकी एवेन्यूज में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल ऑप्शन है वो है गिफ्ट सिटी, जहां पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाजारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे. उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं.
2: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं. चले हम अगली खबर की ओर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला. इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है। अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपए आए और इसके उलट

0: जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2318 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं। एफपीआई के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं, हालांकि अभी काफ़ी समय से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम अपने बाज़ार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है कि अब हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है?
1: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी फर्क पड़ा है। और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा एसआईपी के जरिए लगातार भारतीय बाजार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी काउंटर वेट अब दे पाते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट को। पहले एफआईआई का पैसा जब आता था या जब जाता था उसके हिसाब से बाजार में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो एसआईपी के माध्यम से आज की डेट में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है एफआईआई के उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता व्हाट्स हिज क्वेश्चन।
0: पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें एसआईपी स्टार्ट किया था। तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में जरूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए।
0: जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: या गुड इवनिंग सर, कंप्लीट टीम, दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, इफ पॉसिबल नेम द इंडस्ट्रीज, थैंक यू।
1: I'm afraid it's very difficult to say, put a specific percentage. As a mutual fund investor, since this show is specific to mutual funds, I would say that is the whole idea of investing in a mutual fund, that these kind of queries or these kind of doubts you can very conveniently leave to the expertise of a fund manager. On your end, you should only choose a handful of good, diversified, long-term wealth-creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi-cap, multi-cap, value, and let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
0: वैसे क्या भारत में semiconductors के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ?
1: जी नहीं, अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा।
0: जी, एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले अभी, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है। तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि

0: क्या वो अग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
1: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज करी थी कैटेगरीज और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा। तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे। तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझकर एक फंड में इन्वेस्ट किया था और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है, 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही कॉन्टिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट जी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फंड अभी भी सक्षम है या नहीं है। और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
2: Ashutosh, I've been listening to you very carefully and in these last 20 minutes you've given us good piece of advice. So taking cue from just what you've been saying, no doubt returns of a mutual fund are a guiding criteria. But when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
1: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you. And then, the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund, there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
2: Correct.
1: Which diverge significantly in their risk return, payoffs or the risk return promise that they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down on the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
0: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला थम गया। जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा। उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 1,56,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसलकर 2,36,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ। और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई।
2: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल।
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार।
3: हेलो,
2: हाँ जी, सवाल पूछे।
3: हाँ, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है।

0: तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको हर महीने कितना कितना, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी नहीं है हमारे को
1: जी। तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफी कम, कुछ फंड्स में तो आप 100 रुपए प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। काफी सारे फंड 100 रुपए या 500 रुपए से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर चूज कर सकते हैं। जहां तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इन्फॉर्मेशन लगता है, और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफर नहीं करेंगे। थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें, और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज्यादा कंट्रोल रहेगा, कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफर करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफर करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है।
2: जी बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है, तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया, और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें। क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना जरूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
1: जी अगर कभी रिडेम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं आपको अदरवाइज अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं तो ऐसी कोई बाधा
2: कोई
1: आपके लिए कुछ
2: कोई बाध्यता नहीं है।
3: जी आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्न्ड?
1: सो आई'ड से नॉट जस्ट फॉर द यंग जनरेशन बट अक्रॉस द बोर्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ग्रेटली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन टू मेक एन SIP यू हैड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। When I started investing about 20-25 years back, at that time you did not have a facility to create an e-mandate, an e-NASH mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and I had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized, and in about 15 minutes time, you can set up your account, from scratch and make your first investment. So, of course, it connects much more with the younger generation because they've started, with everything digital. But even for elder investors, for senior citizens who are comfortable doing it digitally, it's a great enablement.
3: All right. The Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi. Vinod ji, sawal puche.
4: पूरी मार्केट मंत्र टीम को मित्र से नमस्कार
3: जी। नमस्कार।
4: मैं आशुतोष से पूछना चाहूंगा कि जब जैसे कि पिछले साल से मैं रिटर्न कुछ नहीं आया म्यूचुअल फंड से, लेकिन हम रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने के? थैंक यू।
1: तो देखिए मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे

0: लेकिन सेबी काफी जागरूकता इसके लिए ला रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में, इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफी काफी संभावना है, काफी पोटेंशियल है रीट्स में। तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं।
1: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections and forex reserves.
2: जी, आज वक्त इतना ही है आशुतोष, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिन्दी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: केंद्रीय मंत्री राज

0: राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालेमा अनेजा डैंग। India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Both countries today signed 11 memorandums of understanding in various sectors including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, comprehensive and strategic partnership, higher education and environment. Our correspondent reports that during the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, both countries agreed to set a target of $5 billion of bilateral trade by 2030, which is 5 times of current trade. Important decisions were taken for bilateral trade in the areas of trade and investment, infrastructure, critical minerals, mining, defense and security, innovation, agriculture, pharmaceuticals, health, information technology, digital public infrastructure including UPI and education, among others. Prime Minister Narendra Modi said that both countries have zero tolerance against terrorism, extremism and separatism.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Prime Minister Modi said the two countries are also working on a framework for long-term supply of uranium.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 137वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की नवीनतम कड़ी में इतिहास और विरासत से लेकर नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण, कृषि नवाचार, अंतरिक्ष विज्ञान और स्थानीय उद्यमिता तक अनेक विषयों पर बात की और इन सभी में जन भागीदारी तथा देशवासियों के छोटे बड़े प्रयासों को खास महत्व दिया। इन पर चर्चा करने और उनके सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ को समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: अशोक जी, सबसे पहले समग्र रूप से देखें तो आपकी नजर में मन की बात की इस कड़ी का केंद्रीय संदेश क्या है?
3: हर मन की बात एपिसोड की तरह प्रधानमंत्री ने 137वीं कड़ी में भी एक बहुत उन बात कही कि ये जो मन की बात है ये एक मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में, दूर दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग जो नए नए प्रयास करते हैं, यानी जिनके इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, उन पर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और उन आइडियाज से प्रधानमंत्री बहुत कुछ सीखते भी हैं और फिर उन प्रयासरत लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। तो ये कोई एक तरफा मंच नहीं है। जैसे आज भी उन्होंने शुरू में एक बहुत लंबे समय तक एक संवाद किया एक ऐसे एक व्यक्ति से जो सोशल मीडिया के द्वारा, जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये बताया था कि वो अब एक ऐसी वेबसाइट उन्होंने बनाई है जिससे कि वो भारतीय इतिहास के बारे में लोगों जानकारी देने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उसमें रुचि दिखाते हुए उनसे बहुत देर तक संवाद किया। तो ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी इनोवेटिव आइडिया की चर्चा करके निकल जाएं। तो इस प्रकार से ये जो संवाद आज बहुत लंबा चला और आपने जैसे कहा कि और भी बहुत

0: विषयों पर प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की आज, उसमें आपने भी जैसे बताया कि नशा मुक्त भारत किस प्रकार से बनाया जाए, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये एक अभियान जो चला है इस समय पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक उन्होंने कहा कि ये इस समय पूरे देश में एक सामूहिक संकल्प है कि हमें नशे की लत से खुद भी नहीं पढ़ना और लोगों को उसमें से भी निकालना है। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री संवाद के जरिए भारत की या देश की या समाज की जो समस्याएं हैं उनको भी उजागर करते हैं, लोगों को भी उन अभियानों में जोड़ते हैं, और जो लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज के साथ उनकी सराहना भी करते हैं और उनसे संवाद भी करते हैं।
1: जैसा आपने कहा था कि इतिहास को नई और रोचक दृष्टि से समझने के लिए तकनीक के इस्तेमाल का उदाहरण भी दिया है प्रधानमंत्री ने, भारत राज्य जैसे प्रयास के संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि डिजिटल माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के इतिहास और कम चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम तैयार हो सकता है?
0: बिल्कुल, जैसा प्रधानमंत्री ने भी ये जो कृष्ण शेषाद्री जी से आज लंबा संवाद किया और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो इतिहास हमारे स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है वो एक ही किसी विशेष एक कालखंड या एक एम्पायर या किंगडम को वो एक ही दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी विरासत है उसमें कितने ही ऐसे साम्राज्य हुए जिन्होंने भारत पर लंबे समय तक अपनी संस्कृति को, अपने वैल्यू सिस्टम को बनाए रखा। और इस तरह की जो कृष्ण शेषाद्री जी ने उनकी बात की, जैसे उन्होंने चोला वंश की बात की, इसी तरह से उन्होंने और भी जो भारत में जितने भी ये हुए हैं साम्राज्य उनका इतिहास ठीक ढंग से जो है नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उसको वो अपनी वेबसाइट के जरिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी से इतिहास को समझना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री ने एक काफी लंबा संवाद उनके साथ कर लोगों में एक रुचि एक तरह से विकसित करने का प्रयास किया।
1: और अब आते हैं हम महिला सशक्तिकरण पर। इसकी चर्चा करते हुए पीएम ने स्वनिधि से जुड़ी महिलाओं के उदाहरण जो दिए हैं पीएम स्वनिधि से, वो सामने आए। क्या छोटे उद्यमों तक आसान वित्तीय पहुंच सचमुच महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रही है?
0: अब ऐसी लाखों माताएं और बहनें हैं जिनको पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण का ये जो पहलू है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना की जो लाभार्थी इनमें 46% महिलाएं हैं, और यानी देश में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, और ये सब बड़े छोटे कारीगर हैं, कारोबार हैं। तो ये जब महिलाओं का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी आगे बढ़ता है, जैसे आपने कहा उनके बच्चों की शिक्षा बढ़ती है और देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ता है, और इस तरह से महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास भी जागता है। तो यही से महिला सशक्तिकरण का एक नया रूप है, यानी रेड़ी पटरी के काम में जुड़ी सभी जो बहनें हैं प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं भी दी और पीएम स्वनिधि योजना से जो उनको लाभ हो रहा है उसकी भी चर्चा की।
1: और अगर महिलाओं की बात आ रही है तो हम ओडिशा के देवरीगढ़ में जो महिलाओं द्वारा जंगल के संरक्षण को आजीविका से और इको टूरिज्म से जोड़ने का उदाहरण है उसकी भी चर्चा हुई है। क्या ये मॉडल हमें बताता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी मानने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, देखिए जब जंगल का संरक्षण अगर आजीविका का साधन बनता है तो लोग बहुत उससे जुड़ते हैं, जैसे आपने भी नाम लिया। तो ये जो ओडिशा के देवरीगढ़ के गांव की जो चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी और उसमें एक महिला के चर्चा की, मैथिली भुए की बात की, और कहा कि ये मैथिली जी का जो जीवन है इसमें जो बदलाव आया है वो अब दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रहा है। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण से जुड़ चुकी हैं, कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही हैं, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी हैं, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं तो प्रकृति की रक्षा भी हो रही है और जीवन में समृद्धि भी आ रही है। तो ये जो प्रयास महिलाएं कर रही हैं ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं, देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन ये जीवन में बदलाव लाने का एक रास्ता शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी ओर आज प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से चर्चा की, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अनेक परिवार जो हैं वो इससे जब जुड़ते हैं हम प्रकृति की भी रक्षा

0: करते हैं और इको टूरिज्म का भी हम एक तरह से विकास करते हैं।
1: स्वच्छता के क्षेत्र में युवाओं और अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं तथा स्वच्छता कर्मियों की भागीदारी के उदाहरण भी दिए गए हैं। क्या स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर नागरिक उत्तरदायित्व और जन आंदोलन बनाने की प्रक्रिया अब अधिक सशक्त हो रही है?
0: देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान की बात की थी तो उस समय कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री देखिए स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अभियान को प्रधानमंत्री ने गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके साथ जोड़ा और इसमें इनको एक तरह से जनता की भागीदारी के साथ जोड़ने की एक संकल्पना जो बनाई थी वो आज साकार होती दिख रही है। और लोग जिस तरह से इस अभियान में जुड़ते हैं और संकल्प लेकर जुड़ते हैं वो आज हम देखते हैं कि गांव गांव और शहर शहर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया और एक विशेष तौर से रामपुर के गांव की बात की और वहां दो जो नौजवान हैं आकाश और रोहन, इनकी विशेष तौर से चर्चा की कि उन्होंने जो इलाका गंदगी से भर गया था और इन दोनों ने कचरे के बैग उठाए, सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा उनके साथ जुड़ गए और टीम बन गई जिसका नाम रखा गया क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं और उन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। इसी संदर्भ में जैसे आप भी कह रहे थे, अमरनाथ यात्रा में भी स्वच्छता और जन भागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे, लेकिन इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा किया गया और उसको प्रोसेस भी किया गया। और ये जो प्रयास विशेष रूप से हैं, ये स्वच्छता अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि श्रद्धालु लोग ही कचरा फेंकते हैं और इस बार तो 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प किया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया है और ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योति भी प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारे गांव हो या शहरों, हमारी नदियां हो या तीर्थ स्थल हो, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से ही बनती है और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है तो उन स्थानों की शोभा और बढ़ जाती है।
1: नागालैंड में नई फसलों और किसानों के बाजार से सीधे जुड़ने के उदाहरणों का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। क्या कृषि में विविधीकरण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई फसलों का चुनाव और बाजार से बेहतर जुड़ाव, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर खोल सकते हैं?
0: मैं समझता हूँ लगभग हर मन की बात के एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट की जरूर चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है वो अलग थलग ना पड़ जाए, इसलिए वहां पर होने वाली जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, वहां के जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र, उसकी चर्चा अवश्य करते हैं। इसीलिए उन्होंने आज भी देखा कि नागालैंड के फेक जिले की वेसालुपुरी, उनकी एक कुछ यात्रा का उदाहरण दिया। किसान परिवार से बड़ी और बचपन से उन्होंने माता पिता को खेती करते देखा था और खुद फूलों के साथ बहुत लगाव था और 2021 में इन्होंने इसी शौक को छोटे स्तर पर करते करते अब इतना उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया है कि अभी फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों से फूल की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग ली और उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर हजारों पौधे उगाए। पहले प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूलों की उन्होंने बागवानी की। तो इससे जो एक नई शुरुआत बनी है, तो फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया जा रहा है विशेष तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। और जो स्थानीय बाजार में ये फूल जाते हैं, आज नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक भी नॉर्थ ईस्ट के फूल जा रहे हैं। अब जब ये शौक मेहनत इस तरह से आगे बढ़ता है तो और लोगों को भी एक नई संभावनाएं खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो उदाहरण देकर प्रधानमंत्री मन की बात में चर्चा करते हैं बहुत प्रभावी रहती है।
1: अंत में इतिहास, संस्कृति और सिनेमा से लेकर युवा शक्ति, महिला उद्यमिता, पर्यावरण, कृषि, अंतरिक्ष और वोकल फॉर लोकल तक, इस पूरी कड़ी को देखते हुए आपके अनुसार आज के भारत के लिए मन की बात का सबसे बड़ा संदेश क्या है?
0: हर मन की बात एपिसोड में एक ही संदेश रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत।

0: इस वसुधैव कुटुंबकम
1: जी
0: विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो हमको हर क्षेत्र में काम करना होगा, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें जोड़ना होगा, युवा उद्यमियों को जोड़ना होगा और विशेष तौर से कृषि क्षेत्र को बढ़ना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने बंगाल के फिल्म स्टार उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी की भी चर्चा की, जिस तरह से उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसी तरह से आज जैसे हर बार आने वाले त्योहारों के बारे में प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं और त्योहारों की परंपरा है वो भारत में हमको एक दूसरे से जोड़ने का अवसर देती है। इसी से भारत में अनेकता में एकता की एक तस्वीर झलकती है। और फिर जो त्योहार आने वाले होते हैं उनकी प्रधानमंत्री चर्चा करके लोगों को याद भी दिला देते हैं। जैसे 4 सितंबर को जन्माष्टमी आ रही है, फिर विश्वकर्मा पूजा आएगी और इससे हम अपने कारीगरों को, शिल्पकारों को, विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करते हैं। ऐसे ही त्योहारों के मौसम में आपने जैसे कहा कि हर बार वोकल फॉर लोकल का भी आग्रह प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा वोकल फॉर लोकल का अर्थ केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घरों के लिए जो भी सामान खरीदें एक बार जरूर देख लें कि क्या वो भारत में ही बना है। तो भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात की इस कड़ी में उठाए गए विविध विषयों पर सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत सारगर्भित चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 137वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

0: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 years of SCO together towards sustainable peace, development and prosperity. SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। बिश्केक सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक और व्यापारिक संबंध तथा सतत विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम क्या क्या होगा।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी 31 अगस्त को वर्ल्ड नॉमेड गेम्स के उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे और 1 सितंबर को SCO समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन द साइडलाइंस माननीय प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, जैसे कि आपको ऑलरेडी ज्ञात है प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे और ऑफकोर्स वो जो होस्ट कंट्री के लीडर हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सदर जापरोव प्रेसिडेंट ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक से भी उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो बायलैटरल रिलेशनशिप का रिव्यू होगा और इसको कैसे और सुदृढ़ किया जा सके उस पर चर्चा होगी।

0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान एससीओ समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है और इस साल की थीम है 25 ईयर्स ऑफ द एससीओ टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है, ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द एससीओ एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर enjoys a clout in the global arena and India is also a very strong and respected voice of the global south and India is one of the largest global economies growing at very fast rate enjoys a considerable interest or I'd rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries which are based on historical and civilizational foundation.
0: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
1: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलेटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलेटरल फोरम एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड टू कंटिन्यू इन देयर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीजंस।
0: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
1: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलेटरल एक्सरसाइज खंजर व्हिच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी आल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense ITEC programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
0: Sir, Kyrgyzstan jo hai wo Bharat ka ek extended neighborhood hai. Yadi hum Central Asia ke saath mein Bharat ke संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
1: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
0: सर, भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है संबंधों का। इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
1: 2019 के बाद जो हमारा बायलेटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके। उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली From here, they participate in various exhibitions and we are trying to explore how the bilateral trade turnover could be increased and how the mutual investments can be promoted between the two countries.
0: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country, and we are very proud that the Indian diaspora in the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation, and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
0: Pradhan Mantri Narendra Modi ji ki Kyrgyzstan ki ye teesri yatra hai.

0: इसके पहले भी वो 2019 में एसईओ समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं। ये यात्रा का कितना महत्व है?
1: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलेटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है।
0: सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
1: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta, and the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage, and there is a participation from India also, and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And I think Honorable Prime Minister has accepted the invitation of His Excellency the President of Kyrgyz Republic, and he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
0: थैंक यू सो मच सर आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

पुराने और मधुर गीत संगीत का सफर, सुरीला सफर आप तक लेकर आए हैं एक बार फिर से एफएम गोल्ड के माध्यम से, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। कार्यक्रम है सांझ ढले, और सांझ ढले में आपके लिए वो सुरीले नगमे जो बहुत पुराने हैं, लेकिन जहाँ कहीं एक नगमे सुने गए थे आज भी याद किए जाते हैं, और अगर आपने नहीं सुने हैं तो आपको अब भी सुनकर यकीनन अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ 1951 की फिल्म बहार का, आवाज़ शमशाद बेगम की, ये गीत आपने यकीनन सुन रखा होगा, ऐसी मुझको उम्मीद है। बहुत खूबसूरत इसकी बीट्स हैं, बहुत खूबसूरत धुन और लय है, और शमशाद बेगम की आवाज़ के तो कहने ही क्या, जिसको संगीत में पिरोया है मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन ने।

0: ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर 7:41, 14 सेकंड और कार्यक्रम सांझ ढले में आपके, जैसे कि जानते ही हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ पुराने ऐसे नगमे जिन नगमों को सुनकर आपकी कुछ यादें पुरानी ताज़ा या तो हो जाती हैं, या अगर उनसे जुड़ी कोई याद नहीं है तो आपको कुछ नई जानकारी मिल जाती है। और गीत संगीत को पसंद करने वालों की का तो टेस्ट हमेशा ही अच्छा ही रहता है, चाहे वो किसी भी दौर का म्यूजिक हो, उनको सुनना पसंद आता है। जैसे कि ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजी का। जी बाजी सुन के आपको एकदम बहुत कुछ याद आ गया होगा, तो सुनते हैं इस गीत को। गीता दत्त की आवाज़ है और इत्तेफाक की बात है कि ये भी गीत SD बर्मन ने संगीतबद्ध किया था।

इजाजत दीजिए नईम को अभी इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सांझ ढले। आप सुनिए कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रादेशिक समाचार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
0: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। कहा, दिल्ली सरकार का संकल्प, राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज साउथ दिल्ली सुपरस्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
5: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार

0: का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 137वें मन की बात कार्यक्रम का आज दिल्ली में 6,339 स्थानों पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा, पीएम स्वनिधि में महिलाओं की भागीदारी और वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर बल दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा के मीडिया सह प्रमुख प्रदीप भंडारी, निवर्तमान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों से कार्यक्रम को सुना। श्री पांडा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने लंबे समय तक किसी नेता द्वारा किसी देश के करोड़ों लोगों के साथ इस तरह सीधे संवाद करने का उदाहरण बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर जिले, विधानसभा और बूथ स्तर पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। स्कूल कॉलेजों में सेमिनार, खेल प्रतियोगिताएं और युवा चौपाल आयोजित कर युवाओं को खेल, संस्कृति और सेवा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राउस एवेन्यू कोर्ट में मजबूत भारत के निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वकीलों और कानूनविदों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक बदलाव और विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। इस दौरान श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अधिवक्ताओं के साथ सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 MPD के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुगम बनाने और इसे अधिक आसानी से समझ में आने योग्य बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है। एक रिपोर्ट।
2: इस पहल के भाग के रूप में DDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया क्या है सेक्शन के अंतर्गत MPD 2047 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक व्यापक सेट उपलब्ध कराया है। इनमें लैंड पुलिंग, पारगमन उन्मुख विकास और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास समेत प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण ने MPD 2047 फीडबैक सुविधा भी शुरू की है जिसके जरिए नागरिक और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही मास्टर प्लान को सरलता से समझने के लिए दृश्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। ये डिजिटल पहल प्राधिकरण के 3 महीने से हितधारक जुड़ाव कार्यक्रम की पूरक है जिसके अंतर्गत MPD 2047 के विभिन्न पहलुओं पर 20 बैठकें निर्धारित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रमुख कार्यान्वयन क्षेत्रों सहित शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के विकास पर चर्चा के लिए एक साथ लाना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली सरकार ने बताया कि राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि रिक्लेम किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध रोड मैप के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्या को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मौजूदा कूड़े के पहाड़ों को हटाने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो इस पर भी काम कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने भविष्य में नए कूड़े के पहाड़ बनने से रोकने के लिए 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ और मनोप्रभावी पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
3: ये ऑपरेशन 72 घंटे का ऑपरेशन था जिसको हमने नाम चक्र 72 दिया था। ये 24 से 27 अगस्त की रात तक का ऑपरेशन रहा था जिसमें पूरे जिले के हर थाने, हर सब डिवीजन और सारी ऑपरेशन टीम्स ने इसमें काम किया, जिसके तहत 154 एफआईआर्स दर्ज हुई और 193 लोग अलग अलग केसेस में अरेस्ट हुए हैं। इसमें हमारा फोकस था ऑर्गेनाइज क्राइम पे, आर्म्स एक्ट, ड्रग्स, एक्साइज और गैम्बलिंग पे।
1: पुलिस ने आबकारी अधिनियम मामलों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10,000 क्वार्टर से अधिक अवैध शराब और एक कार बरामद की गई। वहीं मादक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 2.5 किलोग्राम मादक पदार्थ और 700 से अधिक नशीली दवाएं बरामद की है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22 चाकू, 3 देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जुआ अधिनियम के अंतर्गत 50 मामले में 87 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,69,750 रुपए की राशि और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा अभियान के दौरान 4 चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अभियान का उद्देश्य अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार और जुआ गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कोटा से हिमांशु भाई सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 2 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास तथा फायरिंग के कई मामलों में वांछित और इनामी अपराधी घोषित थे। पुलिस ने दोनों वांछित आरोपियों के अलावा उनके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोपियों को पनाह देने और पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक योजना बनाई है। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान यातायात डायवर्जन, प्रभावित रास्तों और समय के बारे में विस्तृत जानकारी पहले से ही जारी की जाएगी।
4: समिट 3 दिन है, उसके टाइमिंग फिक्स है। उस दौरान हमारे डायवर्जन पॉइंट्स रहेंगे, साइनेजेस रहेंगे, हमारी एडवाइजरी रहेगी और पब्लिक को हम कोई भी ऐसा अलग मूवमेंट कहीं होता है तो जहां भी हम डायवर्जन करते हैं अल्टरनेट रूट्स को उनको बताएंगे कि यहां पे डायवर्जन है तो इन रूट से आप बताइए, तो किसी अल्टरनेट रूट्स को आप सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो अपना कम्यूट कर सके। देखिए ट्रैफिक का जो उल्लंघन जो भी करेगा डेफिनेटली हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में शामिल होंगी। देशभर में स्थित NIFT के 18 परिसरों के स्नातक छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक यात्रा के समापन पर एक साथ एकत्रित होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की संकल्प ने छोटे उद्यमों को नई ऊर्जा, पहचान और बाजार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राष्ट्रीय राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े, नए बाजारों तक पहुंचे, अधिक रोजगार सृजे करे और विकसित भारत की यात्रा में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि लघु उद्योग रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता और आर्थिक विकास की मजबूत नींव है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वीं संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में भी मददगार है। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से रोजगार

0: जा रहा है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले क्वालिफायर में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि एलिमिनेटर के रास्ते दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में प्रवेश करने वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली की टीम को 72 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। कहा, दिल्ली सरकार का संकल्प, राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज दिल्ली सुपर स्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10,00,000 का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज़्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने

0: कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of mining for rare earth minerals.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोडमैप बनाना चाहिए।
1: Both countries today signed 11 memorandum of understandings in various sectors, including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, comprehensive and strategic partnership, higher education and environment. Our correspondent reports that during the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, both countries agreed to set a target of $5 billion of bilateral trade by 2030, which is 5 times of current trade. Prime Minister Narendra Modi said that both countries have zero tolerance against terrorism, extremism and separatism.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: From Uzbekistan, the Prime Minister will reach Kyrgyzstan in a short while from now to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit at Bishkek tomorrow. Prime Minister Narendra Modi was conferred with Uzbekistan's Supreme State Award, the Order of Oliye Darjali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev today in Tashkent. Mr. Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse and highlighted Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign. He also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme and celebrated growing avenues for women in advanced fields like the space industry. He also praised groundbreaking grassroots innovations in agriculture and digital technology. The death toll from flash floods in Nepal has risen to 781, with more bodies being recovered. More than 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded on the 5th day since the disaster. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal said rescuers have so far evacuated 8,186 people from the affected districts, including 227 foreigners. The External Affairs Ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. Meanwhile, the World Health Organization has released $150,000 from the Southeast Asia Regional Health Emergency Fund to support urgent health and other needs of the community impacted by the devastating flash floods in Nepal. In women's cricket, India will take on Thailand in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8:30 p.m. Indian Standard Time. India finished as runner-up in the 2024 edition of the tournament after losing the final to Sri Lanka. And that is the end of this news bulletin.

मधुरिमा शास्त्रीय संगीत पर आधारित, शास्त्रीय रागों पर आधारित मधुर गीतों का वो कार्यक्रम जिसे आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैं नईम अख्तर। चैनल है आप ही का अपना एफएम गोल्ड, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 8:11:10 और मधुरिमा का आगाज करते हैं एक बेहद बेहद दिल को और कानों को लुभाने वाले एक गीत से।

इसी को कहते हैं दिग्गजों की टीम। जी हाँ, दिग्गजों की टीम हमने इसलिए कहा कि एक तरफ आवाज लता मंगेशकर की, तो दूसरी तरफ संगीत मदन मोहन जैसे दिग्गज का, और तीसरी तरफ एलिगेंट राजा मेहदी अली खां के लिखे हुए बोल एक ऐसे गीतकार जिन्होंने आप जैसे सोफिस्टिकेटेड लव्स का इंट्रोडक्शन हिंदी फिल्मों के गीतों से करवाया। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और इस पर भी सोने पर सुहागा ये कि इस गीत की जो बंदिश है वो राग अडाना पर आधारित है, जिसे अडाना कान्हड़ा भी कहा जाता है। इसे अक्सर राग दरबारी कान्हड़ा में विलंबित रचना के बाद द्रुत लय में गाया या बजाया जाता है, क्योंकि अडाना की चाल दरबारी की तुलना में सीधी होती है, जिससे इसमें तेज स्वर समूहों का प्रयोग किया जा सकता है। इस राग का प्रवाह राग मधुमाद सारंग, राग मेघ और राग दरबारी के मिश्रण जैसा होता है। इस राग का वादी स्वर षड्ज और संवादी स्वर पंचम है। राग अडाना की अगर हम बात करें तो इसके आरोह में आमतौर पर कोमल गंधार का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अवरोह में यह हमेशा कान्हड़ा राग की खास चाल ग म रे सा यानी गंधार मध्यम ऋषभ और षड्ज में दिखाई देता है। इसके अवरोह में कोमल धैवत का प्रयोग होता है, लेकिन उस पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरा जाता है। असल में कुछ संगीतकार तो इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। इस राग का ज्यादातर विस्तार ऊंचे यानी कि ऊपर वाले षड्ज के आसपास यानी सप्तक के ऊपरी हिस्से में होता है। इस राग का विस्तार अक्सर ऊंचे षड्ज के साथ शुरू किया जाता है। और अगर इसके गाने बजाने के समय का की बात करें तो इसका गायन समय रात देर रात का है, यानी रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। तो ये तो बात हुई राग अडाना की। और अब एक और राग जिसका नाम है राग असावरी, उस पर आधारित पहले आप गीत सुन लीजिए, फिर राग असावरी के बारे में बात करेंगे।

नहीं नहीं अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो जाने का वक्त हुआ भी नहीं, हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी हैं, 8:20:04 हुए हैं। तो अभी आपके लिए हमें ये भी बताना है कि जो ये गीत हमने बड़ी बहन फिल्म से आपको सुनवाया था, ये गीत राग आसावरी पर आधारित था। वैसे एक और ख़ास बात इस गीत की ये थी कि लता मंगेशकर की आवाज़ तो थी ही, लेकिन इसका जो संगीत दिया था वो दिया था हुसन लाल भगत राम ने। बहुत पुराने संगीतकार हैं जिनका नाम वो लोग तो जानते हैं जो संगीत प्रेमी हैं, बाकियों के लिए एफएम गोल्ड ने आपको बता दिया अभी अभी मधुरिमा के माध्यम से, है ना। चलिए राग आसावरी की बात करें तो प्राचीन भारतीय संगीताचार्यों के अनुसार ये राग श्री की एक प्रमुख रागिनी है। जी हाँ, रागिनी, राग नहीं, इसको रागिनी माना उन्होंने। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि ऋतु, समय और भावादि का वैज्ञानिक विश्लेषण करके प्रमुख 132 तरह के राग रागनियों की कल्पना की गई थी, लेकिन जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने इस भेद को हटाकर सबको राग की ही संज्ञा दे दी है। तो इसलिए अब इसको राग कहा जाता है, राग आसावरी, न कि रागिनी आसावरी। राग आसावरी जो है वो वियोग श्रृंगार की का राग है और इसके गायन का समय जो है वो दिन का द्वितीय प्रहर है। एक खास बात इस राग के बारे में जो संगीत ग्रंथों में आती है वो आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कुछ इस तरह से कहा गया है इस राग के बारे में, पीतम के बिरहा भरी इत उत डोलत धाए, ढूंढत भूतल शैल बन कर मलमल पछिताए। तो ये राग आसावरी की बात थी और राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत आपको सुनवाते हैं। मजा लीजिए इस गीत का, बाद में इसके बारे में बात करेंगे।

राग भीमपलास, ये एक ऐसा राग जिसको अगर हम ये कहें कि उस पर आधारित हिंदी फिल्मों के सबसे ज्यादा गीत बने हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जो फिल्मों में रागों पर आधारित गीत बने हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हिट गीत जो है वो राग भीमपलासी पर ही हैं। और इस राग पर आधारित जो गीत अभी आपने फकीरा फिल्म से सुना, ये काफी थाट से निकलता है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत नहीं लगता है और अवरोह में सभी स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी जाति ऑड ऑफ संपूर्ण मानी जाती है। इसमें गंधार और निषाद कोमल लगते हैं और वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षड्ज माना जाता है, और इसके गाने बजाने का समय वही दिन का तीसरा प्रहर। तो चलिए राग भीम पलासी पर आधारित इस गीत के बाद इसी राग पर आधारित एक और गीत सुनिए। नईम को दीजिए इजाजत आज के मधुरिमा कार्यक्रम से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर खेल के मैदान का हर अपडेट आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी एशिया कप के आगाज की, जहां T20 के इस मुकाबले में भारत और थाईलैंड इस समय दुबई में आमने सामने है। महिला क्रिकेट में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला इस समय जर्मनी और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। इससे पहले कल अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियानो ज्वाला चांगते वर्ष 2026 के बन गए हैं सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान और भारत के बीच खेल संबंधों की प्रगति को सराहा है और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।

0: तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला टी20 एशिया कप के मुकाबले से, जहां आज हरमनप्रीत एंड कंपनी अपने अभियान का शानदार आगाज करने को बेताब है। हांगकांग ने टॉस जीत करके इस समय थाईलैंड ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 83 रन बना लिए हैं। भारत को इस बार एशिया कप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में स्थान दिया गया है और इस पूरे टूर्नामेंट पे बारीकी से नजर रख रहे हमारे सहयोगी विशेष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विशेष, आज का मुकाबला रहा काफी आसान नजर आती है सेमीफाइनल तक की।
1: बिल्कुल शक्ति, आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत करी है थाईलैंड के सामने और आज आसानी से डोमिनेट करके जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत भारत को मिल गई है, 8 ओवर में 84 रन बन गए और सिर्फ 1 विकेट, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुई है स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है, 22 गेंदों पर 43 रन बना दिए उन्होंने, 6 चौके और 2 छक्के उनकी इस पारी में शामिल हैं। और प्रतिका रावल, जिन्होंने अभी तक कोई भी टी20 मुकाबला नहीं खेला था, हालांकि वनडे में वो शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी, आज उन्होंने अपना टी20 डेब्यू एक बहुत ही अहम मौके पर किया है।
0: जी बिल्कुल, एक बहुत अहम मौका और एक बहुत अच्छा अवसर भी किया आपके पास। पाकिस्तान से भारत को मुकाबला खेलना है, उसके पहले एक मौका होगा कि हांगकांग और थाईलैंड के सामने एक सदी हुई और एक मंजी हुई शुरुआत हासिल की जा सके। लेकिन अगर भारतीय टीम के पूरे सफर पर नजर डाली जाए, भारत अभी दुबई में है जहां पर टीम एशिया कप खेलेगी, इसके एक सप्ताह के भीतर टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी, बिल्कुल अलग परिस्थितियां होंगी और 3 से 4 महीने में यह टीम ICC द्वारा आयोजित पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगी। एक बहुत ही टफ शेड्यूल है, लेकिन पूरे स्लॉट को अगर देखा जाए भारतीय टीम कितनी तैयार है।
1: शक्ति, वुमेन्स एशिया कप का जो फाइनल है वो 13 सितंबर को खेला जाना है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो एशियन गेम्स से पहले उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, क्योंकि 17 सितंबर को उनका अपना पहला मुकाबला जापान से खेलना होगा। इसके बाद वो क्वालिफाई, अगर मुकाबला जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए और वहां उसके बाद सिर्फ एक ही मुकाबला बचता है जो कि है फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहां काफी चैलेंजिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है और 50 ओवर फॉर्मेट में होगा, तो काफी अलग परिस्थितियां जो है भारतीय टीम के सामने रहेंगी। टफ शेड्यूल है, पर जैसा कि 2025 से हम देख ही रहे हैं, टीम ने जब से जीत दर्ज करी है तब से काफी मनोबल उनका ऊपर है।
0: जी बिल्कुल, आपने 2025 का जिक्र किया जहां भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार विश्व कप का खिताब उठाया था और उसके बाद हालांकि टी20 में वो विश्व कप के फाइनल में ना पहुंचने की कसक शायद इस एशिया कप के खिताब के साथ मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात की जाए हॉकी विश्व कप की, जहां बेल्जियम में इस समय पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। जर्मनी की टीम 2023 में जीती थी, अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतर चुकी है, वहीं स्पेन अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश में है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा करके कह सकते हैं कि कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले कल महिला हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को शूटआउट में हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।
2: एम्स्टन फेन के वेगनर स्टेडियम में अर्जेंटीना ने सह मेजबान नीदरलैंड का लगातार 4th महिला विश्व कप जीतने का सपना तोड़ते हुए शनिवार को पेनल्टी शूटआउट में उसे 3-1 से हराकर अपना 3रा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने पिछले विश्व कप फाइनल में मिली 1-3 हार का बदला भी पूरा कर लिया है। पिछली बार विश्व कप में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3-1 से ही हराया था। नीदरलैंड के लिए पहला गोल 30वें मिनट में दुनिया की नंबर 1 ड्रैग फिल्कर मानी जाने वाली येबी यानसेन ने किया। मैच के अंतिम क्वार्टर में अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रेनाटो ने 54वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में खींच दिया, जहां अर्जेंटीना के लिए विक्टोरिया ग्रेनाटो, ब्रिसा ब्रिगेसेर और सोफिया काइरो ने गोल दागे, जबकि डियाज जो का गोल अमान्य करार कर दिया गया। वहीं नीदरलैंड के लिए वीन मारी ने गोल किया, जबकि पीएन सेंडर्स, फेलिस एल्बर्ट्स और मोइस फ्रीके मौके को गोल में तब्दील नहीं कर सके और नीदरलैंड्स का 10वीं बार चैंपियन बनने का सपना फिर कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। इस निर्णायक मुकाबले में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली कप्तान ग्रेनाटो ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: I think it's really important for us. We fight together all the time. We are really happy for finally win this final. We do a really good World Cup, so I'm really happy for the team.
2: वहीं विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में मेजबान बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पराजित किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: हम जब भी लड़ते हैं साथ लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए जीत के मायने बड़े होते हैं। कप्तान रेनाटा के ये शब्द बताते हैं कि उनके लिए जीत कितना महत्व रखती है। अब हॉकी से रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां म्यूजरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना जुआना चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बगान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बैचिंग भूटिया से ये सम्मान प्राप्त किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है, तो कह सकते हैं कि एक बेहद रोचक पुरस्कार। अक्सर हम देखते हैं जहां पे दर्शक तय करते हैं, जहां पे जूरी बैठती है वो तय करती है, लेकिन यहां पे आपके साथी खिलाड़ी तय करते हैं कि कौन इस खिलाड़ी को, कौन इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। चांगते ने इससे पहले 2023-24 के सीजन में भी ये सम्मान अपने नाम किया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चांगते को बधाई दी है। इस बीच पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भारत और ब्राजील के बीच होने वाले मैत्री मुकाबले से पहले भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
4: आई एम रियली हैप्पी एंड अ लिटिल बिट जेलस दैट द बॉयज आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ब्राजील, यूरुग्वे एंड पनामा। इन माय 26 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल प्ले एंड 20 इयर्स ऑफ नेशनल टीम आई नेवर गॉट अ चांस, सो द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इज आई एम लिटिल बिट जेलस। आई होप वी कैन गेट द बॉयज एज फिट एज पॉसिबल। आई होप, आई एम प्रीटी श्योर ऑल द बॉयज आर गोइंग टू फाइट सो मच टू बी इन दिस गेम। आई जस्ट होप दैट दे कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस गेम्स, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
0: तो जब भी कभी भारतीय फुटबॉल की बात आती है, हमने बाईचंद भूटिया का जिक्र किया जिन्होंने ये शानदार पुरस्कार दिया था सुनील छेत्री, और लगातार भारत धीरे धीरे ही सही, जिसको हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, उस रूप में बढ़ रहा है कुछ बड़ी उपलब्धियों की तरफ। लक्ष्य कहीं ना कहीं हर भारतीय का सपना है कि भारत की टीम, भारत का तिरंगा कभी फीफा के मंच पर भी

0: नजर आए और शायद ऐसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं भविष्य में उस सपने की राह को और मजबूत करते नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले ये फ्रेंडली मैच जो भारत और ब्राजील के बीच खेला जाना है, किस तरह का भारत में क्रेज होता है फुटबॉल को लेकर हमने फीफा विश्व कप के दौरान देखा था, उसी की राह पर एक ये मुकाबला शायद जिसका तमाम खेल प्रेमियों को, फुटबॉल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर हैं, इसके बाद अब वो किर्गिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम समझौते किए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने खेल के क्षेत्र पर भी व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है।
1: आने वाले समय में कुराश और कबड्डी जैसे ट्रेडिशनल गेम्स की हमारी स्पोर्ट्स साझेदारी को नई ऊर्जा देंगे। आज की चर्चा ने हमारे संबंधों के भविष्य को एक स्पष्ट दिशा तय की है। अ स्ट्रॉन्गर इंडिया उज्बेकिस्तान पार्टनरशिप विल बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सेंट्रल एशिया।
0: खेल वो मंच जो एक तरफ स्पर्धा में आपको सबसे आगे रहना सिखाते हैं, दूसरी तरफ खेल आपको जोड़ते हैं, दूसरे देशों से तोड़ते हैं सीमाओं को और एक साथ लाते हैं कई दूसरे देशों को। श्री मोदी ने अगले महीने समरकंद में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को शुभकामनाएं दी हैं।
1: स्पोर्ट भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदरोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अगले महीने समरकंद में होने जा रहे चेस ओलंपियाड में इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: तो भारत के डी गुकेश जहां पर चुनौती रखेंगे भारतीय और सामने होंगे उनके सिंदरोव, और एक ऐसा मुकाबला जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर होगी और देखना होगा कि कौन इस गेम का नया चैंपियन बनके उभरता है। भारत जिस तरह से चेस की एक नई नर्सरी के रूप में उभरा है और जो एक पूरी लय विश्वनाथन आनंद से शुरू हुई थी वो लगातार आज प्रज्ञानानंदा जैसे युवा खिलाड़ियों तक, दिव्या देशमुख तक ट्रांसफर होती हुई नजर आती है। और आज संडे का दिन है तो फिर फिटनेस की डोज भी ली जाए। संडे ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। इस बीच दिल्ली में आयोजन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण देखने को मिला। संवाददाताओं से बातचीत में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है।
2: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में 1 घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, एक बेहतर सफर की बुनियाद भी है ये साइकिल, जो आपको संदेश देती है पॉल्यूशन से कुछ दूर हटने का, थोड़ा सा सहयोग अर्थव्यवस्था में करने का और लाइफ को फिटनेस के ट्रैक पर लाने का, एक अच्छा जीवन जीने का। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। तो वो समय जो कुछ फोन स्क्रीन से हटाया जाए, थोड़ी साइकिल चलाई जाए, थोड़ी कसरत की जाए, थोड़ा योग किया जाए। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि फिट इंडिया पहल देश को अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी।
3: ये जो सरकार के द्वारा फिट इंडिया का जो इवेंट है ये एक इतना बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा मानना है जितना फिट इंडिया रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर इंडिया रहेगा और उतना ही सेल्फ रिलायंट इंडिया रहेगा। तो मेरा मानना है इसको सिर्फ एक इवेंट के नजरिए से नहीं, एक मूवमेंट के नजरिए से हमें देखना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है यूथ की। जितने लोग इस इवेंट से या फिर इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक मूवमेंट बनाएं जिससे कि हमारा यूथ और जितने लोग हैं कि वो फिट रह सके, अ फिटर नेशन और स्ट्रॉन्गर नेशन।
0: तो गौतम गंभीर के शब्द थे, एक फिटर नेशन ही स्ट्रॉन्गर नेशन है, जो देश जितना स्वस्थ है उतनी

0: मजबूत उसका भविष्य है। और इसी संदेश के साथ फिटनेस का ये कार्यक्रम, फिटनेस का ये मंच जो अब धीरे धीरे एक अभियान में, एक आंदोलन में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां संडे की सुबह लोग अपनी नींद को पॉज देकर के, एक ब्रेक देकर के साइकिलों पे निकलते हैं और दुनिया को देते हैं फिटनेस का संदेश। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप के T20 मुकाबले पर, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए हैं। विशेष किस राह पे जाता हुआ मैच नजर आ रहा है और क्या क्या अपडेट है?
1: भारतीय टीम अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रही है, हालांकि अभी 2 विकेट गिर गए हैं स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के रूप में, लेकिन शफाली वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं 59 रन पर, और वहीं हरमनप्रीत कौर भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटी हुई हैं। इसके बाद भारती फूलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसे बल्लेबाजों को आना है और टीम को एक मजबूत स्थिति प्रदान करनी है। तो ये मुकाबला जो है भारत की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, तो 10 ओवर के बाद ही अगर टीम का प्रदर्शन या अनुमान लगाने लगे कि मैच किस दिशा में जा रहा है, आपने कहा कि अभी भारतीय फूलमाली हैं, ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा हैं, तो वाजिब है कि एक गहराई इस टीम के बल्लेबाजी क्रम में नजर आती है। और गेंदबाजी का तो कोई तोड़ इस समय है नहीं, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी जिस प्रकार की फॉर्म में चल रही है, देखना होगा भारत की नजर भी होगी कि थोड़ा और मार्जिन से मुकाबले में बढ़त बनाई जाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्य

0: जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे।

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं,

0: शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहां को भी समझता जा रहा हूँ। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर बार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेजी रह गुजर।
0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है, जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
3: उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज आजादी, जो जानते हैं असीरी है एक फन से
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है, यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
4: मैंने ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बजाओ, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है।
0: शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।

0: ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है, जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
1: जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है, इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर, जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को खिलाने के लिए खींच लेते थे और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय एक मारने के अभी ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी, वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
2: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुंचूं जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
0: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज। उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
2: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जान

0: कि मेरे में और एक हिंदू सिख मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू सिख मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
1: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
0: अर्धनारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
1: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रही, यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
0: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूँ मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही लिखती रही वो एक यात्रा है अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज़ दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने तशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग लापता हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिथेल स्टुफथॉफ ने मैच का एकमात्र गोल किया। इससे पहले तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में महिला एशिया कप में भारत अपने अभियान की आज शुरुआत कर रहा है। थाईलैंड के साथ खेले जा रहे पहले मुकाबले में थाईलैंड ने भारत को जीतने के लिए

भारत ने थाईलैंड को जीतने के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पांचवें ओवर में 2 विकेट खोकर के 34 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1.5 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी की। नासा ने नई आकाशगंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोजों के लिए अंतरिक्ष दूरबीन का सफल प्रक्षेपण किया। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। अरब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए

0: आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। वहीं तिब्बत में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 546 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68.5 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नासा की नैन्सी ग्रेस रोवन स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के मिशन पर फ्लोरिडा से भेजा गया है। अगले 5 वर्ष में इस दूरदर्शी से वैज्ञानिकों को अब तक अनदेखी आकाश गंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोज करने में मदद मिलेगी। इससे डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने और ब्रह्मांड के विकास का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 44वीं मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 4 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक

0: तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Kashi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. NASA successfully launches space telescope to discover new galaxies and exoplanets. And in men's hockey, Germany retains coveted World Cup title, beating Spain 1-0. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve. Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक business summit का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के business leaders शामिल हों। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an agreement following Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZQR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 11 सेकेंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। जब मोहम्मद रफी साहब की रेशमी आवाज और सुरों की मलका लता मंगेशकर जी की सुरीले सुर एक साथ मिलते हैं तो प्यार का जादू सीधे दिल में उतर जाता है। इस गाने में वायलिन और गिटार की जुगलबंदी सीधे दिल के तारों को छेड़ती है। यह सिर्फ एक गीत नहीं दो प्रेमियों के बीच की प्यारी और रुमानी शिकायत भी है जो तकरीबन आज से 55 साल पहले भी उतना ही पसंद किया गया जितना आज वो हमारे दिल को छूता है। तो आइए सुनते हैं आप आए बहार आए फिल्म का वही बहुत ही खूबसूरत नगमा और आवाजें हैं रफी साहब और लता जी की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में, जहां हम बात करते हैं सुनहरे दौर की तो नहीं लेकिन उसके बाद की बातें करते हैं, यानी सदाबहार गीतों की बातें होती है। और आज हम पलट रहे हैं यादों की वो सुनहरी डायरी जो हमें सीधे लेकर चलती है सदाबहार गीतों की दुनिया में। तो साल था 1971 का और बड़े पर्दे पर आई थी एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म जिसने हर इंसान को जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की एवरग्रीन फिल्म आनंद की। और जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है एक नगमा सीधा दिल में उतर जाता है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मन्नाडे साहब की वो जादुई आवाज और सलील चौधरी साहब का वो नायाब संगीत जिसको लिखा था योगेश साहब ने। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे छुपा वो राज जो शायद ही किसी डायरी में दर्ज हो? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आज एफएम गोल्ड पर हर सिंगार की इस महफिल में इस राज से पर्दा उठाते हैं। असल में जब यह गाना बनकर तैयार हुआ तो इसे फिल्म के शुरू में यानी ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान सिर्फ बैकग्राउंड में बजाने के लिए कंपोज किया गया था। मेकर्स का इसे पर्दे पर किसी एक्टर पर फिल्माने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जनाब जब हमारे काका यानी राजेश खन्ना साहब तो ठहरे बड़े पारखी नजर वाले, जब उनको ये बात पता चली और जब उन्होंने इस फिल्म का संगीत सुना, जैसे ही उन्होंने इस गाने की खूबसूरत धुन सुनी वो इसके दीवाने हो गए। उन्होंने फिल्म के मेकर्स के सामने अब जिद रख दी और उस जिद ये थी कि ये गाना तो मेरे किरदार पर ही फिल्माया जाएगा और वो भी पूरे दिल से। बस फिर क्या था, काका की इस जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और इसी एक जिद की वजह से फिल्म का पूरा शुरुआती विजुअल लेआउट ही बदल दिया गया। जहां सिर्फ पर्दे पर नाम दिखने वाले थे वहां राजेश खन्ना साहब समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे गुब्बारे उड़ाते हुए इस जिंदगी का फलसफा गाते नजर आए। है ना बेहद खूबसूरत और दिलचस्प बात? तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं सलील दा का संगीत बद किया हुआ मन्ना डे की आवाज और राजेश खन्ना साहब का वो सदाबहार अंदाज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जिंदगी कैसी है पहेली। हाय, आनंद फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा था मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपके इस सफर में मैं हूँ आपका दोस्त फिरोज, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के गीत की। दोस्तों, जब रात की खामोशी में दिल को किसी की याद सताती है ना, तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। और ऐसे ही बातों बातों में ऐसा ही एक नगमा बना था। 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आपकी कसम। एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत गीत आज हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जो इस फिल्म में था। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया वो सदाबहार नगमा, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाजें और हमारे अपने पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब का लाजवाब संगीत। लेकिन जनाब, इस रोमांटिक गाने के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि इस गाने का आइडिया कहां से आया होगा? चलिए मैं बताता हूं। असल में एक बार गीतकार आनंद बख्शी साहब और इस फिल्म के निर्देशक जे ओम प्रकाश साहब आपस में यूं ही कैजुअल बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में जिक्र छिड़ा कि यार, रात को नींद नहीं आई और रात भर बस करवटे बदलते रहे। आनंद बख्शी साहब के पारखी दिमाग ने इस आम सी बातचीत को तुरंत पकड़ लिया और वहीं से इस शानदार गीत के गाने के बोल पैदा हुए। और जब ये गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा तो संगीत के जादूगर आरडी बर्मन ने एक और कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक और दिल की बेचैनी को दिखाने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड में एक पारंपरिक संतूर का इस्तेमाल किया। लेकिन रुकिए, बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस गाने का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। दरअसल किशोर दा और लता जी ने इस बेहद मुश्किल और उतार चढ़ाव वाले गाने को स्टूडियो में सिर्फ एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था। एक ही बार में दोनों दिग्गजों ने प्यार की उस तड़प और कशिश को अपनी आवाज में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो आइए, रात की इस रूमानी बेचैनी को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब गाना सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाजों में यह नगमा था फिल्म आपकी कसम से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक रही और वो फिल्म है 1973 में आई यादों की बारात। और जब इस फिल्म का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले गूंजती है कांच के गिलासों की वो जादुई खनक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश रोमांटिक गाने की, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की मखमली आवाजों से सजा ये गीत बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और संगीत के जादूगर आर डी बर्मन यानी हमारे पंचमदा का बेमिसाल म्यूजिकल नजरिया बहुत ही खूबसूरत। वैसे इस गाने का वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि कैसे पंचमदा ने स्टूडियो में असली कांच के गिलास और चम्मच को आपस में टकरा कर इस गाने का आइकॉनिक शुरुआती साउंड तैयार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने का असली सीक्रेट इसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं बल्कि इसके गायन की बनावट यानी वोकल अरेंजमेंट में छुपा था। इसमें बेहद बहुत सारा उतार चढ़ाव था और इसी की वजह से यह नगमा बहुत खूबसूरत बना। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त हर सिंगार से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे 11:10 पर मार्केट मंत्र का पुनः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। यह विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $5 billion बाय 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला. 2030 तक $5 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह पुरानी तेजी टूटी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodhji, I see our first caller has already connected with us. Bilkul. From Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
1: हाँ, मार्केट गंगा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: मैं SIP के द्वारा ATM से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ 8 years से, और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ STP के माध्यम से 12 किस्तों में, 12 महीनों में मैं इसे स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ. और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना कितना फोर पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशियो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 years के लिए.
2: जी, तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप जैसे एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड का आप चुनाव करने में इच्छुक हैं. थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको इन फंड से भी मिल सकता है, और उसके अलावा अगर आप 15% अपना पैसा एक डिफाइंड फोकस्ड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में अगर लगाते हैं, और बचा हुआ पैसा अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इन टाइप की कैटेगरीज में लगाते हैं, तो देखिए मोटा मोटा एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा रहेगा. आपका 15% डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप आपके इन फंड्स से मिलेगा, और फ्लेक्सी कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनमें भी

0: आप लगाएंगे, इनसे भी आपका कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपोनेंट बनेगा, तो करीब 45-50% शायद आपका पैसा इन छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेशित रहेगा, बचा हुआ लार्ज कैप में. तो आई थिंक एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए.
1: All right, after that advice, let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan, and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors, including mining, economic and financial dialogue, and tourism, among others.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
1: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI apps of India to scan national QR, UZQR for making merchant payments in Uzbekistan. Ashutosh, before we go any further with the more news in our program today, we've heard some positive headlines today. We've spoken about this comprehensive strategic partnership. We spoke about the FIIs infusing funds. So how do you view this in the landscape of mutual fund investment for a common investor?
0: So the broad undercurrent that we should look at is that the more opportunities Indian businesses have to expand their businesses, increase their exports to different countries, bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea, to broad-base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is positivity, and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
3: Sarabjit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai, aur जब चर्चा इसी पर है तो मुझे अभी कुछ समय पहले की बातें भी याद आने लगी, जब हम बात कर रहे थे कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें, और कई श्रोता इस पर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, और समय समय पर जब मौका मिलता है, जब खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं. आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाजार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाजारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
0: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूंगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है. अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है. कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो. कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है. लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें. मेरे हिसाब से आप कम से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाजारों में लगाएं. लेकिन अभी वो एवेन्यूज म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं, थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट

0: है आरबीआई की लिमिट्स की वजह से अभी आप बहुत ज्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आप जो बाकी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं
1: जी। बाकी एवेन्यूज में क्या क्या है?
0: बाकी एवेन्यूज में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल ऑप्शन है वो है गिफ्ट सिटी, जहां पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज्यादा हैं लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाजारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे। उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं।
1: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 आपके सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। चले हम अगली खबर की ओर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है। अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपए आए, और इसके उलट जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2,318 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं। एफपीआई के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं, हालांकि अभी काफ़ी समय से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम अपने बाजार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है कि अब हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है?
0: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी कम हुआ है, काफी फर्क पड़ा है, और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा एसआईपी के जरिए लगातार भारतीय बाजार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी काउंटर वेट अब दे पाते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट को। पहले एफआईआई का पैसा जब आता था या जब जाता था उसके हिसाब से बाजार में काफी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबिलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो एसआईपी के माध्यम से आज की डेट में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है एफआईआई के उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता व्हाट्स हिज क्वेश्चन।
1: पंकज स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें एसआईपी स्टार्ट किया था, तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है, तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
0: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में जरूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे, और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए
1: जी। अगले कॉलर हैं चेन्नई।

0: से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: या गुड इवनिंग सर, कंप्लीट टीम। दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, इफ पॉसिबल नेम द इंडस्ट्रीज, थैंक यू।
2: I am afraid it's very difficult to say put a specific percentage. As a mutual fund investor, since this show is specific to mutual funds, I would say that is the whole idea of investing in a mutual fund, that these kind of queries or these kind of doubts you can very conveniently leave to the expertise of a fund manager. On your end, you should only choose a handful of good, diversified, long-term wealth-creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi-cap, multi-cap, value, and let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
0: वैसे क्या भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ?
2: नहीं, अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा।
0: जी, एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले अभी, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है। तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि क्या वो अग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
2: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज करी थी कैटेगरीज और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए, जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा। तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे। तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझकर एक फंड में इन्वेस्ट किया था और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है, 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही कॉन्टिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फंड अभी भी सक्षम है या नहीं है। और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
3: आशुतोष, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली एंड इन दीज लास्ट 20 मिनट्स यू हैव गिवन अस गुड पीस ऑफ एडवाइस, सो टेकिंग क्यू फ्रॉम जस्ट व्हाट यू हैव बीन सेइंग, no doubt returns of a mutual fund are a guiding criteria, but when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
2: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you, and then the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
3: Correct.
2: Which diverge significantly in their risk return payoffs or the risk return promise that

0: they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down on the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
1: जी और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तीन सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला थम गया. जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा. उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 156,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसलकर 236,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर 4,494 डॉलर 70 सेंट प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ. और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर 66 डॉलर 99 सेंट प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई.
2: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल.
3: हेलो नमस्कार जी.
2: जी नमस्कार.
3: हेलो.
2: हाँ जी सवाल पूछे.
3: हाँ मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है, तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको हर महीने कितना कितना, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी नहीं है हमारे.
0: जी तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी कम, कुछ फंड्स में तो आप 100 रुपये प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं. काफ़ी सारे फंड 100 रुपये या 500 रुपये से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर चूज कर सकते हैं. जहां तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इन्फॉर्मेशन लगता है और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफर नहीं करेंगे. थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज्यादा कंट्रोल रहेगा. कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफर करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफर करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है.
1: जी बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है, तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया, और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें. क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना जरूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
0: जी अगर कभी रिडम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी. लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं, आपको अदरवाइज अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं, तो ऐसी कोई बाधा आपके लिए
1: कोई बाध्यता नहीं है.
2: जी आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्न्ड? concerned.
0: So I'd say not just for the young generation, but across the board, the digital platforms have greatly democratized access to mutual funds, because there was a time when to make an SIP, you

0: to give post-dated checks. When I started investing about 20, 25 years back, at that time, you did not have a facility to create an e-mandate, an e-NASH mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized, and in about 15 minutes time, you can set up your account, from scratch and make your first investment. So, of course, it connects much more with the younger generation because they've started, with everything digital. But even for elder investors, for senior citizens who are comfortable doing it digitally, it's a great enablement.
1: All right. The Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi, Vinodji Sawal Puche.
2: पूरी मार्केट मंत्रालय टीम को मित्र से नमस्कार
1: जी नमस्कार
2: मैं आशुतोष से पूछना चाहूंगा कि जब मैं जैसे कि पिछले साल से मैं रिटर्न कुछ नहीं आया मैं म्यूचुअल फंड से लेकिन हम इन रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने के थैंक यू
0: तो देखिए मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी एज एन एसेट क्लास के पास शायद सबसे ज़्यादा सक्षमता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की और एक जेन्युइन वेल्थ जनरेट करने की आजकल आपने रियल एस्टेट बोला रियल एस्टेट का देखिए टिकट साइज बहुत ज़्यादा है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं बहुत सारे इनविजिबल एक्सपेंसेस भी रियल एस्टेट में होते हैं क्या सच में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं कि नहीं मेरा ख्याल है केस बाय केस डिपेंड करेगा बट आजकल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक अच्छा साधन उभर के आ रहे हैं अभी बहुत सारे रीट्स मार्केट में नहीं है लेकिन सेबी काफी जागरूकता इसके लिए ला रही है प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफी काफी संभावना है काफी पोटेंशियल है रीट्स में तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं
1: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections and forex reserves.
3: जी, आज वक्त इतना ही है आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
1: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं आपके लिए उन चुनिंदा नगमों को लेकर आता हूँ जो सुनहरे दौर के हैं, यानी गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जो बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारे, जिसे आप बार बार सुनना भी चाहते हैं, गुनगुनाना भी चाहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। आवाज है मुकेश साहब की और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है सलील चौधरी साहब का। यह फिल्म आई थी 1956 में और यह फिल्म है जागते रहो। तो आइए इसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1।

भी कहा क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक गहरा फलसफा है। साल 1956 की ये फिल्म जागते रहो सिता बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये नगमा मुकेश साहब की आवाज में। ये गीत हमें याद दिलाता है कि इंसान जिंदगी को पूरी तरह सच समझकर जीता है। वो कभी कभी एक ख्वाब जैसी भी लग सकती है, खुशियां हो या गम हो, रिश्ते हो या तन्हाई, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है और यही जिंदगी की हकीकत है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो हम सबको बहुत ही प्यारे हैं। और अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फिल्म दिल देखो देखो से नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में यह बनी फिल्म आई थी 1959 में। एक ऐसा गीत जिसमें शरारत और मस्ती का बेहद खूबसूरत तालमेल है। फिल्म दिल देखे देखो का ये बेहद चुटबुला और दिलकश गीत अपनी मधुर आवाजों के लिए याद किया जाता है। इसे अपनी आवाजें दी मोहम्मद रफी साहब और आशा जी ने। इस गीत में प्रेम की वो मासूमियत है और वो शरारत है जो पुराने जमाने के रोमांटिक गीतों की खास पहचान हुआ करती थी। रफी साहब की दिलकश आवाज और आशा जी की चंचल अदायगी मिलकर गीत में एक खूबसूरत नोक झोंक पैदा करती है। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता बल्कि प्यार में छुपी दोस्ती, शरारत और मुस्कुराहट को भी सामने लाता है। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म दिल देखे देखो से।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म दिल लेके देखो से। ये बेहद खूबसूरत की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपने सुना। आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। ये गीत नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी कव्वाली है। चलते चलते इसी कव्वाली को आप ज़रूर इन्जॉय करें। ये कव्वाली है आरजू फिल्म से और ये फिल्म आई थी सुनहरे दौर में यानी 1965 में ये फिल्म आई थी जिसके लेखक निर्देशक और इसके निर्माता थे रामानंद सागर साहब। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में थे राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली है आशा भोसले जी और मुबारक बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए खास तौर से।

आरजू फिल्म की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अगला कार्यक्रम लेकर आपके साथ रहेंगी श्रेयाशी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशामुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देशभर के 18 NIFT कैंपस से स्नातक होने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री मिलने और संस्थान में अपनी अकादमिक यात्रा के समापन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आएंगे। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। थाईलैंड की ओर से नानापत कोचारोइनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 12:11 शुरू हो चुका है और अब आइए इस कार्यक्रम को भी शुरू करने का प्रारंभ करते हैं। मैं हूं आपके साथ श्रेयाशी और ये है हमारा प्यारा कार्यक्रम निशिगंधा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नगमे से।

0: तो दोस्तों, अभी जो नगमा आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से लिया हमने, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए राजेंद्र कृष्ण ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। और दोस्तों, जब बात होती है बॉलीवुड के गानों की तो ज़्यादातर गाने तो इतने मस्त होते हैं कि बस कहीं ना कहीं हमारे किसी पुरानी ख्याल से, पुराने किसी बात से उसे जोड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक ख्याल जस्ट अभी मेरे दिमाग में भी आ गया, बताओ क्या, यही कि जब भी प्यार में इकरार होता है, तकरार होता है, तो चाहे अनचाहे हम हमेशा एक दूसरे से सहमत हो ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इस अगले गीत की तरफ, फिल्म सीता और गीता का ये अगला नंबर, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए हैं आनंद बख्शी ने और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम।
0: तो लीजिए ये अगला गीत फिल्म बातों बातों में से है, तो आइए एंजॉय करते हैं इस नंबर को।

पराया धन का ये नगमा दोस्तों हमने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना, बोल सजाया आनंद बख्शी ने और म्यूज़िक आरडी बर्मन साहब का। बात भी बहुत सही कही है कि क्या होगा किसे क्या खबर, और ऐसे ही कुछ शब्द आज मेरे सामने से होकर गुजरे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जो लम्हा आज मिला है उसे जी भर कर जी लो। जितनी यादें जितने हंसते हुए पल समेट सकते हो समेट लो, क्योंकि आखिर में हमारे पास सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ।

ये एक और बेहतरीन नगमा फिल्म लव इन टोक्यो का लता मंगेशकर की आवाज में, बोल सजाए हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा संघ में श्रेयसी और गुनगुना रहे हैं हम कुछ बेहद प्यारे गाने जो हमेशा हम गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखें और गीतों का सिलसिला हमेशा यूं ही बनाए रखें। बढ़ते हैं अब इस अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म गोरा और काला का अगला नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं आनंद बख्शी के और म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गैम्बलर फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म कल आज और कल से लिया है ये गीत हमने, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप
1: तो दोस्तों जब इस तरह के कोई ख़ास नगमे हमारे सामने आते हैं, हम जब उन्हें सुनकर यूं ही झूम उठते हैं, तो अक्सर मन में ना बड़ी अजीबो गरीब सी बातें हमारे मन में उठ जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे दिल में भी एक ख्याल आ गया। भाई अब वो ख्याल क्या था? तो ख्याल कुछ ऐसा था कि दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, मोहब्बत में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है। और लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, तो मेडिकल स्टोर पर इसकी दवा क्यों नहीं मिलती है।

0: फिल्म पड़ोसन का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, और जब बात होती है फिल्म पड़ोसन की, वो भी अपने बॉलीवुड के पुराने वाली, तो किशोर कुमार तो यू सबसे पहले अपनी आंखों के सामने आते हैं। जी हाँ, या ये गीत भी किशोर कुमार की आवाज में था और म्यूजिक दिया आर डी बर्मन साहब ने। ऐसे तो अभी गीतों का सिलसिला श्रेयसी के साथ शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी आगे भी कार्यक्रम हमारे साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे निशिगंधा को जल्दी विराम देने का समय हो जाएगा। तो विराम दें, उससे पहले चलते चलते एक आखिरी गीत आपके लिए, फिल्म का नाम इवनिंग इन पेरिस, आवाज रफी साहब की।
1: अरे अरे ए,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन

0: सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
0: This year, our strategic partnership ke 15 saal ho rahe hain. विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूं मेषराशि और घड़ी में ठीक 1:11 शुरू हो चुका है और ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुहाने का, जहां कुछ चुनिंदा पुराने बेहतरीन

द ट्रेन से ये नगमा दोस्तों हमने सुना अभी, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक आर डी बर्मन का। आइए अब चलें अपने अगले गीत की तरफ। ये नगमा हमने लिया फिल्म लव इन टोक्यो से, बोल हसरत जयपुरी साहब के हैं और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म त्रिशूल का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए साहिर लुधियानवी ने और म्यूजिक दिया खयाम साहब ने। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म राजकुमार का ये नगमा है, आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने कुछ बेहद पुराने। आइए अब बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ और कार्यक्रम में यूं ही नई नई कड़ियां जोड़ते चलते हैं।

तुमसे बात करते करते कभी कभी मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, ना बात खत्म करने की ना कुछ खास कहने की। बस तुम्हारे साथ थोड़ा और रुके रहने का मन करता है। और अजीब है, बातें वही रहती हैं, दिन भी वही रहता है, फिर भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा थोड़ा और बेहतर लगता है।

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से ये नगमा हमने लिया दोस्तों, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, भूल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक आरडी बर्मन साहब का। अगला गीत जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ लता मंगेशकर की ही आवाज में है, फिल्म है जब जब फूल खिले, बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म ब्लैकमेल का ये नगमा दोस्तों किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना, बोल सजाए राजेंद्र किशन ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब बढ़ चलें अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म प्यार ही प्यार का ये अगला नगमा आपके लिए।

और दोस्तों इस गीत के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि जल्दी हमें अपने कार्यक्रम गीत सुहाने को देना होगा यहाँ विराम। लेकिन चिंता की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप बने हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी पर एफएम गोल्ड पर, जहाँ पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जल्द अब आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के पार मैं श्रेयसी फिर से आपसे जुड़ जाऊंगी कुछ नए और गीतों के साथ। तो चलते चलते ये एक आखिरी नगमा आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा

0: एक्रिलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिकी पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan,

आकाशवाणी के 7.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूं महेश जोशी और घड़ी में ठीक 2:11 शुरू हो चुका है, तो आइए शुरू करें अपने कार्यक्रम रात सुरमई को। और शुरू करने के लिए शुरुआत है इस नगमे से।

0: फिल्म पापा कहते हैं का ये नगमा दोस्तों आपने सुना। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत है राजेश रोशन का। एक और प्यारा सा नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, फिल्म खामोशी से लिया है ये हमने। आवाज़ है मजरू अलका याग्निक और हरिहरन की, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। पर उससे पहले ये फिल्म का कास्ट है जो कुछ कहना भी चाह रहा है।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है। मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, जो फिल्माया गया था शाहरुख खान और पिक्चर के काफ़ी सारे किरदारों पर। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, आवाज़ें थी कुमार सानू और देवकी की, म्यूजिक था जतिन ललित साहब का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं इसमें एक और अगला गीत। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये नगमा, आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी ने और म्यूजिक है जतिन ललित का।

फिल्म दिल तो पागल है का ये नगमा आपने सुना। फिल्म आया गया ये नगमा शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर। बोल थे आनंद बख्शी के, स्वर था लता मंगेशकर और उदित नारायण का, और संगीत से सजाया उत्तम सिंह ने। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, संघु में श्रेयसी और आप बने हुए हैं AIR FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आइए बढ़ चले अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म खिलाड़ी का ये नगमा, आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, बोल सजाए अनवर सागर ने, और म्यूजिक है जतिन ललित का।

दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कई बार खुद हमें ही पता नहीं चलता कि कब दिल लग गया या क्यों और कैसे दिल टूट गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें हमारे अंदर ही रह जाती हैं और उसे हम बयां नहीं कर पाते, और एक अरसे के बाद जाके हमें एहसास होता है कि वो कोई खास एहसास था। अर्ज किया है, हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं होता। वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वो पगली क्या जाने प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता। ऐसी ही कई सारी बातें हैं ना जो दिल को छू जाती हैं, और खासकर जब हम बात करते हैं गीतों की, गानों की, बॉलीवुड के उन नगमों की, तो हर वो शब्द कहीं ना कहीं आपके एहसासों से जुड़ा रहता है और उस शब्द को आपके एहसासों को बहुत अच्छे से बयां कर जाता है। एक और शेर ऐसे ही याद आया मुझे, मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। वफा के सिले कम ही मिले, वफा के सिले कम ही मिले, खुशी के बदले गम ही मिले। एक बात आज तक समझ ना आई, एक बात आज तक समझ ना आई, क्या सबको दिल दुखाने को हम मिले। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई संगो में श्रेयसी, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि रात सुरमई कार्यक्रम को जल्द ही समेटने का समय हो जाएगा। लेकिन समेटने से पहले एक और गाना तो मैं आपके साथ साझा कर ही सकती हूं। वास्तव फिल्म का एक नगमा है, बहुत फेमस है, और दिल कर रहा है वो आपको मैं जरूर सुनाऊं। फिल्माया गया संजय दत्त और नम्रता शिरोडकर पर, आवाज सोनू निगम की, कविता कृष्णमूर्ति की, बोल सजाए हैं समीर ने, और म्यूजिक दिया जतिन ललित ने। फिलहाल तो ये गाना मैं आपके सुपुर्द किए जा रही हूँ ताकि आप इसे सुने, एंजॉय करें, और जल्दी मैं श्रेयसी आपसे फिर मिलूंगी अगले किसी प्यारी सी रात, अगली किसी प्यारे से कार्यक्रम में, जल्दी ही 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। तब तक के लिए गीत एंजॉय करें, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली

0: सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। अब भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7%

3:10 और 55 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुनेंगे प्रोग्राम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना विसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी किसी से पहली मुलाकात होती है तो न जाने क्यों उसकी सूरत दिल में बस जाती है। न कोई लंबी पहचान, न ढेरों बातें, बस एक मुस्कान, एक नजर और मन कह उठता है इस चेहरे में कुछ तो खास है। कुछ चेहरे खूबसूरत होने से ज्यादा यादगार होते हैं। उन्हें देखने के बाद चेहरे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो एक चेहरा बार बार याद आता है। तो आइए इसी मासूम सी पसंद और दिल में उतर जाने वाले एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

सपने भी कितने खूबसूरत होते हैं, इनमें कोई बंदिश नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। मन चाहे तो एक पल में किसी खूबसूरत दुनिया की ओर सैर कराएं, जहां सिर्फ प्यार हो, मुस्कुराहटें हो और किसी का साथ हो। और जब सपनों में भी वही चेहरा बार बार नजर आए तो दिल की धड़कनें भी जैसे कोई मीठी धुन गुनगुनाने लगती है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। तो आइए सपनों और चाहतों की इसी हसीन दुनिया में चलते हैं फिल्म बनफूल के प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे जितना महसूस करो उतना ही कम लगता है। कभी किसी की मुस्कान दिल को छू जाती है, कभी उसकी आवाज सुकून दे जाती है, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मौजूदगी हमारी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। सच्ची मोहब्बत में बड़े बड़े वादों से ज्यादा मायने रखता है एक दूसरे का साथ, भरोसा और वो एहसास कि कोई है जो दिल के बहुत करीब है। तो आइए इसी प्यार और अपनेपन की मीठी सी धुन में खो जाते हैं और सुनते हैं फिल्म खून की टक्कर का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

3:30 और 52 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कभी कभी प्यार कोई नई कहानी नहीं लिखता, बस पुरानी कहानी के किसी खूबसूरत पन्ने को फिर से खोल देता है। एक मुलाकात, एक नज़र, एक एहसास और दिल फिर वही कह उठता है, शायद प्यार आज भी उतना ही खूबसूरत है। तो चलिए याद करते हैं उस प्यार को जो वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि हर मुलाकात के साथ और गहरा होता चला गया। सुने फिल्म दयावान का बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने।

लेकिन जब कोई अपना साथ चलने वाला मिल जाए तो हर मुश्किल रास्ता भी खूबसूरत सा लगने लगता है। एक सच्चा साथी वही है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि उन खामोश पलों में भी हमारे साथ खड़ा रहे जब शब्द कम पड़ जाएं। रिश्ते भी तो इसी साथ से मजबूत होते हैं, एक दूसरे को समझना, संभालना और बिना किसी शर्त के साथ निभाना। कभी कभी दिल की सबसे बड़ी खुशी बस इतनी होती है कि कोई अपना पास हो और हम ये कह सके तुम हो तो ये सफर अच्छा है। तो आइए इसी खूबसूरत साथ और अपनेपन के एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आहुति का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी ने।

कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, और जब किसी की नजर किसी खास शख्स से मिलती है तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। कभी हल्की सी शरारत, कभी चाहत का एहसास, और कभी वो अनकही सी खुशी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यार की खूबसूरती भी तो यही है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, कभी एक नजर ही काफी होती है सामने वाले के दिल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आइए आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में महसूस करते हैं उन्हीं नजरों की मासूमियत और प्यार भरे एहसास को। फिल्म जेल यात्रा का ये गीत है जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि उन वादों में भी होती है जो दो दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। एक सच्चा वादा कभी कभी मुश्किल वक्त में उम्मीद बन जाता है और दूरियों के बीच भी अपनेपन का एहसास दिलाता है। जिंदगी में बहुत से वादे किए जाते हैं, कुछ वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं तो कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें दिल उम्र भर संभाल के रखता है। तो आइए आज उन्हीं वादों और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल के इस प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कोई कहे चलो जहाँ भी जाना है साथ चलते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे का साथ और रास्ते भर की मीठी बातें। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म फिर वही रात से, और इस गीत को आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर

0: को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव दल ने कल 5वें दिन भी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darajali Dustalik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization summit in capital Bishkek. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the US since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her US visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the US-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister

0: 4:10 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम अरुणिमा, और मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में अर्चना बिसारिया। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अकेले आगे बढ़ने का नाम नहीं है। कभी किसी का हाथ थामना, किसी को हौसला देना और किसी की छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी कामयाबी का हिस्सा है। हम सबकी मंजिलें अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बना रहे तो सफर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में प्यार सिर्फ रिश्तों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना और बिना किसी स्वार्थ के किसी का हौसला बढ़ाना, यही तो असली इंसानियत है।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

207 का मतलब सिर्फ किसी के साथ होना नहीं है, किसी के पास होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने की वजह देना है। ऐसे रिश्ते हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को अच्छे लोगों के साथ जीने में भी है। तो अपने आसपास के उन लोगों की कद्र कीजिए जिनका साथ आपको बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। सभी कुछ हमारे मुताबिक चलता है तो कभी छोटी सी बात भी परेशानी का सबब बन जाती है। लेकिन मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। ऐसे वक्त में किसी अपने का भरोसा बहुत मायने रखता है। एक सच्चा साथ हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी उलझे हों, उन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उस वक्त आप घबराइए मत, थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर उलझन का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है।

दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे दौड़ते हैं और इसी दौड़ में वो छोटी छोटी खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं जो कभी हमारे दिल को खास बना देती थी। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सुकून सिर्फ बीते कल में नहीं होता, आज भी हम अपने लिए कुछ पल निकाल सकते हैं। चाय की प्याली, अपनों से बातें, खुली हवा और थोड़ी सी बेफिक्र मुस्कान।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल किसी धुन को पकड़ लेता है और फिर कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही तो जुनून है, जब कोई सपना आपको भीतर से पुकारे और आप बिना रुके उसकी ओर बढ़ते चले जाएं। हर किसी की राह अलग होती है, मंजिल अलग होती है और सपने भी अलग ही होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हम वही रास्ता चुनें जिस पर बाकी लोग चल रहे हैं। जरूरी है कि हम अपनी पहचान और अपने दिल की आवाज को समझें। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपसे सवाल भी करेंगे, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, इरादा मजबूत है, तो अपने सफर पर भरोसा रखिए।

जिंदगी में हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हर बात का असर हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के जाने के बाद भी हमारे भीतर गूंजते रहते हैं, कभी सीख बनकर, कभी

याद बनकर और कभी हमें सही रास्ता दिखाने वाली आवाज बनकर। इसलिए बोलते वक्त शब्दों की कद्र कीजिए और सुनते वक्त उनकी सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात किसी के दिल को हौसला भी दे सकती है और किसी के सफर की दिशा भी बदल सकती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन पीछे छोटे अनुभवों से सीखना भी उतना ही जरूरी है। बीते कल की आवाजों को बोझ मत बनाइए, उन्हें अपनी अगली मंजिल की सीख बनाइए।

दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो उन छोटे छोटे एहसासों में

भी होती है जो हमारे दिल को सुकून देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की कद्र कीजिए, खूबसूरत यादों को संभाल कर रखिए और हर रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि खुशबू की तरह अच्छी यादें भी दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं।

दोस्तों, प्यार सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, प्यार अपने सपनों से भी हो सकता है, अपने काम से, अपने परिवार से और उस जिंदगी से भी जो हमें हर दिन एक नया मौका देती है। इसलिए दिल में शिकायतों से ज़्यादा उम्मीद रखिए, नकारात्मकता से ज़्यादा मुस्कुराहट रखिए और हर दिन को पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब दिल खुश हो तो हर मुश्किल के बीच भी कोई ना कोई धुन ज़रूर सुनाई देती है। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत और मुझे इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर

0: भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Mr. Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Avli Darajali Dustalik, by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Defense Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defense sector and witnessing a major transformation in its defense industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her US visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the US-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the river banks in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 700.

5:11 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपको सुनवा रही हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म आखिरी खत के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे आखिरी खत में, और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है खुशबू।